FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1947 के ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। सुबह के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सेवा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में

0: बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए आज का चिंतन, सेवा प्रेम का भाव। वाचन स्वर रजनीश गुप्ता का है।
2: के लिए पहली शर्त प्रेम है, अर्थात जिसके दिल में प्रेम है वही सेवा कर सकता है। टॉलस्टॉय ने कहा है कि प्रेम स्वर्ग का रास्ता है। बुद्ध का कथन है, प्रेम इंसानियत का नाम है। ईसा ने कहा है, प्रेम संसार की ज्योति है। विक्टर ह्यूगो का कहना है कि जीवन एक फूल है और प्रेम उसका मधु। राम कृष्ण परमहंस ने कहा है, प्रेम अमरता का समंदर है। कबीर का कथन है, जिस घट में प्रेम नहीं उसे मरघट समझ, बिना प्राण के सांस लेने वाली लुहार की धौंकनी। अलग अलग शब्दों में सभी महापुरुषों ने प्रेम का बखान किया है। वास्तव में प्रेम मानव जाति की बुनियाद है। प्रेम ऐसा चुंबक है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए सब अपने हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो सारी पृथ्वी को एक कुटुंब माना गया है। वसुधैव कुटुंबकम, जो सबको प्रेम करता है उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं हो सकता। वो दूसरे के लिए दिल में ऊंची भावना पैदा कर देता है। आप जानते हैं आदमी को भूमि से कितना मोह होता है। कौरवों ने कहा था कि हम पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन विनोबा भावे के प्रेम ने लाखों एकड़ भूमि इकट्ठी करा दी। उन्होंने लोगों से ये नहीं कहा कि मुझे जमीन दो, नहीं दोगे तो कानून से या जोर जबरदस्ती से तुम्हारी जमीन को छिनवा दूंगा। जिसका हृदय प्रेम से सराबोर हो वो ऐसी भाषा भला कैसे बोल सकता था। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुम्हारे घर पर आया हूं। तुम्हारे 5 बेटे हैं, छठा होता उसका भी लालन पालन तो आपको करना ही होता। मुझे अपना छठा बेटा मान लो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। विनोबा का ये प्रेम ही था जिसने लोगों के दिलों को मोम बना दिया। किसी किसी ने तो अपनी सारी की सारी जमीन उनके चरणों में रख दी। जिसका हृदय निर्मल है उसी में ऐसे महान प्रेम का निवास रहता है। असली प्रेम तो वो है जिसमें किसी प्रकार के बदले की भावना ना हो। इतना ही नहीं, उसमें विरोधी के लिए भी जगह हो। गर्मी से व्याकुल होकर हम न जाने कितनी बार सूरज से नाराज हो जाते हैं, पर वो कभी हम पर नाराजगी नहीं दिखाता। हम धरती को रोज पैरों से दबाते हुए चलते हैं, पर वो कभी गुस्सा नहीं होती। जरा गर्म हवा आती है तो हम कहते हैं, मार डाला ऐसी हवा ने। हमारी गाली का हवा कभी बुरा नहीं मानती। यदि गुस्सा होकर सूरज धूप

0: रोशनी ना दे, धरती अन्न ना दे, हवा प्राण ना दे, तो सोचे हम लोगों की क्या हालत होगी। ऐसे प्रेम का वरदान विरलों को ही मिलता है, पर जिन्हें मिलता है वो अपने को कृतार्थ बना जाते हैं, दुनिया को धन्य कर जाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, सेवा प्रेम का भाव, वाचन स्वर रजनीश गुप्ता का था। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। अब प्रसारित कर रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।

अभी आपने सुनी समूह स्वर में मातृवंदना। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और करते हैं सुमिरन विघ्नहर्ता सुखकर्ता प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश का।

शब्द के साथ ही श्रोताओं, भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी देहरादून है। सुबह के 6:25 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गांधी कथा। वाचन स्वर कल्पना पंकज का है।

0: गांधी कथा। आज की संख्या में महात्मा गांधी की पुस्तक सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से कुछ अंश और अंत में गांधी जी का एक प्रिय भजन।
1: एक सुझाव यह था कि वृक्षारोपण किया जाए। इसमें मुझे दंभ दिखाई पड़ा। ऐसा जान पड़ा कि वृक्षारोपण केवल साहबों को खुश करने के लिए हो रहा है। मैंने लोगों को समझाने का प्रयत्न किया कि वृक्षारोपण के लिए कोई विवश नहीं करता, वह एक सुझाव मात्र है। वृक्ष लगाने हो तो पूरे दिल से लगाने चाहिए, नहीं तो बिल्कुल न लगाने चाहिए। मुझे कुछ ऐसा याद पड़ता है कि जब मैं कहता था तो लोग मेरी बात को हंसी में उड़ा देते थे। अपने हिस्से का पेड़ मैंने अच्छी तरह लगाया और पाल पूस कर बड़ा, इतना मुझे याद है। गॉड सेव द किंग गीत में अपने परिवार के बालकों को सिखाता था। मुझे याद है कि मैंने उसे ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को सिखाया था, लेकिन वह यही अवसर था अथवा सातवें एडवर्ड राज्यारोहण का अवसर था, सो मुझे ठीक याद नहीं है। आगे चलकर मुझे गीत गाना खटका। जैसे जैसे अहिंसा संबंधी विचार मेरे मन में दृढ़ होते गए, वैसे वैसे मैं अपनी वाणी और विचारों पर अधिक निगरानी रखने लगा। उस गीत में दो पंक्तियाँ ये भी हैं, उसके शत्रुओं का नाश कर उनके षड्यंत्रों को विफल कर। इन्हें गाना मुझे खटका। अपने मित्र डॉक्टर बूथ को मैंने अपनी ये कठिनाई बताई। उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये गाना अहिंसक मनुष्य को शोभा नहीं देता। शत्रु कहलाने वाले लोग दगा ही करेंगे, यह कैसे मान लिया जाए? ये कैसे कहा जा सकता है कि जिन्होंने हमने अपने शत्रु माना वे बुरे ही होंगे? ईश्वर से तो न्याय ही मांगा जा सकता है। डॉक्टर बूथ ने इस दलील को माना। उन्होंने अपने समाज में गाने के लिए एक नए ही गीत की रचना की। डॉक्टर बूथ का विशेष परिचय हम आगे करेंगे। राजनिष्ठा की तरह शुश्रूषा का गुण भी मुझ में स्वाभाविक था। यह कहा जा सकता है कि बीमारों की सेवा करने का मुझे शौक था, फिर वे अपने हो या पराए। राजकोट में मेरा दक्षिण अफ्रीका का काम चल रहा था। इसी बीच मैं बंबई हो आया। खास खास शहरों में सभाएं करके विशेष रूप से लोकमत तैयार करने का मेरा इरादा था। इसी ख्याल से मैं वहां गया था। पहले मैं न्यायमूर्ति रानाडे से मिला। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे सर फिरोज शाह मेहता से मिलने की सलाह दी। बाद में मैं जस्टिस बद्रुद्दीन तैयब जी से मिला। उन्होंने मेरी बात सुनकर वही सलाह दी। सर फिरोज शाह से मुझे मिलना ही था, पर इन दो गुरुजनों के मुंह से उनकी सलाह के अनुसार चलने की बात सुनकर मुझे इस बात का विशेष बोध हुआ कि सर फिरोज शाह का जनता पर कितना प्रभुत्व था। मैं सर फिरोज शाह से मिला। उनके तेज से चकाचूंध हो जाने को तो मैं तैयार था ही। उनके लिए प्रयुक्त होने वाले विश्लेषणों को मैं सुन चुका था। मुझे बम्बई के शेर अथवा बम्बई के बेताज के बादशाह से मिलना था, पर बादशाह ने मुझे डराया नहीं। पिता जिस प्रेम से अपने नौजवान बेटे से मिलता है, उसी तरह वे मुझसे मिले। उनसे मुझे उनके चैम्बर में मिलना था।

उनके पास उनके अनुयायियों का दरबार तो भरा ही रहता था। बादशाह थे, कामा था, इनसे उन्होंने मेरी पहचान कराई। बादशाह का नाम मैं सुन चुका था। वे सर फिरोज शाह के दाहिने हाथ माने जाते थे। वीरचंद गांधी ने अंक शास्त्री के रूप में मुझे उनका परिचय दिया था। उन्होंने कहा, गांधी हम फिर मिलेंगे। इस सारी बातचीत में मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे। सर फिरोज शाह ने मेरी बात सुन ली। न्यायमूर्ति रानाडे और तैयब जी से मिल चुकने की बात भी मैंने उन्हें बता दी। उन्होंने कहा, गांधी तुम्हारे लिए मुझे आम सभा करनी होगी, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। फिर अपने मुंशी की ओर मुड़े और उसे सभा का दिन निश्चित करने को कहा। दिन निश्चित करके मुझे विदा किया। सभा से एक दिन पहले आकर मिलने की आज्ञा दी। मैं निर्भय होकर मन ही मन खुश होता हुआ घर लौटा। बंबई की इस यात्रा में वहां रहने वाली अपने बहनों से मिलने गया। वे बीमार थी, घर में गरीबी थी, अकेली बहन से उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं हो पाती थी, बीमारी गंभीर थी। मैं उन्हें अपने साथ राजकोट चलने को कहा। वे राजी हो गई। बहन बहनोई को लेकर मैं राजकोट पहुंचा। बीमारी अपेक्षा से अधिक गंभीर हो गई। मैंने उन्हें अपने कमरे में रखा। मैं सारा दिन उनके पास ही रहता था, रात में भी जागना पड़ता था। उनकी सेवा करते हुए मैं दक्षिण अफ्रीका का काम कर रहा था। बहनोई का स्वर्गवास हो गया, पर उनके अंतिम दिनों में उनकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला। इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। शुरुषा के मेरे इस शौक ने आगे चलकर विशाल का रूप धारण कर लिया, वह भी इस हद तक कि उसे करने में मैं अपना धंधा छोड़ देता था, अपनी धर्म पत्नी को और सारे परिवार को भी उसमें लगा देता था। इस वृत्ति को मैंने शौक कहा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब ये गुण आनंददायक हो जाते हैं तभी निभ सकते हैं। खींच तान कर अथवा दिखावे के लिए यह लोकलाज के कारण की जाने वाली सेवा आदमी को कुचल देती है, और ऐसी सेवा करते हुए भी आदमी मुरझा जाता है। जिस सेवा में आनंद नहीं मिलता वह न सेवक को फलती है, न सेवकों को रुचिकर लगती है। जिस सेवा में आनंद मिलता है उस सेवा के सम्मुख ऐश आराम या धनोपार्जन इत्यादि कार्य तुच्छ प्रतीत होते हैं। मुझे बहनोई के देहांत के दूसरे दिन ही बंबई की सभा के लिए जाना था। सार्वजनिक सभा के लिए भाषण की बात सोचने जितना समय मुझे मिला न था। लंबे जागरण की थकावट महसूस हो रही थी, आवाज भारी हो गई थी। ईश्वर जैसे तैसे मुझे निभा लेगा, ये सोचता हुआ मैं बंबई पहुंचा। भाषण लिखने की बात तो मैंने सपने में भी न सोची थी। सभा की तिथि से एक दिन पहले सायंकाल को 5 बजे आज्ञा अनुसार मैं सर फिरोज शाह के कार्यालय में उपस्थित हुआ। उन्होंने पूछा, गांधी आपका भाषण तैयार है? मैंने डरते डरते उत्तर दिया, जी नहीं, मैंने तो जबानी ही बोलने की बात सोच रखी है। ये बंबई में नहीं चलेगा, यहाँ की रिपोर्टिंग खराब है। यदि सभा से हमें कुछ लाभ उठाना हो तो आपका भाषण लिखा हुआ ही होना चाहिए एवं रात्रि में ही छप जाना चाहिए। भाषण रात्रि में ही लिख सकोगे ना? मैं घबराया, पर मैंने लिखने का प्रयत्न करने की हामी भरी। बंबई के सिंह बोले, तो मुंशी आपके पास भाषण लेने कब पहुंचे? मैंने जवाब दिया, 11 बजे। सर फिरोज शाह ने अपने मुंशी को उस वक्त भाषण प्राप्त करके रात्रि में ही छपा लेने का आदेश दिया और मुझे विदा किया। मैं दूसरे दिन सभा में गया। वहां मैं ये अनुभव कर सका कि भाषण लिखने का आग्रह करने में कितनी बुद्धिमानी थी। फराम जी कावास जी इंस्टीट्यूट के हॉल में सभा थी। मैंने सुन रखा था कि जिस सभा में सर फिरोज शाह बोलने वाले हो उस सभा में खड़े रहने को जगह नहीं मिलती। ऐसी सभाओं में विद्यार्थी समाज विशेष रस लेता था। मेरा ऐसी सभा का ये प्रथम अनुभव था। मुझे विश्वास हो गया कि मेरी आवाज़ कोई सुन नहीं सकेगा। मैंने कांपते कांपते भाषण पढ़ना शुरू किया। सर फिरोज शाह मुझे प्रोत्साहित करते जाते थे, जरा और ऊंची आवाज़ से यूँ कहते जाते थे, मुझे कुछ ऐसा विचार है कि इस प्रोत्साहन से मेरी आवाज़ और धीमी पड़ती जाती थी। पुराने सखा केशवराव देशपांडे मेरी सहायता को बढ़े। मैंने भाषण उनके हाथ में दे दिया। उनकी आवाज़ तो अच्छी थी, पर श्रोतागण क्यों सुनने लगे? बादशाह बादशाह की पुकार से हॉल गूंज उठा। बादशाह उठे, उन्होंने देशपांडे के हाथ से कागज़ ले लिया।
एवं मेरा कार्य बन गया। सभा में तुरंत शांति छा गई एवं आज से इति तक सभा ने भाषण सुना। प्रथा के अनुसार जहाँ आवश्यक था वहाँ शेम शेम की एवं तालियों की आवाज भी होती रही। मुझे खुशी हुई।

गांधी जी के इस प्रिय भजन के साथ ही गांधी कथा का आज का अंक यहीं पर संपन्न हुआ। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा। वाचन स्वर कल्पना पंकज का था। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:40 होने को हैं। अब प्रसारित कर रहे हैं श्री रामचरितमानस गान।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी से श्री रामचरित मानस तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनकर गरुड़ कृतकृत्य हो गए। अब उनके इस आश्रम से विदा होने की घड़ी आ पहुंची थी, किंतु विदा होने से पहले वे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते थे। ये 7 प्रश्न थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत और असंत का भेद, सबसे महान पुण्य, सबसे भयंकर पाप और मानस रोग कौन से हैं? काकभुशुंडी ने उत्तर दिए, सबसे दुर्लभ मानव शरीर है और अभागे हैं वे जो इसे पाकर हरि भजन नहीं करते। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। संत मिलन के समान अन्य सुख नहीं है। संत परोपकार करते हुए दुख स्वीकार कर लेते हैं और असंत दूसरों को दुख देने में सुख का अनुभव करते हैं। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म अर्थात सबसे महान पुण्य बताया है और पर निंदा को घोर पाप। सभी प्रकार के मानस रोगों की जड़ है मोह अथवा अज्ञान, क्योंकि इसी से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है।

अभी आप आनंद ले रहे थे श्री रामचरितमानस गान का। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज दिनांक 12 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

प्रातःकालीन सभा में अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी भजन। कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह के 7:10। उत्तराखंड की प्रादेशिक समाचार सुनिएगा सुबह 7:20 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर और शाम के 6:30 पर। गढ़वाली में इनका प्रसारण किया जाएगा शाम 6:50 पर और कुमावनी में आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर।

पर्वतीय लोकगीतों के कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत सुबह 7:30 पर आज आप सुनेंगे सरिता मंदोलिया के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून प्रसारित किया जाएगा सुबह के 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीत आप सुनेंगे सुबह के 9:00। कार्यक्रम अनुभव के अंतर्गत सुबह 9:30 पर प्रसारित की जाएगी लीलाधर जगूड़ी से रमेश चंद्रा की बातचीत। AIR न्यूज हेडलाइंस का समय रहेगा सुबह 10:00, दोपहर 12:10, अपराह्न 3:00 और शाम 4:00।

सुबह 10:02 पर प्रसारित करेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 10:11, दोपहर 1:15, शाम 7:40 और रात 8:30।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुबह 10:35 पर आज सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में जौनसारी लोकगीत। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा सुबह 11 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:12 पर सुनिएगा कुलबीर चन्नी के स्वर में शब्द।

0: हमारी बहनों का कार्यक्रम महिला जगत प्रसारित करेंगे दोपहर के 12:30 पर। आज के अंक में होगी शमसुन्निसा खां द्वारा कहानी पहल जरूरी है। दोपहर के 1:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम और दोपहर के 2:30 पर प्रसारित करेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। गाने नए तराने आप सुनिएगा दोपहर 3:02 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शाम 4:02 पर आप आनंद ले सकेंगे मोहन सिंह रावत द्वारा सितार वादन का। ये प्रस्तुत करेंगे राग गौड़ सारंग। कार्यक्रम एक कलाकार के अंतर्गत शाम के 4:30 पर सुनिएगा फिल्म अभिनेत्री श्यामा पर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा गीत। ये थी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 MHz पर यह है आकाशवाणी देहरादून। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जा क्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-तम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलदूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयल तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तम्

0: यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयु इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट एतत्पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नीपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः इति वार्ताः
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है यह समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ गृहमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिका से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said that when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategy around it. In a significant development, the Centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic, deep fake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovering systems, and unauthorized access to financial and digital services. The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. President Draupadi Murmu will be on a 2-day visit to Uttarakhand beginning today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed concern that ongoing conflicts are imposing costs and triggering changes far beyond the regions. The minister said this while participating in a discussion with his Finnish counterpart Elina Voltunen and Assistant Foreign Minister of UAE Lana Nusebe on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland. Dr. Jaishankar also stressed the need for the international community to continue efforts to mitigate their consequences and create conditions for diplomacy. The Enforcement Directorate ED has arrested Naresh Kumar, the then superintendent in the Office of Director Development and Panchayat Haryana, in connection with the ongoing investigation in IDFC Bank fraud case. He was arrested under the provisions of Prevention of Money Laundering Act, PMLA, 2002. Investigation in the case has revealed embezzlement of public funds amounting to 645 crore rupees from the bank accounts of Haryana government, Chandigarh administration and two private schools maintained with IDFC First Bank. US President Donald Trump said last night that he has called off new military strikes on Iran

श्रोताओं, ये भजन आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म थी आजाद, गीतकार राजेंद्र कृष्णन थे और संगीत था सी रामचंद्र का। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर में फिल्म घराना से ये भजन। लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 7:20 होने को हैं। अब प्रसारित कर रहे हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पर दिया जोर। हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और जन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 115 करोड़ रुपए की परियोजना की को मंजूरी दी। और देहरादून में मानसून पूर्व तैयारियों पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रही हैं। उनके आगमन को लेकर शासन, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। यहां वे 132 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। दौरे के दूसरे दिन कल राष्ट्रपति भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने राष्ट्रपति निकेतन परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान विभिन्न मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विशेष नीति समर्थन तथा दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानव संसाधन विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और युवा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों की आधुनिकीकरण, स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लासरूम और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और सेमीकंडक्टर तकनीक जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा और सेवा के क्षेत्र को जोड़ते हुए समन्वित विकास मॉडल पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती, बागवानी, औषधीय पौधों, योग एवं वेलनेस, पर्यटन और ग्रीन एनर्जी को विकास के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही राज्य को नॉलेज बेस्ड और वेलनेस इकोनॉमी के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी जारी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12 वर्षों के कार्यकाल के लिए बधाई दी और अगले वर्ष उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कुंभ मेला तथा नंदा राजजात यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से निशी भाटिया।
1: उत्तराखंड में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए रेरा में व्यापक सुधारों की तैयारी शुरू हो गई है। सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की निगरानी, शिकायत निस्तारण और बिल्डरों की पंजीकरण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, असम और हिमाचल प्रदेश की रेरा व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उत्तराखंड में बेहतर व्यवस्था लागू करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही रेरा के ऑनलाइन पोर्टल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रणाली से जोड़ने का सुझाव दिया गया, जिससे परियोजना पंजीकरण और अनुमोदन प्रक्रिया

0: एक सरल और पारदर्शी हो सके। बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि रेरा पंजीकरण के बाद स्वीकृत नक्शे में किसी भी बदलाव के लिए परियोजना के कम से कम 2/3 आवंटियों की सहमति अनिवार्य हो। इसके अलावा बिल्डरों और प्रमोटरों की पूर्व परियोजनाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। समीक्षा के दौरान राज्य में बढ़ रही अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति के निर्माण गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की गई। अधिकारियों ने तय किया कि विकास प्राधिकरणों द्वारा की गई सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य कार्रवाई की जानकारी रेरा को भी उपलब्ध कराई जाए ताकि खरीदारों को संभावित जोखिम वाली परियोजनाओं की जानकारी मिल सके।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने एकीकृत स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट तथा जन स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के लिए 115 करोड़ 61 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। यह परियोजना पूरी तरह केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत संचालित की जाएगी। इसका उद्देश्य कुंभ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है।
2: योजना के तहत मेला क्षेत्र में 13,915 शौचालय, 8,065 यूरिनल और 2,000 स्नान गृह स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4,848 कूड़ादान, 31.38 लाख लाइजेंट बैग, 491 अपशिष्ट संग्रहण वाहन, 2 ट्रैश बूम और 15 घाट सफाई मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वच्छता व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए स्प्रेइंग मशीनें, फॉगिंग मशीनें, घास काटने की मशीनें, ट्रैक्टर, पीपीई किट और प्राथमिक उपचार किट सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की भी व्यवस्था की जाएगी। योजना में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ट्रांसफर स्टेशन सुविधाओं, गैस आधारित शवदाह और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही निगरानी और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए क्लाउड आधारित डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
0: देहरादून में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में कल से मॉनसून पूर्व तैयारियों पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों तथा विशेषज्ञों ने भाग लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: कार्यक्रम में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी ने कहा कि आपदा प्रबंधन में केवल सरकारी तंत्र ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने आधुनिक तकनीकों के साथ स्थानीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान को भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण बताया। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्विकास सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा प्रबंधन एक बहुविभागीय विषय है और इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्व चेतावनी प्रणाली, बाढ़ प्रबंधन, शहरी बाढ़, जोखिम मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियां, उभरती तकनीकों और बहु एजेंसी समन्वय जैसे विषयों पर विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सचिव विनोद कुमार सुमन ने नदी, नालों, झरनों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर रील और सेल्फी बनाने के बढ़ते चलन पर चिंता जताई। उन्होंने सभी जिलों को दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर उन्हें नो सेल्फी जोन घोषित करने तथा वहां चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से निशी भाटिया।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र सरकार की जनधन, उज्ज्वला और मुद्रा जैसी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक पहुंचा है। उन्होंने बताया कि जनधन योजना के तहत उत्तराखंड में 40 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जबकि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और जनकल्याणकारी नीतियों के कारण देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
4: कम से कम 36 लाख लोगों को इसका मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, अपनी गैस सिलेंडर की, उसमें 10 करोड़ 57 लाख इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले है और उत्तराखंड में

0: 5,05,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पर दिया जोर। हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और जन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 115 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। और देहरादून में मॉनसून पूर्व तैयारियों पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाहन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। अब समय है पर्वतीय लोकगीतों के कार्यक्रम शैल संगीत का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गढ़वाली लोकगीत। गायक कलाकार हैं सरिता मेंदोलिया। इनके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर सतेंद्र सिंह, तबले पर आयुष, हुड़के पर सतीश कुमार जोशी और बांसुरी पर सुनील कुमार ध्यानी। साथ ही हारमोनियम पर हैं जितेंद्र काला।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
4: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
5: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं पर्वतीय लोकगीतों का कार्यक्रम शैल संगीत। और आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सरिता मेंदोलिया के स्वर में गढ़वाली लोकगीत।

0: कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सरिता मेंदोलिया के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। इनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर सतेंद्र सिंह, तबले पर आयुष, हुड़के पर सतीश कुमार जोशी, बांसुरी पर सुनील कुमार ध्यानी और हारमोनियम पर जितेंद्र काला। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीफेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
5: We signed this year a free trade agreement with Europe.
6: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
7: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
8: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
7: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे।

0: श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री

श्रोताओं, आप सभी को मेरा यानी मिताली पुनेठा का पन्नों में क्या रहा है खास और क्या आज के अखबारों की सुर्खियां रहेंगी वो भी। श्रोताओं, हर नया दिन ना अपने साथ लेकर आता है खूब सारी नई उम्मीदें, नए अवसर और नई ऊर्जा, और उसके बाद आगे हमारी बातें जारी रहेंगी।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
2: श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में जो कि है नमस्कार देहरादून। हमारा ये दैनिक सूचना परक कार्यक्रम आप तक पहुंचता है आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं सफल वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि सफल वो भी होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा होना जानता है। ये जीवन ना हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाते रहता है, इसलिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हर मुश्किल का सामना मुस्कुराते हुए करें। इस तरीके के जो विचार होते हैं ना, अगर हम सुबह सुबह सुने तो ये हमें पूरे दिन के लिए ऊर्जा देते रहते हैं। इन विचारों के बाद आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज जो ये 12 जून की तारीख है, इस दिन क्या खास रहा है हमारे देश विदेश के इतिहास के पन्नों में। तो श्रोताओं जो ये विश्व इतिहास का में आज का दिन है ना, वो कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। साल 1964 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला को रंग भेद विरोधी आंदोलन के कारण आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्षों बाद वही मंडेला स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और पूरी दुनिया के लिए समानता और लोकतंत्र का प्रतीक बने। भारत के इतिहास की बात करें तो 12 जून का दिन कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के लिए याद किया जाता है। ये दिन हमें लोकतंत्र अधिकारों और सामाजिक न्याय के महत्व की याद दिलाता है। इसके अलावा आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराने के प्रति जागरूकता फैलाना है। ये इतिहास हमें केवल अतीत की जानकारी नहीं देता, बल्कि हमारे वर्तमान को बेहतर बनाने और भविष्य को संवारने की प्रेरणा भी देता है। इस रोचक जानकारी के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और सुनवा रहे हैं आपको एक और गीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में और इस समय अब समय हो चला है कि हम आपको बताएं कि क्या खास है हमारे आज के अखबारों की सुर्खियों में। तो श्रोताओं ये जो पहली खबर है वो है कि भारतीय सैन्य अकादमी IMA में शनिवार को पास आउट होकर 481 युवा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर निकलेंगे। इस दौरान पहली बार न महिला कैडेट भी पास आउट होंगी। 16 मित्र देशों के 34 ऑफिसर कैडेट भी प्रशिक्षण पूरा कर अपने देशों की सेनाओं का हिस्सा बनेंगे। कुल 515 कैडेट अकादमी के ड्रिल स्क्वायर पर परेड करते दिखाई देंगे और परेड की सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी। अगली खबर है कि पुरुषों के बाद अब जो हमारी बेटियां हैं वो भी बल्ले से धमाल मचाने को तैयार हैं। जी हां, महिलाओं का T20 विश्व कप शुक्रवार से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। ये 10वां संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जहां पहली बार 12 टीमें 24 दिनों में 33 मुकाबले खेलेंगी और जो भारत का पहला मैच होगा वो 14 जून को होगा पाकिस्तान के साथ बर्मिंघम में। अगली खबर है कि इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए 36 विषयों में PhD प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्षेत्रीय केंद्र दून के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अनिल कुमार डिमरी ने बताया कि www.ignu.ac.in पर 1 जुलाई तक आवेदन हो सकेंगे। नगर निगम ने शहर में जल भराव और आपदा से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए शहर को 5 जोन में बांटते हुए अफसरों की तैनाती की गई। टोल फ्री नंबर 1-800-180-4571 पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। अगली खबर है कि HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की अंतिम परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। विधि शिक्षा प्रबंधन विज्ञान एवं बाकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 17 से 20 जून तक विभिन्न पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर पहुंचते हैं जो है रेसकोर्स स्थित RG हॉस्पिटल में आगामी 19 और 20 जून को 2 दिवसीय मेगा प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे। यहां पर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलने वाले स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर अपने परामर्श देंगे। श्रोताओं अब अगर हम मौसम की बात करें तो जो हमारा देहरादून का मौसम रहने वाला है वहाँ आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर को पहाड़ी इलाकों में बरसात हो सकती है। इस मौसम की जो खबरें हैं जो मौसम की जानकारी है और जो हमारे अखबारों की सुर्खियां हैं इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं एक और गीत का।

एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, जो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन है ना, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो कुछ सरल आदतें अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं, जिसमें हम सभी जानते हैं कि हम सुबह उठकर अगर नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना होता है, जिससे कि शरीर में डिहाइड्रेशन ना रहे। मौसमी फल और हरी सब्जियां अपने भोजन में हमें ज़रूर से ज़रूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि असली ऊर्जा का स्रोत वही है। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे जीवन में अगर हम बदलें तो उससे एक बड़ा बदलाव आ सकता है, जो है अपने मोबाइल और स्क्रीन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम आसपास की चीज़ों पर उस तरह से अब गौर नहीं कर पाते, या अपनी जीवन शैली पर उस तरह से गौर नहीं कर पाते जैसे आज से पहले किया करते थे। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल ही हमारा मनोरंजन ही खत्म हो जाए, हम ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहते हैं। लेकिन आप स्विच कर सकते हैं, आप मोबाइल की स्क्रीन देखते रहने से अच्छा आप रेडियो में गाने सुन सकते हैं। और आपको पता है कि आपको सुनना क्या है, आपको सुनना है आकाशवाणी देहरादून FM 100.5 MHz पर, क्योंकि यहाँ आपको जानकारी भी मिल जाती है और यहाँ आपको अच्छे अच्छे गानों के साथ आपका मनोरंजन भी हो जाता है। तो है ना ये कमाल की बात कि आप अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करके अपने मनोरंजन को दूसरे तरीके से बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी छोटी सी लेकिन प्यारी सी कहानी के ऊपर। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जिसने एक बुजुर्ग से पूछा कि खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो वो जो बुजुर्ग थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि लोगों से ना अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए, अपने प्रयास ज्यादा करने चाहिए और जो आपके पास है उसके लिए हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ये अगर सीख हम सभी अपने जीवन में अपना लें तो आसानी हो जाएगी हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने में। जीवन की जो खुशियां हैं वो अक्सर हमारे आसपास ही होती हैं, कभी सामने होती हैं, कभी दबी छुपी होती हैं। बस उन्हें महसूस करने की, उन्हें देखते रहने की जरूरत है। इसलिए छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना सीख लीजिए, आपको जो अपना जीवन है ना वो और भी बेहतर और भी सुंदर लगने लगेगा। इस विचार के साथ कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं हम कार्यक्रम का आज का ये अंतिम गीत।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हमें दीजिए अनुमति। उम्मीद है कि ये आधा घंटा आपके लिए जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर रहा होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहें। मैं मिताली पुनेठा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार देहरादून।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

सूरज की किरणें कह रही हैं, उठो और मुस्कुराओ, जो बीत गया है उसे भूल जाओ। हर दिन नहीं मिलता जिंदगी में बार बार, आज मिला है तो इसे दिल से अपनाओ। श्रोताओं, एक और नई सुबह, एक और नया दिन, कुछ नए सपने, कुछ नई उम्मीदें और कुछ नए अवसर लेकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। तो आइए इस खूबसूरत सी सुबह का हम बिल्कुल अच्छे मन से स्वागत करें और अपने दिन को एक नई दिशा में आगे ले जाएं।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: श्रोताओं सदाबहार फिल्मी गीतों के इस सफर में आप तक जो पहला गीत पहुंचा था वो था फिल्म आज का गुंडा राज से और उस गीत को अपनी आवाज दी थी कुमार सानू और अलका याग्निक ने बोल थे समीर के और संगीत था आनंद मिलिंद का कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं एस जानकी मुन्ना अजीज और साथियों के स्वर में फिल्म आखिरी रास्ता से ये गीत जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने

0: Everybody will sing with me.
1: Okay.
0: Ready? Come on. One.

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के युगल स्वर में सुनिए फिल्म बेताब से कार्यक्रम का ये अगला गीत। बोल है आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म दिल एक मंदिर से ये गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत था शंकर जयकिशन का। श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं, माफ कीजिए, ये गीत अब आप सुनेंगे फिल्म दिल एक मंदिर से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: सीएनजी में
1: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए निसान ग्रेफाइट सीएनजी के साथ 7 सीटर जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
0: 6.48 लाख से शुरू, आज ही अपने नजदीकी निसान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
2: संपर्क करें पाल निसान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
3: ये पर्दा हटा दो,

0: फिल्म एक फूल दो माली से आप ये गाना सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में। इसी गीत के साथ श्रोताओं, सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर ये है आकाशवाणी देहरादून। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम अनुभव के अंतर्गत पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी से रमेश चंद्रा की बातचीत।
1: न्यायवादी युग में कौन है जो नहीं रहा आकाशवाणी का मुरीद। जमीन की भाषा में जमीन को, पानी की भाषा में पानी को कुछ कहना कितना मुश्किल है। मुझे काम है सरल भाषा बोलना, सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है।
2: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है मशहूर साहित्यकार पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी को, और आज हम जानेंगे इनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में।

0: पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी, कार्यक्रम आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: आपसे जानना चाहेंगे आपकी साहित्य की यात्रा के बारे, कब आपका साहित्य के प्रति रुझान शुरू हुआ?
1: इसका उत्तर तो एक तरीके से नहीं दिया जा सकता, इसका उत्तर तो मैं कई तरीके से देना जानता हूँ। पहली चीज तो होती है कि आप किताबें कितनी पढ़ते हैं, दूसरी ये होती है कि आप लिखने पढ़ने वाले लोगों की संगति में कितना रहते हैं, और तीसरी चीज ये होती है कि आपके जो पाठक हैं वो आपको कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। तो से कम तीन आयाम तो है ही है
0: जी
1: लेखक को जानने के। और मेरे जहाँ तक सवाल है, मेरा यह है कि मेरे पिता बहुत गंभीर पाठक थे गीता प्रेस गोरखपुर के, और उनके पास कल्याण और अन्य सब पुराणों के सारे ग्रंथ आते थे। तो एक तो मैं जब उनको पढ़ता था तो मुझे लगता था एक नई दुनिया है जिसको हम जानते ही नहीं है। उसने मुझे लेखक बनाया, और उस नई दुनिया में यहाँ तक कि भगवानों के फोटो छपते थे तो भगवान भी मनुष्य की तरह दिखाई देते थे कि भाई ये भी कोई आदमी है जो जिसका फोटो छपता है, भगवान भी एक मनुष्य है, ये भावना मन में काम करती थी। और उस मनुष्य को जानने के लिए मैंने साहित्य को जानना चाहा कि इस मनुष्य की तो बहुत गाथाएं हैं, ये मनुष्य जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है, इसकी गाथाएं जब हम एक कृष्ण के रूप में देखें, राम के रूप में देखें, या खलनायक के रूप में देखें, या नायक के रूप में देखें, तो अनंत कथाएं हैं उसकी। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ईश्वर के जो बहुविध रूप है उन सबको जानने की जिज्ञासा साहित्य ने मुझ में जगाई। और ईश्वर को मैं कितना जान पाया ये तो मैं आज भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जान पाया, और शायद कोई आदमी जान पाता हो तो धन्य है, मैं तो नहीं जान पाया। लेकिन ईश्वर ने एक क्यूरियोसिटी बढ़ाई मन में किसी चीज को जानने की, वस्तु वस्तु क्यों है, वो एक तर्क पैदा करता है। ईश्वर का होना ना होना भी एक तर्क पैदा करता है। बहुत से लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, ये भी एक तर्क पैदा करना है। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर की उपस्थिति और अनुपस्थिति और ईश्वर की अध्यक्षता में सारे संसार चल रहा है, चाहे वो उसका कोई उत्तर मिलता हो चाहे उसका उत्तर न मिलता हो।
0: जी,
1: इस निरुत्तर संसार में आप ईश्वर की स्थापना के लिए बहुत प्रयास करते हैं, और ईश्वर फिर आपको शायद स्थापित करता है कि नहीं करता ये अलग बात है, लेकिन मनुष्य खोज तो करता है ईश्वर की।
0: जब आपने साहित्य सृजन का कार्य शुरू किया, कोई साहित्यकार, कोई कवि आपकी प्रेरणा कौन थे?
1: निराला, निराला रहे और पंत जी रहे, लेकिन निराला ज्यादा रहे। उस समय के जो गीतकार थे उनमें नीरज, और उस समय एक और हुआ करते थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, अच्छे गायक थे वो भी काफी अच्छे प्रसिद्ध थे और मेरे मन को भाते थे। तो साहित्यकारों का तो कोई और छोर नहीं है, काफी लोग हुए हैं, छायावाद में भी और आधुनिक नई कविता में भी दर्जनों लोग हुए हैं, और सबका योगदान है एक मनुष्य की, एक नए पढ़ने वाले बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करना और उसको साहित्य की ओर रुझान में डालना।
0: अभी आपने कहा कि भगवान को लेकर आपका जो चिंतन था, वो एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई और आपको लगा कि इसको और आगे जानना है, उनकी वजह से आपका साहित्य की तरफ जुड़ाव ज्यादा होता चला गया। अगर हम बात करें जो आपकी प्रेरणा थे, जो तत्कालीन समय के मूर्धन्य कवि, कुछ ऐसी बातें जिन बातों ने आपको प्रेरित किया हो,
1: एक बात हो तो उसको मैं एक उदाहरण दूं, कई बातें हैं
0: जी।
1: जैसे निराला थे, तो निराला में भाषा का एक अद्भुत सामंजस्य था, वो अलग किस्म की भाषा, पंत जी की तरह नहीं लिखते थे, अपने तरह लिखते थे और भाषा का इस्तेमाल दूसरे ढंग से करते थे। ठीक इसी तरीके से दिखाई देता है कि फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियां अगर आपने पढ़े हो तो कहानियों की भाषा बदली रेणु ने कहानियों की भाषा बदल दी भाई। तो उसका सामंजस्य, उसको किस एंड पे पहुंचाना है, आप रेणु को पढ़िए तो आज भी लगता है कि यार अद्भुत राइटर था ये। ठीक इसी तरीके से नागार्जुन हुए हैं बिहार में, बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे, आशु कवि भी थे, कोई बात के लिए कविता कहनी है तो नागार्जुन इसके लिए प्रसिद्ध थे, वो तुरंत कुछ जड़ देते थे। ये खूबियां होती हैं लेखकों की।
0: आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती होगी।
1: देखिए पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ऐसी रही है कि मैं 11 वर्ष अवस्था में घर से भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि मेरे पिताजी बहुत पीटते थे, तो उस मार से बचने के लिए मैं घर से भाग गया, और भागा तो कहाँ पहुंचा, राजस्थान पिलानी, मैं फिर पुष्कर पहुंच गया, मैं बनारस पहुंच गया, उसके बाद मैंने सारे शहरों में खाक छानता रहा, लेकिन पढ़ता रहा
0: जी
1: स्कूलों में। और मारवाड़ी सेठों को भी मैं इसका धन्यवाद देता हूँ कि वो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, खाना पीना देते हैं, रहने की जगह देते हैं, हॉस्टलों में उनकी तरफ से हॉस्टल बने हुए हैं, वहाँ जगह मिलती है, तो मुझे भी मिल गई। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ आकाशवाणी के द्वारा, अगर कोई उनमें से कोई सुन रहा हो। ये चीजें संयोग से घटित होती है। दूसरा ये कि जैसे राजस्थान का उदाहरण लें, राजस्थान के एक उस समय बड़े प्रसिद्ध कवि थे, नाम ही भूल रहा हूँ अभी, को याद था, वो पिलानी में रहते थे। पिलानी पहुंचा तो उनकी भाषा बड़ी अटपटी थी, माने वो सरल भाषा नहीं इस्तेमाल करते, बड़ी कठिन भाषा। तो मैं तो इस तरह की भाषा लिखता था, मैं एक सरल भाषा का कवि हूँ। अगर वो सरल भाषा में कोई पूछे तुम्हारा क्या नाम है, अगर मैं घबराऊं नहीं ये पूछने के लिए कि तुम्हारा

0: कि क्यों पूछ रहे हैं मुझे, तो इनाम है। मतलब इस तरीके की पंक्तियां मेरे मन में बहुत आती थी और उसकी वजह से जिन लोगों में ये खूबियां होती थी उनसे मैं बहुत प्रभावित होता था। इस प्रभाव की वजह से ही शायद मैं थोड़ा बहुत सीख पाया। और आकाशवाणी का तो बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। आकाशवाणी में बड़े बड़े दिग्गज लोग आते थे उस जमाने के, बोलते थे, सुनाते थे। और एक बड़ी चीज थी जो उच्चारण की शुद्धता आकाशवाणी ने स्थापित की है। आकाशवाणी में शब्द का महत्व है। आकाशवाणी ने शब्द के महत्व को जानने में उस योगदान है आकाशवाणी का।
1: अभी आपने कहा कि मैं बहुत ही सरल भाषा का कवि हूँ, जानना चाहेंगे आपकी पहली कुछ पंक्तियां, पहली रचनाएं जो आपने लिखी थी।
0: यह है कि जो सरल भाषा होती है, मुझे काम है सरल भाषा बोलना, मुझे काम है सरल भाषा बोलना, सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। मुझे काम है सरल भाषा बोलना, सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। जैसे कोई पूछे कि ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम है, जैसे कोई पूछे कि ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम है, और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है। क्योंकि ठीक ठीक बोलो शब्द जो है अपने को डरा देता है कि भाई मैं क्या कोई चीज गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक ठीक बोलो कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है ये अलग बात है, लेकिन ठीक ठीक बोलो कि तुम्हारा क्या नाम है, तो किसी का कोई नाम होता ही नहीं है, सब दूसरों के नाम से काम चला रहे हैं। मैं लीलाधर के नाम से काम चला रहा हूँ, लीलाधर कृष्ण का नाम है, आपका नाम कुछ और है तो वो किसी और नाम से हो, तो मतलब अपना नाम कमाना बड़ा मुश्किल बात है, मुश्किल बात है। और शायद जो लोग अपना नाम कमा लेते हैं, जो उस नाम को धन्य कर लेते हैं, वो महान है।
1: आज के युवा कवि जो साहित्य के क्षेत्र में सृजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे?
0: आज के युवा कवियों से तो मुझे बड़ा असंतोष है, इसलिए कि आज तो कोई कविता की तरफ देखता ही नहीं है। युवा कवियों की पहले लाइन लगी रहती थी, छोटे छोटे बच्चे भी आते थे, वो भी कविताएं सुनाते। आज कोई सुनाता है क्या? कोई बच्चा, कोई यंग मैन, कोई दिखता है ऐसा आपको कि ये आपको कविता सुनाएगा? तो ये अकाल की स्थिति है, ये अकाल से गुजर रहा है साहित्य। कविता, कहानियां, कहानियां तो फिर भी थोड़ी बहुत होंगी, पर कविता नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। पहले लगता था आर पार नहीं, कविता बहुत है, लेकिन अब लगता है कविता का घोर अभाव हो गया। जिस समाज में, जिस भाषा में कवि नहीं होंगे, वो भाषा आगे पनपेगी नहीं। आज वो स्थिति आ गई है धीरे धीरे। क्या आपको दिखाई देता है कि नए कवियों में पहले होड़ लगी रहती थी, आपके आकाशवाणी में ही लाइन लगी रहती थी लोगों की? आज कितने लोग आते हैं जो कवि होने के प्रति संकल्पशील हो, समर्पित हो? इस तरह का यंग मैन आता है तो खुशी होती है, लेकिन उस यंग मैन के ना आने से, मैन हो वुमन हो, ना आने से बड़ी निराशा होती है।
1: अभी आपने कहा एक दौर था जब आकाशवाणी में बहुत ही मूर्धन्य कवि, रचनाकार, साहित्यकार आया करते थे। किस तरह से आकाशवाणी ने साहित्य को आगे बढ़ाया?
0: देखिए, आकाशवाणी ने सबसे पहली चीज तो यह करी, संवाद की स्थिति को सुधारा। और हिंदी में जो बोलचाल की भाषा कहते थे, एक स्टैंडर्डाइज किया है आकाशवाणी ने शब्दों को, कैसे बोलना चाहिए। और खास करके देवकीनंदन पांडे के तो हम लोग मुरीद थे कि जब वो बोलते थे तो मेज भी हिल जाती थी, इतनी अच्छी आवाज थी उनकी और इतना अच्छा तरीका था उनका बोलने का। आकाशवाणी को प्रसिद्ध बनाने में केवल संस्था का ही हाथ नहीं है, व्यक्तियों का भी हाथ है।
1: व्यक्तियों से ही संस्था बनती है,
0: व्यक्तियों से ही संस्था बनती है। तो आकाशवाणी में विलक्षण लोग हुए हैं। और
1: कुछ ऐसे साहित्यकार जिनको आकाशवाणी ने मुकाम दिया हो, ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो, पहचान बनाई हो समाज में?
0: नहीं, ऐसा तो सबको स्थान दिया। सेतु का काम किया आकाशवाणी ने, एक ब्रिज का काम किया आकाशवाणी ने। और आकाशवाणी ने कल्चर, अभिव्यक्ति, चाहे वो नाटक की हो, चाहे कहानी की हो, चाहे कविता की हो, अभिव्यक्तियों के बीच सेतु का काम किया आकाशवाणी ने। और खास करके स्टैंडर्डाइज किया शब्दों को, शब्दों को कैसे बोला जाना चाहिए। आकाशवाणी इसका एक प्रतिमान है। और आकाशवाणी कोई नहीं बोलता, आकाशवाणी बोलते हैं
1: जी।
0: आकाशवाणी बोलने वाले को बाहर कर दिया जाता था, है कि नहीं? तो आकाशवाणी और आकाशवाणी में बड़ा फर्क है। तो ये किसने सिखाया? आकाशवाणी ने सिखाया,
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो शब्दों के साथ क्या व्यवहार किया जाए, कैसे उच्चारण किया जाए उनका, शब्दों का उच्चारण और शब्दों के द्वारा घटित होने वाले अर्थ का आविर्भाव, ये शब्दों के द्वारा आकाशवाणी ने सिखाया।
1: आपकी किसी ऐसी रचना के बारे में जानना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
0: बहुत सी रचनाएं हैं। मुझे काम है, मुझे काम है। एक सज्जन को बड़े, वो प्रेमचंद के परिवार के हैं, आप भी जानते होंगे शायद, उनके भतीजे के लड़के हैं, वो बड़े पदों पर रहे हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी रहे मेरे साथ। उनको मैंने सुनाई एक दिन, तो उन्होंने कहा कि आप तो गलत लिखते हैं। तो मैंने कहा क्या गलत है इसमें? तो उन्होंने कहा कि मुझे काम है, ये मेरा काम होना चाहिए, मुझे काम नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे काम है सरल भाषा बोलना,

0: मेरा काम है सरल भाषा बोलना, इसमें अहंकार है। जब मुझे काम है, इसमें विनय है, विनम्रता है कि मुझे काम है, अरे मुझे काम है, जरा मैं करके आ जाता हूँ, है ना। मुझे काम है सरल भाषा बोलना। सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है, सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। जैसे कोई पूछे कि ठीक ठीक बोलो, अब इसमें ठीक ठीक शब्द का अभिप्राय समझिए, क्योंकि ये बड़ा व्यंग्यात्मक शब्द है। मतलब तुमको तो बोलना आता है नहीं, ठीक ठीक बोलो, नाम क्या है तुम्हारा, ठीक ठीक बोलो, तुम्हारा क्या नाम है। ये असल में लिखा था मैंने इमरजेंसी के दिनों में
1: जी।
0: तो आपने कहा कुछ सुना दीजिए, तो मैं मुझे वही याद आ रही है कि मुझे काम है सरल भाषा बोलना। सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है। जैसे कोई पूछे कि ठीक ठीक बोलो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक ठीक बोलो, और ठीक ठीक बोलो की वजह से वो डर जाता है। ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम है, और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है।
1: कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब होता है, क्या साहित्य समाज को बदल भी सकता है?
0: देखिए, ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति साहित्य पीड़ित है या साहित्य का मुरीद है, वो बदल सकता है। साहित्य अपने आप में पहले व्यक्ति को बदलता है, व्यक्ति फिर परिस्थिति को बदलता है। केवल साहित्य ही नहीं बदलता, जब तक व्यक्ति नहीं बदला तब तक साहित्य अकेला कुछ नहीं कर सकता।
1: डिजिटल युग है आज का, क्या परिवर्तन देखते हैं पाठकों में आप?
0: सबसे बड़ा परिवर्तन तो आप इसमें महसूस कर सकते हैं। कितने युवक युवतियां हैं जो कविता लेके आपके पास आते हो कि हम कविता लिखते हैं। कविता का लिखने का ढंग बदल गया है, रंग बदल गया है, और कंटेंट बदल गया है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कवियों का अभाव हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा, और जिस भाषा में कवि नहीं होंगे वो भाषा आगे पनप नहीं सकती है। इसलिए कवि का होना ही बहुत जरूरी है।
1: अभी आप नई पीढ़ी और साहित्य के बीच दूरी की बात कर रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है?
0: नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है कि साहित्य जो है उतना फलदायी लोगों को नहीं लगता है कि वो आपको कुछ पैसा दिलवा सके, वो कुछ आपको उपार्जन करवा सके। तो साहित्य की अभी वो हैसियत बनी नहीं है, प्रारंभ में रही है, आकाशवाणी और दूरदर्शन जब आए थे तब रही है, लेकिन अब नहीं है। अब ऐसा नहीं है, फिल्मों में ज्यादा आकर्षण है, नाटक में हो सकता हो।
1: जो नई पीढ़ी है हमारी, वो साहित्य सृजन से दूर हो रही है।
0: ये बहुत
1: साहित्य की तरफ उसका जो लगाव है, झुकाव है, पहले जैसा नहीं रहा, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं?
0: पहले जैसे लोग भी नहीं रहे, उसकी वजह तो यही है ना कि पहले जैसी मनोवृत्ति भी नहीं रही। तो मनोवृत्ति होती है, तो मनोवृत्ति नहीं रही लोगों में। लोगों में चुटकुलेबाजी के प्रति ज्यादा आकर्षण है, ज्यादा आकर्षण है इस बात पे कि कुछ थोड़ा पहले पैसा मिले तब ज्यादा कुछ लिखा जाए। पहले के लोग ये करते रहे कि पहले लिखा जाए तब पैसा तो मिल ही जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी डिरेल तो कर रही हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि इसकी कमी आई है समाज में।
1: अगर साहित्य को एक शब्द में या एक पंक्ति में परिभाषित करना हो, किस तरह से परिभाषित करेंगे?
0: जटिल प्रश्न है। एक शब्द में तो ईश्वर के अलावा किसी को नहीं परिभाषित किया जा सकता, और साहित्य भी ईश्वर है। साहित्य भी ईश्वर की तरह ही है, जो एक मनोवृत्ति का निर्माण करता है, मनुष्य का मनुष्य होना निर्धारित करता है। तो इसलिए साहित्य के मार्फत अगर हम कहें कि एक शब्द में मनुष्य, तो वो है मनुष्य का मनुष्य होना ही सबसे बड़ी बुनियादी शर्त है शायद, कि वो एक अच्छा मनुष्य हो।
1: आपकी कोई प्रिय पंक्ति जो श्रोताओं को संदेश के रूप में देना चाहें?
0: कवि सम्मेलनी कवि नहीं हूँ कि जो कविताओं को रटे और तब जाके वहाँ बोले। मैंने हमेशा कविताएं लिखी हैं और 15-16 संग्रह मेरे हैं, तो उतने से भी अब याद रखने भी बड़ा मुश्किल है।
2: आज का दिन इस घाटी में मेरा दूसरा दिन है। आज का दिन इस घाटी में मेरा दूसरा दिन है, और एक एक कण की रणगाथा से भरी समुद्र सहित तैरती यह पृथ्वी, और एक एक कण की रणगाथा से भरी समुद्र सहित तैरती यह पृथ्वी, आती जाती रोशनी का तट है। आती जाती रोशनी यह पृथ्वी, आती जाती रोशनी का तट है। जमीन की भाषा में जमीन को पानी की भाषा में पानी को कुछ कहना कितना मुश्किल है, कुछ कहना कितना मुश्किल है। अपनी भाषा में अपने को कुछ भी कह सकूं और यहाँ रह भी सकूं कितना मुश्किल है। अपनी भाषा में अपने को कुछ कह भी सकूं और यहाँ रह भी सकूं कितना मुश्किल है।
1: आपने कहा आपके 15-16 रचना संसार हैं, साहित्यिक कृतियां हैं, कुछ उनके बारे में साझा करना चाहे हमारे श्रोताओं के साथ।
0: पहली चीज तो ये है कि देखिए, उसमें मुझे साहित्य अकादमी भी मिला, व्यास सम्मान मिला
1: जी,
0: और अकादमी का सर्वोच्च सम्मान मुझे मिला, माने साहित्य अकादमी का। तो कुछ रहा होगा तभी तो है, और वो मैं अपनी कमी मानता हूँ कि मुझे चीजें याद बहुत कम रहती हैं। अब मैं जल्दी भूल जाता हूँ। मैं

0: उम्र का भी नहीं हुआ हूँ, अभी 88 वर्ष का करीब चल रहा हूँ, तो 88 वर्ष में भी मेरी उम्र से ज्यादा नहीं है ऐसा लगता है मुझे कि ठीक ठाक है
1: जी,
0: आ जाता है, पर कभी कभी मैं भूल जाता हूँ।
1: आपने अपने जीवन के 88 वसंत देखे हैं, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं। इन 88 वसंत में एक लंबा समय आप जब चिंतक के रूप में रहे होंगे, आपके बहुत सारे साल, साहित्य में क्या परिवर्तन देखते चले आ रहे हैं?
0: एक तो रास्ते साहित्य में एक उच्चता नहीं आ रही है, गिरावट आ रही है, और ये गिरावट जो है सबसे ज्यादा पैदा की हास्य रस ने। अगर आप हास्य रस के हैं तो उसके लिए भीड़ भी जुट जाएगी, लेकिन अगर गंभीर साहित्य आपको सुनना है तो हास्य रस में नहीं है।
1: एक दौर था जब मेलों में कवि सम्मेलन हुआ
0: हाँ,
1: करते
0: हुआ
1: थे
0: करते
1: और बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, हजारों हजारों की
0: और
1: भीड़ उन्हें सुनने आया करती थी।
0: हजारों लोग और रात भर कवि सम्मेलन चला करते थे, तो हमने वो भी दिन देखे हैं और वो अच्छे दिन थे, हमारे लिए तो अच्छे दिन थे। अब थोड़ी सी एक गिरावट यह आ गई है, अब मनोरंजन के बहुत सारे संसाधन पैदा हो गए हैं, पहले नहीं था। पहले केवल यही था कि आप किसी दिन रामलीला चले जाएं, किसी दिन किसी नाटक को देखने चले जाएं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होता था जिंदगी में। लेकिन उसमें से आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या लेके आते हैं, ये भी बहस का विषय हो सकता है। ये लुप्त हो गई अब, ये परिभाषाएं अब काम नहीं करती हैं। अब सिर्फ ये है कि अगर वो सिनेमा में आ गया, अगर वो दूरदर्शन में आ गया, अगर वो रेडियो में आ गया, तो थोड़ा बहुत उसकी जान पहचान हो सकती है पाठकों से। और फिर अच्छी पत्रिकाओं का अभाव हो गया है, पहले कितनी पत्रिकाएं निकलती
1: जी,
0: थी,
1: कादम्बिनी
0: धर्मयुग,
1: जी,
0: हिंदुस्तान, और तो और आपका जो दैनिक अखबार होता है उसका संडे जो होता था
1: जी
0: वो तो संभालने लायक होता था, उसको लोग फाड़ते नहीं थे, उसको बाकी अखबार समाचारों में फाड़ देते थे, उसको बचाए रखते थे। तो ये बड़ी भारी परिवर्तन आया है, ये साहित्य में आया है या मनुष्य में आया है, ये भी बहस का विषय हो सकता है।
1: जी
0: मनुष्य की प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन आया।
1: जो आप कह रहे हैं कि मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें परिवर्तन आया है और साहित्य से थोड़ा दूर होता जा रहा है, क्यों?
0: उसकी वजह शायद ये भी है कि मनोरंजन के एकमात्र साधन था पहले साहित्य, नौटंकी
1: एक
0: वगैरह,
1: दौर था लोग एक नोवेल पढ़ना शुरू करते थे, पूरी रात नोवेल
0: रात,
1: पढ़ते तो खत्म कर देते थे।
0: और इतना लस्ट फॉर लर्निंग थी ना, पढ़ने की इच्छा से लालायित लबालब भरा हुआ होता था आदमी कि मुझे पढ़ना है। लेकिन अब ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ये देखिए आप अंग्रेजी में देखिए, विदेश में एक एक उपन्यास, एक एक कविता संग्रह के संस्करण के बारे में न्यूज आती है कि इतने संस्करण बन गए उसके। भारतवर्ष में क्या है, शून्य है, कुछ नहीं। तो ये थोड़ी मानसिक प्रवृत्तियों की गिरावट आई है
1: कहीं
0: लोगों में।
1: ये वजह आप, हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है इसमें संस्कारों में कोई डिवेल्यूएशन, कुछ
0: संस्कार
1: कमी?
0: संस्कार पर तो या तो माँ बाप के संस्कार बदल गए हैं, सबसे बड़ी चीज तो है संस्कारों की उत्पत्ति तो माँ बाप और परिवार से होती है, परिवार में वो वातावरण ही नहीं। परिवार में कौन आदमी है जो पूरा अखबार पढ़ता है या अखबार पर, आज का अखबार पर जो विश्लेषण कर सके,
1: जी,
0: तो बहुत सारी चीजों में कमी आ गई है।
1: आपकी सेवा के बारे में जानना चाहेंगे। आप अभी चर्चा में कह रहे थे आप इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस में भी आपके साथ के कुछ लोग रहे हैं।
0: मैं इन्फॉर्मेशन सर्विस में भी रहा, टीचर भी रहा मैं, और बहुत सारे अन्य नौकरियां भी की और छोड़ी। लेकिन सवाल यह है, इन सब से मैं प्रशिक्षित हूँ, इनसे कोई बुराई नहीं है।
1: किस तरह का प्रशिक्षण आपको मिला है?
0: प्रशिक्षण इस तरह का, जैसे आर्मी में रहा मैं, सोल्जर रहा,
1: जी
0: तो एक डिसिप्लिन मेरी लाइफ में आया कि कैसे मनुष्य को डिसिप्लिन बनाता है आर्मी का प्रशिक्षण।
1: जी
0: पहले मैं सोचता था कि बहुत घटिया है, लेकिन जब मैं खुद उसमें गया तो मुझे लगा कि नहीं भाई, तो बहुत अच्छा है, बहुत अनिवार्य, और ये तो हर एक मनुष्य को करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, बैठने का तरीका, खड़े
0: बैठ
1: होने का
0: खड़े होने
1: तरीका,
0: का
1: कपड़े
0: तरीका,
1: पहनने का तरीका।
0: काम करने का तरीका, और उसके अलावा अनावश्यक चीजों को कैसे छांटा जाए और आवश्यक चीजों को कैसे रखा जाए।
1: श्रोता, हम बातचीत कर रहे हैं पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी से। जगूड़ी साहब, हमारे कार्यक्रम की एक परंपरा है, जिन मेहमान को हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं उन्हें उनकी पसंद का एक गीत भी सुनवाते हैं। कौन सा गीत आप सुनेंगे?
0: संकट में डाल दिया आपने उनको। मुझे याद आ रहा है इस समय फिल्मी गीत याद आ रहा है, फिल्मी गीत में गायक प्रदीप, उनका कोई गीत सुना दीजिए, अच्छे गीत है उनके, बहुत
1: जी
0: अच्छे।

0: आज का जो युवा कवि है, साहित्य सृजन कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? युवा साहित्यकार है,
1: युवा साहित्यकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने लिखे हुए के अलावा कितना पढ़ता है, वो अपने को दूसरों के लिखे हुए से कितना जानता है। अगर आप दूसरों को पढ़ते नहीं हैं, उनको गुनते नहीं हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? आप में परिवर्तन तब आएगा जब आप दूसरों को जानेंगे। तो दूसरों को जानने की क्षमता मुझे तो नहीं लगता कि आज के बच्चों में है, पढ़ने लिखने वाले लड़कों में भी।
0: वजह क्या देखते हैं इसके पीछे?
1: सबसे बड़ी चीज ये है कि मनोरंजन के बहुत सारे साधन आ गए हैं।
0: ज्ञान के प्रति तो ललक हमेशा आने वाली पीढ़ी में या नई पीढ़ी में रही है,
1: वही होनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि नहीं है। मैं तो खुद अपने परिवार में ही देखता हूँ, किसी को साहित्यकार होना पसंद नहीं है, है ना, या साहित्य के बारे में बातचीत करना पसंद नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि गिरावट बहुत सारी जगह पर आई है, तो ठीक है, शायद इसके बाद एक नया फेज आएगा कि बहुत सारी चीजें बहुत सुंदर ढंग से आ जाएंगी। पहले हारमोनियम के अलावा क्या था हमारे जीवन में? संगीत के नाम पर तब तानपुरा भी आ गया। तानपुरा आया तो फिर तानपुरे में हारमोनियम जैसे स्वर नहीं है
0: जी,
1: इसलिए तानपुरे के शास्त्रीय संगीत में तो तानपुरे की इज्जत बनी रही
0: जी,
1: लेकिन जीवन से तानपुरा गायब हो गया।
0: आपने कहा आप 88 साल के हो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगते आप दिखने में, आप अपनी उम्र से काफी युवा दिखते हैं, लेकिन इस उम्र में भी क्या आप साहित्य सृजन कर रहे हैं?
1: हाँ, सृजन भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। देखो, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने से मनुष्य परिवर्तनशीलता को जानता है। अगर वो पढ़ता नहीं है तो फिर गढ़ता क्या है?
0: गढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है,
1: पढ़ना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: उससे पता लगता है कि परिवर्तन कहाँ कहाँ आ रहा है
0: जी,
1: इस व्यक्ति में कैसा परिवर्तन आ रहा है, मुझ में क्यों नहीं आ रहा है, तो एक प्रतिस्पर्धा जागती है। इस
0: आने वाले समय में जो हमारे पाठक हैं, उन्हें आपका क्या पढ़ने को मिलेगा?
1: मेरी तो उनको बहुत सारी चीजें मैंने संग्रहित की है इधर, जो किताब में नहीं आई है। एक तो वो मिलेगा पढ़ने को, दूसरा ये है उसमें कविताएं भी है, उसमें लेख ज्यादा है, और उसमें मैं पाठकों को ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज, चाहे वो जासूसी उपन्यास हो, पढ़ना चाहिए और लॉजिकली पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उसकी आलोचना करनी चाहिए अपने मित्रों के साथ, अगर आपके पाठक मित्र भी लेखक होने की ओर हो या थोड़ा बहुत रुचि रखते हो, तो उनको बताइए कि आपने क्या पढ़ा, उसका सारांश बताइए, उसकी खूबी बताइए, उसकी खराबी बताइए। तो खूबी और खराबी की जब आप दूसरे की व्याख्या करेंगे तो आप खुद की भी करेंगे एक दिन कि ये तो अच्छा नहीं है।
0: आकाशवाणी और साहित्यकारों के संबंध को किस प्रकार देखते हैं?
1: भाई देखो, आकाशवाणी के मैं तो इसलिए मुरीद हूँ और कृतज्ञ हूँ कि आकाशवाणी ने हमें शुद्ध बोलना सिखाया, हिंदी का प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए और कैसे शब्दों की व्युत्पत्ति को पहचानना चाहिए, ये आकाशवाणी ने हमको सिखाया। तो आकाशवाणी का तो बहुत सारा रोल हमारे जीवन में रहा है। हिंदी भाषा माध्यम से नहीं पनपती, हिंदी भाषा लेखकों के विचार से पनपती है, तो लेखकों के विचारों में जो माध्यम परिवर्तन न पैदा करे वो माध्यम बेकार है या उतना बलशाली माध्यम नहीं है। आकाशवाणी एक बलशाली माध्यम के रूप में हमारे समाज में आया और उसने हमको, हमारे उच्चारण को, हमारे बौद्धिक उच्चारण को, हमारे शब्द और शब्द की व्युत्पत्ति और उसके अर्थ संरचना, इन सब से आकाशवाणी ने हमको परिचित कराया। तो आकाशवाणी का बहुत सारा भूमिका है साहित्यकारों के लिए।

0: ले ज्यादा
1: दिया।
0: एक अच्छा मंच भी दिया और अच्छे श्रोता पाठक इकट्ठे किए, उनको एक नया संदेश भी दिया, नए श्रोता भी पैदा किए, नए लेखक भी पैदा किए, नए विवेकवान लोग पैदा किए हैं आकाशवाणी ने। आकाशवाणी में एक समय था कि लोग ये समझते थे कि आकाशवाणी जो ईश्वर की वाणी है उसके लिए शब्द है संस्कृत में आकाशवाणी, और ये कहा भी जाता है और माना भी जाता है कि ये शब्द शायद सुमित्रानंद पंत ने दिया था। आकाशवाणी नया शब्द नहीं था, पौराणिक कथाओं में आकाशवाणी है, हर कथा में आकाशवाणी होती है, तो बहुत सारी चीजें आकाशवाणी पर निर्भर करती थी उस जमाने में। तो उसको जिसने भी जोड़ा तो उन्होंने आकाशवाणी को रिलेवेंट बना दिया, तात्कालिक महत्व का बना दिया, तो आकाशवाणी आज भी हमारे लिए तात्कालिक महत्व का की विधा है।
1: कार्यक्रम के समापन में हमारे श्रोताओं के लिए या पाठकों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
0: भाई सबसे पहला संदेश तो मेरा यह है आपके पाठकों के लिए और अपने श्रोताओं के लिए, परिवर्तनशीलता का स्वागत करो और परिवर्तनशीलता को पहचानो, और परिवर्तन ही है जो मनुष्य को बदलता है, और परिवर्तन नहीं होगा तो समावर्तन भी नहीं होगा।
1: बहुत खूब,
0: इसलिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है, और परिवर्तन से इस पूरी दुनिया को आज हम नए रूप में देख रहे हैं, पहले जिस रूप में हमने इस दुनिया को देखा है आज इस रूप में, आज के रूप में हमने पहले कभी नहीं देखा, तो इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है और परिवर्तन ही मनुष्य की आकांक्षा है, परिवर्तन होना चाहिए।
1: पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को अपने जीवन की तमाम यादें, तमाम अनुभव साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुभव के अंतर्गत पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी से रमेश चंद्रा की बातचीत। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।
5: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।
6: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप अखिलेश चंद्र गैरोला से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर, उनके आगमन को लेकर शासन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर। जिला प्रभारी मंत्री राम सिंह कैड़ा आज बागेश्वर जनपद के भ्रमण पर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर करेंगे प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 70वीं बैठक, हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के लिए प्रस्तावित एकीकृत स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट तथा जन स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के लिए लगभग 115 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत। लगभग दिन में 10 लाख के पार पहुंचा बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछले वर्षों के रिकॉर्ड टूटे। प्रसिद्ध कैंची धाम क्षेत्र में यातायात जाम से मिलेगी राहत। शिप्रा नदी पर बाईपास के साथ निर्मित बैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हुआ। नैनीताल जिले में श्री कैंची धाम स्थापना दिवस मेला के मद्देनजर 13 से 16 जून तक के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने चौथान को दी बड़ी सौगात। 250 लाख रुपए की लागत से मैखुली देवराड़ी गणतखाल मोटर मार्ग का होगा सुधार। चमोली जिले में देर रात हुई बारिश के चलते कई मार्ग बाधित। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी भानेर पानी के पास मलबा आने से रास्ता बंद। प्रशासन की तत्परता से मलबा हटाकर यातायात के लिए मार्ग सुचारू किया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 14 जून को होने वाली स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान का सख्त रुख। परीक्षा के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से जुड़े लक्ष्य रायचंदानी को भारतीय पुरुष अंडर-19 टीम के उपकप्तान की मिली जिम्मेदारी, जबकि प्रियांशु को मल्टी डे 4 दिवसीय टीम में चयन हुआ। बागेश्वर जिले में देर रात हुई आकाशीय बिजली के साथ मूसलाधार बारिश के कारण सरयू गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। पंचकेदार में से एक कल्पेश्वर महादेव में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उर्गम घाटी में स्थित कल्पेश्वर मंदिर में होती है शिव की जटाओं की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए बारिश का पूर्वानुमान किया जारी। देहरादून समेत टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश, ओलावृष्टि के साथ तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
2: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे चेतन। समय एक बहती नदी की तरह है, क्योंकि जिस तरह के सेतु के नीचे से गुजर पानी कभी वापस नहीं आता, उसी तरह बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता। तो इसीलिए जिंदगी के हर पल को खुल के जिए। हम जिंदगी भी पानी की तरह जीना चाहिए। जिंदगी एक नदी है, चाहत इसकी जलधारा है, खुशी और गम के बीच बीच हो रहा गुजारा है। नदी में जल न हो तो उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। जीवन में अगर प्रेम न हो तो मानव जीते जी मर जाता है। वह अपना रास्ता खुद बनाती है, पर्वतों पत्थरों के सीने को चीर कर हर किसी के दिल में अपना घर बनाओ मन की तृष्णा को मारकर। सबके वह प्यास बुझाती जो उसके तट पर जाता है। जात पात धर्म भूलकर उसमें सब नहाते धोते हैं। नदी में तब तक जीवन है जब तक उसमें रफ्तार है। मानव तब तक मानव है जब तक उसके हृदय में प्यार है। जो भी सामने आता है वो उसे बह ले जाती है। सबको लेकर साथ चलो, हमें यही समझाती है।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@amc1@gmail.com। आई रिपीट feedback@amc1@gmail.com।
1: जीवन, जिंदगी क्या है? कुछ निश्चित समय के लिए मिली जीवन जो पता नहीं कब खत्म हो जाए। ये कह सकते हैं कि जिंदगी पानी के एक बुलबुले के समान है जो कभी भी खत्म हो सकती है, तो क्यों ना इस अनमोल जीवन का एक एक पल जिया जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कितने पल हैं, ये सोचकर चलना चाहिए कि एक पल में कितना जीवन है। जो पल बीत गया वो चले गया, फिर हाथ नहीं आने वाला है। अब जरा सोचे, जो पल बीत चुका है, जो हमने मजबूरी में काटे थे, उन्हें जिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें याद करके ही घबरा जाए? यदि ऐसा हो तो हम अपने जीवन को जीवन नहीं कह सकते हैं। कर दिया बर्बाद यू वरक किताबे जिंदगी, कुछ हमी ने फाड़ डाला, कुछ हवा में उड़ गए। इस तरह अपनी जिंदगी को बराबर न करें। यह अनमोल है, इसे जितना भी हो सके खुशियों से भर दे। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हो और मुस्कुराते हो, इसी को जीना कहते हैं। तभी जिंदगी सार्थक हो सकती है। अगर जिंदगी में खुशी है तभी आप सही मायने में जी रहे हो, और खुशी तो आप छोटे से छोटे बात भी ढूंढ सकते हैं। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ऐसे कितना और कैसे प्राप्त करते हैं। याद रहे, दूसरों को खुशी देने से ही हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। प्रयास करें कि हम अपने परिवार वाले और अपने परिजनों या परिचित लोगों को, जिन जिन के संपर्क में हम आते हैं, सभी को दिल से चाहे, किसी से भी नफरत न करें। इससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है और उसके साथ ही हमारा मन भी दुखी होता है और दिल में दरिया बढ़ती है। जिससे भी मिले मुस्कुराकर मिले, क्या पता फिर मिले या ना मिले। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। इस आखिरी मुलाकात की याद कैसी हो, कड़वाहट भरी या प्यार भरी, ये सब हम स्वयं ही सोच सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी सिर्फ एक बार के लिए मिले हैं? इस संसार से जाने के बाद कोई किसी से दोबारा मिलने वाला नहीं। बिछड़ जाएंगे सदा सदा के लिए, कभी दोबारा न मिलने के लिए। फिर चाहे हम लाख कोशिश कर ले, एक पल के लिए भी उन्हें नहीं मिल सकता। रह जाती है तो सिर्फ यादें और पछतावा सदा सदा के लिए। वो मेरे बाद रोने हैं, कोई उनसे पूछे कि पहले किस लिए नाराज थे, अब मेहरबान क्यों हैं? भाव यही है कि पहले तो हम किसी इंसान में कोई अच्छाई नजर नहीं आती थी, और उसके मर जाने के बाद कोई कमी नजर नहीं आती। उसके दोष भी गुणों में तब्दील हो जाती है और वह कम महसूस होती है, जो फिर कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो क्यों ना हम समय रहते ही संभल जाए और अपने जीवन का पूरा आनंद लें। इसे दुखों की भट्टी में न झोंके। ऐसे ही एक व्यक्ति का उदाहरण है जो अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहता था।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@amc1@gmail.com। आई रिपीट feedback@amc1@gmail.com।
1: काम के बोझ के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। परिणाम स्वरूप वह तनाव में रहने लगा। घर वाले से भी प्यार के साथ बात न कर पाता। घर में झगड़ने लगा और घर का वातावरण तनावपूर्ण रहने लगा। एक दिन उसने सपने में देखा कि वह घर से अपने कार्यालय के लिए जा रहा था तो अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाया, जिसके कारण दुर्घटना हो गई और उसने वही दम तोड़ दिया। उसका शव उसके घर पहुंच गया। घर वाले पर तो जैसे अचानक पहाड़ टूट पड़ा। उसका अचानक बिछड़ जाना सहन नहीं कर पा रहा था। उधर उस व्यक्ति की आत्मा यह सब देख रही थी। उससे उनका रोना सहना नहीं हो रहा था। वो उन्हें छूने की कोशिश करता पर छू नहीं सकता। वो सोचता कि जब उसके पास सारा परिवार था तो उसके पास समय नहीं था और उसे उनकी अहमियत नहीं पता थी। अब वह इन सब को बताना चाहता है कि उनसे कितना प्यार करता था, परंतु बता नहीं सकता। वह सोचता है कि अगर मुझे एक पल भी मिल जाए तो मैं इन्हें बताऊं कि ये मेरे लिए क्या है, परंतु अफसोस, अब क्या हो सकता है ये सोचकर उस व्यक्ति की आत्मा को बहुत दुख होता है। उधर उसकी पत्नी और बच्चे उसकी जुदाई सहन नहीं कर पा रहे हैं। वह उसे बहुत प्यार करते थे परंतु वह कभी जाहिर नहीं कर पाए। अब उनके मन में यही अफसोस था कि काश हमने इन्हें खुश रखा होता। जो समय इनके साथ गुजरा वो खुशी से गुजरा होता। अब पत्नी व बच्चे यूं ही सोच रहे थे कि काश हमें कुछ लम्हे और मिल जाए, क्योंकि वो दुनिया में इतने उलझे

हुए थे कि कभी एक दूसरे के मन में झांकने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब चाहने से क्या हो सकता है। अब उन्हें जिंदगी के एक-एक पल की कीमत पता चल चुकी थी। इतने में उस व्यक्ति की आंख खुल गई और वह अपने चारों ओर देखता है। वह अपने घर में है, उसका परिवार उसके पास है, उसकी जान में जान आई। उसने अपने परिवारजनों को बहुत प्यार किया और पूरा जीवन प्यार से रहने का वादा किया, क्योंकि अब उसे जिंदगी की कीमत पता चल गई। क्योंकि जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं, ये अमूल्य है। इस दुनिया के जंजाल में इतना मत फंस जाओ कि जीना ही भूल जाए और केवल जीने की रस्म ही अदा करते रहे। तो दोस्तों, विद दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का ये पहला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म बंटी और बबली से। आवाज है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की। गीत को बोल दिए हैं गुलजार ने और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अदनान सामी और तुलसी कुमार की आवाज में फिल्म डार्लिंग से ये गीत। गीतकार समीर और संगीतकार प्रीतम।

0: सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म डर्टी पिक्चर से ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे रजत अरोड़ा और संगीतकार थे विशाल शेखर। इसी गीत के साथ श्रोताओं, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह है आकाशवाणी देहरादून। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप अखिलेश चंद्र गैरोला से सुनिए प्रादेशिक समाचार। नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंचीधाम क्षेत्र में वर्षों से पर्यटन सत्र और धार्मिक आयोजनों के दौरान लगने वाले यातायात जाम से राहत मिलने की उम्मीद बन गई है। रातीघाट के पास शिप्रा नदी पर बाईपास के साथ निर्मित बैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ बाईपास मार्ग के यातायात के लिए खोलने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। दूसरी ओर 15 जून को बाबा नीब करौरी महाराज के स्थापना दिवस मेले के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक यातायात और सुरक्षा योजना लागू की है, जिससे हजारों श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। वहीं पुलिस ने श्रद्धालुओं से निर्धारित पार्किंग और शटल सेवा का उपयोग करने और जारी यातायात परामर्श का पालन करने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री व श्रीनगर विधायक डॉ धन सिंह रावत ने 3 दिवसीय थलीसैंण भ्रमण के अंतिम दिन चौथान को बड़ी सौगात दी। उन्होंने थलीसैंण क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 250 लाख रुपए की लागत से निर्मित 3 किलोमीटर लंबे मैखुली देवराड़ी गणतखाल मोटरमार्ग के सुधार और डामरीकरण कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी, साथ ही क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही मंत्री द्वारा देवरानी देवी बुंगीधार में 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खेल मैदान का शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का कहा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 14 जून को होने वाली स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। परीक्षा के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिलाधिकारी द्वारा बैठक की गई, जिसमें सभी जोनल और सेक्टर मैजिस्ट्रेट को परीक्षा केंद्रों का पूर्व निरीक्षण करने, केंद्र व्यवस्थापकों के साथ समन्वय बनाए रखने और जैमर, सीसीटीवी कैमरे, फेस ऑथेंटिकेशन ऐप सहित सभी व्यवस्थाओं की गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आज सैन्य सम्मान के साथ अग्निवीर रोहित रावत को अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट पर किया गया। घनसाली क्षेत्र के मेंडू सिंधवाल गांव निवासी 21 वर्षीय अग्निवीर जवान रोहित रावत 10 जून को जम्मू में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। 20 गढ़वाल राइफल्स में तैनात रोहित रावत 1 साल पहले ही भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। कल शाम ही रोहित का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है। आसपास के गांव के लोग भी मेंडू सिंधवाल गांव पहुंचे और शहीद रोहित को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से जुड़े लक्ष्य रायचंदानी को भारतीय पुरुष अंडर 19 टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि प्रियांशु का मल्टी डे 4 दिवसीय टीम में चयन हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने श्रीलंका दौरे के लिए दोनों प्रारूपों की टीमों की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम 3 वनडे और 2 4-दिवसीय मैच खेलेगी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने इस उपलब्धि को उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण करार दिया है। वहीं BCCI सदस्य और CAU के पूर्व सचिव माहिम वर्मा ने कहा कि लक्ष्य रायचंदानी का उपकप्तान बनना पूरे उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। बागेश्वर जिले में सुबह हुई आकाशीय बिजली की चमक और गरज के साथ तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। लगातार हुई बारिश के चलते सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों की निगाहें जलस्तर पर टिकी हुई हैं। इधर प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नदियों में सिल्ट की मात्रा बढ़ने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। कई क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है और साथ ही लोगों से अनावश्यक रूप से नदी नालों के समीप न जाने की अपील की गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्सों में आज भी मौसम बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश, ओलावृष्टि के अलावा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी बिजली चमकने और तेज दौर की बारिश के साथ तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि प्रदेश के 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का भी अनुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: FM 100.5 MHz पर यह है आकाशवाणी देहरादून। सुबह के 10:35 हुए हैं। अब प्रसारित कर रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम, और कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में जौनसारी लोकगीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
4: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं लोक संगीत, और कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनवा रहे हैं आपको विविध कलाकारों के स्वर में जौनसारी लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में जौनसारी लोकगीत। आप बने हुए हैं आकाशवाणी देहरादून के साथ FM 100.5 MHz पर।

0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से इस समय आप सुन रहे थे लोक संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के स्वर में जौनसारी लोकगीत।
1: अब हमारे श्रोता जहां हम भी वहां, आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। जी हाँ श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में ठीक 11 बजे हैं और ये वक्त निर्धारित है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश के लिए। आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूँ सीमा सक्सेना। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आपकी पसंद के इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म रात और दिन से। सुनना चाहा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छावड़ा ने। साथ ही हमारे श्रोता हैं के शरद पांचपोर, श्रीमती शोभा, बेबी वैदेही, विहान बाबू, रश्मि, अक्षय और अभिनव पांचपोर, मंचला रेडियो लिसनर्स क्लब अकोला से। और अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं आप श्रोता हैं, ये श्रोता लिख रहे हैं हमें मैसेज, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, सीता राम कांगड़ा, एकता कॉलोनी रोहतक से। मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। हैदराबाद से बी एन रेड्डी नगर के हमारे श्रोता हैं मोनिका बालू और विनय कुमार। श्रोताओं आइए आपको पहले सुनवाते हैं ये गीत, उसके बाद और श्रोताओं के नाम हम शामिल करेंगे।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म रात और दिन का ये गाना। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म पत्थर के सनम से। सुनना चाहा है तेली पारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा आयुष विवेक, बेबी आयुषी श्रीवास ने। और ये हमें अगला मैसेज लिख रहे हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी और मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल और खलीफों की बावड़ी के श्रोता हैं हमारे खुदा बख्श खलीफा। और अगला मैसेज लिखने वाले श्रोता हैं भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद से गोपाल राई, उमा माहेश्वरी। और ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश, बडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, लवली पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। पुटपाक तेलंगाना के श्रोता हैं भवानी वेंकटेश, मास्टर मिथुन और महादेव। बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर हैं नया पारा भिरई से। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी के हमारे श्रोता हैं महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश प्रतीश और पूरा संघई परिवार। कड़ताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानुगुला गोपाल, माहेश्वरी प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोता हैं। संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़ और कमल साहनी पिंगावाला चौक गौराया जालंधर से लिख रहे हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, शायना और निवान शर्मा। ये हमारे श्रोता हैं मनोज वर्मा नजीबाबाद यूपी से, हरवेश कश्यप, अरिजीत, दिव्यांश कश्यप हैं छबीलपुर गुन्नौर यूपी से, सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे कुमार, संचित वायाल कुमार, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना देशमुख। ये श्रोता हैं कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से। और साथ ही मैसेज कर रहे हैं हमारे श्रोता हैं गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरुदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द। राजौनी जिला बुंदेलखंड महोबा बुंदेलखंड यूपी के श्रोता हैं उदयभान, जयपाल, दीक्षापाल, प्रतीक्षा, बिमलेश, दिव्यांश बघेल और पूरा परिवार। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर के हमारे श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से बिपिन, स्वाति जायसवाल, देव कुमार, आर्य कुमार जायसवाल। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष कोयल, सिक्का कोयल और डुग्गू भाविक सिक्का। रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, देवाश्री और मेघा राशि ये श्रोता हैं किशनगंज बिहार से। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म पत्थर के सनम से।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है और आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं हमारे श्रोताओं की। आप हैं खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना आशीष राजा, चैतन्य मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना। ग्राम दुल्हापुर मुरादाबाद यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। साथ ही मैसेज कर रहे हैं कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, मजनू कटीला से और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफजल और नफीसा परवीन। धाणी नादुरा महाराष्ट्र से हैं श्री कृष्ण बांठे, संदीप और अमूल्य बांठे। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा। मनोहर लाल गांधी विजय नगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से आप हैं मैसेज कर रहे हैं। बांसुरी नगरी चौक बाजार पीलीभीत से हैं डॉक्टर देवेंद्र कन्हैया, सोना प्रथम कन्हैया और स्वर्णिम कन्हैया। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, बसंतराव भोजने, पी एस नहावकर और तुषार करांगले। अगला मैसेज लिख रहे हैं जिला मुजफ्फरनगर तहसील खतौली से ग्राम रायपुर नांगली से धीरज सैनी।

नवाजी शेख दानिश, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। गांव खरिया ढाणी सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह विजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश पूजा और आरजू नव्या विजारनिया। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशी। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक, समर और वैदिका फूलमाली। वाइल्डफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। कलनौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक शर्मा। मोतला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम सुरलकर। करीमनगर से हैं लक्ष्मी नारायणा, विजया, अभिनय और साई किरण। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म आराधना से।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: FM 107.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून और कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों का व्हाट्सएप फरमाइश। अगली फरमाइश ले रहे हैं हमारे श्रोताओं की, आप हैं दादरी गेट भिवाणी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। साथी हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीकेपुरी, कैलाश, नीलमपुरी, रामा, पालीपुरी, सुनील पाठक और इनके साथी। आप हैं हमारे श्रोता, मैसेज लिख रहे हैं उत्तराखंड से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश। ग्राम ककराली पंचकुला से हैं वेद प्रकाश, प्रजापति, लक्ष्य, अंजल, नेहा, अंजलि, गुरमीत कौर, प्रजापति और इनके साथी। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशा छीपा और पूजा परिहार। कच्छ गुजरात से गंगावणकर, गोविंद, जूली, गीता, महिमा, विशाल, विजय, विराट, रमेश, महेश, जयंती और इनके परिवार के सदस्य। आप हमारे श्रोता हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फाहिरा और ताहिरा। साथ ही ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार। शास्त्री नगर के हमारे श्रोता हैं किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल। सनावत से शेख मूसा मोहसिन और अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल हैं गांव जखणगांव अहमदनगर से। आकोट से विनायक वेंडे, श्रीमती मंगला, विजय, शुभम, पवन जरिए, के संजीव राव डाबे राव। बुल्ढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार। बन्नी बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। आनंदगांव जालना महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं परमेश्वर शिंदे, कावेरी, प्रहलाद, स्वाति, वैष्णवी और पूरा शिंदे परिवार। आइए श्रोताओं आपको सुनवाते हैं नाम फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म झुक गया आसमान से। सुनना चाहा है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल ने। साथ ही मैसेज कर रहे हैं जमशेदपुर रखाल पत्थक कदमा गांव के हमारे श्रोता हैं कुमारी प्राची ठाकुर, देविका और बसंत कुमार। अगला मैसेज लिख रहे हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब के हमारे श्रोता हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल शर्मा। ये श्रोता लिख रहे हैं बरहापुर बिजनौर यूपी से ताहिर और नगीना से रहीस राही। अगला मैसेज हमें लिखा है शाही मार्केट सिहारा से, ये श्रोता हैं बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। ये अगला मैसेज लिखने वाले श्रोता हैं, नाम शामिल हो चुका है, आप लिख रहे हैं पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मारावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मारावी। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन के श्रोता हैं जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी जे एस नायक, शोभा नायक और पूरा डांगला परिवार। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री। कस्बा मुजफ्फराबाद सहारनपुर से हैं अंश सैनी, वंश, खुशी, माया देवी, अमरीश, सिमरन, अंकित सैनी। गुलाम रोड हर गोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरेंदर संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा संधू और मैक्स। मोहम्मद रफीक पवार, मोइन छोटू पवार हैं लक्कड़ बाजार खंडवा से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना और गुड्डी भगत। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म झुक गया आसमान से।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है. घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स. आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और आलोचना के लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं. पत्र लिखने के लिए हमारा कार्यक्रम है कार्यक्रम आपका पत्र मिला. आप इस कार्यक्रम में हमें पत्र लिख सकते हैं, लेकिन आपको आपका पत्र मिला ये लिखना आवश्यक है. इसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, देहरादून. व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें पत्र लिख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं. इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731, 7088000731. आप इस नंबर पर अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी देहरादून और कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश. अगली फरमाइश हमें भेजी है बेरडी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री ढोमने, वैष्णवी चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बा शेर. साथ ही हमें मैसेज लिख रहे हैं आप श्रोता हैं रामपुर से सुनील सक्सेना, वेदांश और सारांश सक्सेना. चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से सुनील चावला, मीना, साक्षी चावला, चोपड़ा दिनेश, चोपड़ा तनु, नानू राधिका रानी, अंशुल गुप्ता, स्मिता गुप्ता, दीक्षा, कृतिका, कविता और RS आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया, तनिषा सीमा द्वार से हैं सभी चावला परिवार के सदस्य. जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ हैं हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश के. आप मैसेज कर रहे हैं श्रोता एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हौदा गुमला झारखंड से. उमेड़ा निजामाबाद तेलंगाना के श्रोता हैं मोहम्मद जैनुद्दीन, आबिदा, आयशा और स्नेहा भानु जैनुद्दीन. झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया. खरगोन सनावद मध्य प्रदेश के मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार वोडाना और आदलपुरा गगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा. विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर

सुधा वज्रसेन, और ये हमें मैसेज मिला है हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और यदव कड़वासरा का। ये मैसेज हमें लिख रहे हैं श्रोता हैं, वार्ड नंबर 1 पोफाली, जिला यवतमाल से जयराम सिंघणकर, दिशांत और अर्पिता। सहारनपुर से आशा सोनाली और सुरेश नारंग। मुंदीचक भागलपुर से दीपक कुमार सोनी। और अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी, निम्मी, पम्मी, सिया, हरबिता और निशांत ध्रुव। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर

0: बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं। हमारे श्रोता हैं करूला मुरादाबाद के अयूब खान, इरम गुड़िया शोएब खान और सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। साथ ही मैसेज हमें लिख रहे हैं ये श्रोता हैं संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव बघेरा दुर्ग से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक जयपाल, विनोद पुरी हैं अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से। पुराना तालाब डुमराव के हमारे श्रोता हैं वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज, सबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातिमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा। हमें ये मैसेज मिला है, आप श्रोता लिख रहे हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, फरुखाबाद यूपी से। और ये हमारे श्रोता हैं अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं, इनके साथ हैं सुबोध और सलोनी चौरसिया, योगेंद्र नायक कासगंजी, नवाबगंज कानपुर से सुजाता, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया आगरा से हैं, सरिता, सुमित चौरसिया और अबीर चौरसिया। साथ ही मैसेज लिखने वाले श्रोता हैं अररिया बिहार से शगुफ्ता परवीन, फौजिया, नाजिया और नफीसा परवीन, आबाद अहमद, मोहम्मद आसिफ, शमा आजमी, मोहम्मद राशिद, यसरा हयात मोहल्ला सहारनपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं। और आप श्रोता लिख रहे हैं कोरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से, पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज सुष्मिता और दीपिका। अगला मैसेज मिला है हमारे श्रोताओं का, ये है सुभाष योगी, सुशील डब्बू बब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी, कृष्णा कॉलोनी हांसी से। जलालाबाद शामली यूपी से हैं राशिद मंसूरी, अयान और जीशान मंसूरी। विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश के श्रोता हैं। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल और चेतन, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी। ये मैसेज हमें मिला है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत और हरिपाल कौर का। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म हवस से।

अभी आप सुन रहे थे हवस फिल्म का ये गीत। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, हरियाली और रास्ता फिल्म से। हमें मैसेज लिख रहे हैं हमारे श्रोता हैं रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। ये हैं गांव खरकड़ा चौबासी से गोलू कांगड़ा, सागर सीताराम, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा। तेलंगाना छोटूपल से कस्तूरी रामेंदु, भूमा देवी, पृथ्वी और नारायणा। अगला मैसेज लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, मुंगीसापुर के हमारे श्रोता हैं। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। आप हैं हमारे श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब लड्डू, रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना के हमारे श्रोता हैं अजीज़ भाई, मतीन भाई, शेख चांद फारूक और सईद खलील, मुबीन भाई, एमडी यासीन, मूसा करीम, शेख सलीम। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सतारा महाराष्ट्र से प्रगति सिंह, मनदीप, मनोज सिंह, दीपिका सिंह और इनके परिवार के सदस्य। श्रोताओं आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का व्हाट्सएप फरमाइश का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की सीमा सक्सेना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय दोपहर के 12 बजने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: आज सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है

0: का उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: निर्देशों के अनुरूप सरकारी भूमि और सार्वजनिक मार्गों को कराया जा रहा अतिक्रमण मुक्त। एक ही दिन में श्रीनगर और कोटद्वार में 77 अवैध कब्जे हटाए गए। विशेष आधार शिविर बना, पहचान और अधिकारों का सेतु। पहली बार आधार पाने वाले दिव्यांगजनों सहित 65 लोगों को मिला लाभ। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं कुलबीर चन्नी के गाए हुए शब्द। तबले पर संगत दे रहे हैं सैकत मंडल, बांसुरी पर महेश चंद, गिटार पर अरुणाप चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर हैं मनीष कुमार शाह।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत कुलवीर चन्नी के शब्द। तबले पर संगत थी सैकत मंडल की, बांसुरी पर महेश चंद, गिटार पर अरुणाब चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर थे मनीष कुमार शाह। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। अब हमारी बहनों के लिए प्रस्तुत है उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम महिला जगत में। आज आपके साथ है आपकी सखी सुनीता भट्ट। उम्मीद है आप सब अपने परिवार के साथ खुश और स्वस्थ होंगे। नन्हे हाथों में कलम हो, किताबों का साथ हो, हर बच्चे के चेहरे पर खुशियों की बरसात हो, मजबूरी का बोझ ना हो, सपनों को उड़ान मिले, हर बच्चे को शिक्षा और सम्मान मिले। बहनों, आज 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य यह है कि लोगों को बाल श्रम की समस्या के प्रति जागरूक करना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनके सपनों, शिक्षा और खुशियों में ही देश का उज्जवल भविष्य छिपा होता है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। बचपन में बच्चों को खेलना, पढ़ना, नई नई बातें सीखनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन बहनों, मजबूरी यह है कि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, बल्कि काम करते हैं उनके बच्चे। बाल श्रम से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर हमें देखने को मिल जाता है कुछ बच्चे ढाबों, होटलों में, कारखानों में, खेतों में और घरों में काम करते दिख जाते हैं। कहीं पर तो कूड़ा उठाते या सामान बेचते दिखाई देते हैं। यह स्थिति किसी भी समाज के लिए चिंता का विषय है। बेरोजगारी और जागरूकता की कमी भी बाल श्रम को बढ़ावा देती है। यह तो बच्चों के साथ अन्याय हुआ ना। खेलने पढ़ने की उम्र में उन्हें मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। बच्चों के काम करने की वजह से शारीरिक और मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। हमारे देश में बाल श्रम रोकने के लिए कई कानून और कई योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन कानून योजनाओं से ही नहीं काम चलेगा। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जब भी हम किसी बच्चे को काम करते देखें, तो हमें उनके परिवार को शिक्षा के महत्व के बारे में बताना चाहिए। कई बार माता पिता को योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होता। उन्हें बताना होगा कि सरकार व संस्थाएं उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, कपड़े, खाना देती है। बस माता पिता को थोड़ा सा धैर्य और मेहनत करना होगा। इन्हीं बच्चों में से कई बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं। अच्छे पद पर रहकर अपने परिवार ही नहीं बल्कि समाज की भी मदद कर सकते हैं। बचपन को मत खोने दो, बचपन को मत खोने दो, नन्हे सपनों को मत रोने दो। हाथों में कलम और किताब रहे, हर बच्चे का सुंदर ख्वाब रहे। तो बहनों, आप सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 30% scholarships for all girls students. Applications close 29 April. Apply now at upes.ac.in.
4: संदेश के बाद अब हमारे लिए बहन शमसुन निशा खान कहानी लेकर आई है। यह कहानी हमें सोचने में मजबूर कर देगी कि हम भी समाज में बदलाव ला सकते हैं, बस जरूरत है पहल करने की। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कहानी है पहल जरूरी है।
5: तैयार होने के बाद आदतन मेरा हाथ इत्र की शीशी की तरफ बढ़ गया। तभी कुछ याद आ गया और गहरी सांस भरकर हाथ पीछे कर लिया मैंने। बड़े शौक से इकट्ठा की गई मेकअप की सामग्रियों के प्रति विरक्ति सी हो गई है मुझे। पिछले दिनों की ही तो बात है, काली घटाएं मानसून के आने की अग्रिम सूचना देने लगी। बागवानी की शौकीन मैं खेती बाड़ी के औजारों पर जंग लगा देख उनकी धार लगवाने के लिए सजी धजी समर वाला परफ्यूम लगाकर नाला पानी चौक से आगे IT पार्क की तरफ जाने वाली सहस्त्रधारा रोड के दाएं बाएं किनारों पर राजस्थानी बंजारों के झोपड़ी नुमा टेंटों की कतार के पहले टेंट के पास रुक गई। बरसों से इन बंजारों को मैं यहाँ छुरी चाकू और खेती के औजारों को बनाकर बेचते और धार लगाते देख रही हूँ। झोपड़ी के अंदर बच्चे को गोद में लिए बैठी युवती से पूछा मैंने, हसिया खुरपी गैती फावड़ा पिटवाना है और धार भी लगवाना है? उसने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मैंने गाड़ी की डिक्की से औजार निकालकर युवती के सामने रखकर मेहनताना पूछा, मोल भाव के बाद सौदा तय हो गया? कड़ी धूप में सड़क के किनारे भट्टी के लिए खोदे गए छोटे से गड्ढे में लकड़ी का कोयला डालने लगी। गठा हुआ मंझोला कद, सफेद चंपई रंगत, नमकीन तराशा चेहरा, कलाई में कोहनी तक गिलट की चूड़ियां, नाक में गोल बाली, गले में हंसुली, रंग बिरंगी बारीक मोतियों वाली लंबी माला, पैरों में गिलट के कड़े और उंगलियों में मीनाकारी से सजी बिछिया। ये युवती अगर किसी खाते पीते घराने में जन्म लेती तो यकीनन अपने हुस्न की तारीफें बटोरती। वह सिर पर ओढ़नी डाले भट्टी की आग तेज करने में व्यस्त थी। उसकी चोली नुमा कुर्ती के गले की कशिदाकारी और ओढ़नी के किनारों पर लगा गोटा सूरज की रोशनी में चमचमा रहा था। यकीनन उसके पहने हुए कपड़े अपने नए पन में बेहद चमकीले और चटकीले रहे होंगे। काफी देर तक खड़ी खड़ी मैं जब थक गई तब टेंट में पानी घुसने से रोकने के लिए बनाई गई मिट्टी की 2 फीट की दीवार पर बैठ गई और धधकती गर्मी से दहकती भट्टी के सामने बैठी उस युवती को औजार गर्म करते देखती रही। सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगे इंटरलॉक टाइल्स उसके टेंट का फर्श बने थे। पीछे वाली बिल्डिंग के पिछवाड़े की दीवार उसकी झोपड़ी की दीवार थी। टेंट के बगल में खड़े सायादार पेड़ का मजबूत तना उसके कपड़े टांगने की अलगनी बन गया था। तंबू के आगे के दोनों सिरों से बंधी रस्सी पर उसके बच्चों के कपड़े सूख रहे थे। एक कोने में लोहे का चूल्हा जो शायद सुबह से ही ठंडा पड़ा था। अल्मोनियम के बर्तनों के अलावा मिट्टी के कुछ बर्तन बिखरे हुए रखे थे। ईंटों के पायों पर टिकी प्लाई की शीट उसका पलंग, उस पर बिछी प्लास्टिक की चटाई पर बैठा नाक बहाता बच्चा, बस यही सरमाया था उसकी गृहस्थी का। वह बड़ी तल्लीनता से कुल्हाड़ी हंसिए को दहकती भट्टी से निकालकर लोहे के घन से पीटकर धार तेज कर रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? भूरी। वाकई भूरी रंगत और भूरे बालों वाली बेटी का नाम बहुत सोच समझ कर रखा तुम्हारी अम्मा ने, सुनकर वह हंसती। पति का नाम क्या है? सनी। क्या करते हैं? वो भी यही काम करते हैं। बेटे का क्या नाम है? प्रिंस। इस नाम का मतलब जानती हो? नहीं मेम साहब, मैंने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा कभी। कहाँ की रहने वाली हो?
6: उदयपुर के पास के गाँव की।
5: देहरादून कब आई? शादी के बाद विदा होकर यही लिवा लाए प्रिंस के बाबा। 4 साल हो गए इसी तंबू में। भौतिक आवश्यकताओं, दैनिक जरूरतों के अभावों को अंगूठा दिखाते ये बंजारे परिवार मूसलाधार बारिशों, कड़कती सर्दी, झुलसती गर्मी में बिना दरवाजे के तंबू में कैसे रहते होंगे भला। तुम दोनों के कितने भाई बहन हैं? मेरी 6 बहन 1 भाई और इनकी 7 बहनें 2 भाई। रोजी रोटी का स्थायी जरिया नहीं, घर बार नहीं, फिर क्या खिला पिलाकर पालते होंगे ये लोग इतने सारे बच्चों को? बच्चों की संख्या जिस्मानी ज़रूरत का नतीजा या कमाने वाले हाथों की बढ़ोतरी का ठोस मंशा? सुलगता सवाल दिमाग की नसों को झुलसाने लगा। अपने बेटों को स्कूल भेजोगी ना? हाँ मैम साहब, ये जितना पढ़ना चाहेगा ना उतना पढ़ाएंगे हम। पढ़ लिख कर कुछ और काम करेगा, हमारा काम तो बस मानसून होने तक चलता है, बाकी के 8 महीने तो एक टेम चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। क्या करें, इसके सिवा दूसरा काम हम लोगों को आता भी तो नहीं। मेरी आत्मीयता की आस से उसकी संवेदना पिघलने लगी थी। अब वह तल्लीनता से औजार पीटते हुए लोकगीत गुनगुनाने लगी। सड़क पर चलते मर्द उसकी उजली रंगत और चंपई गठीले बदन की मादकता को आंखों ही आंखों में पी रहे थे। चलती सड़क के किनारे बिना आड़ दरवाजे की झोपड़ी देख सवाल कौंधा। नहाती कहाँ हो? दिशा मैदान के लिए कहाँ जाती हो? भोर में 4 बजे उठकर यहीं पर दुपट्टे का पर्दा डालकर नहाते हैं मेम साहब। वो आम का बगीचा देख रही हो ना, फांद कर चले जाते हैं और उसी की आड़ में भूरी गुटका रंजे दांतों पर हंसी सजाते हुए बेफिक्री से बोली। जनता की मूलभूत आवश्यकताएं तक पूरा न कर सकने वाली सरकार चुनाव जीतने के लिए कैसे कैसे प्रलोभन देकर कितनी बेशर्मी से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है इन अभावग्रस्त दबे कुचले हाशिए में गिने जाने वाले नागरिकों का। भूरी का बच्चा रोने लगा तो वह काम छोड़कर उठी, घूंघट सिर पर डाले दुकान के काउंटर से 5 रुपए वाली आइसक्रीम खरीद कर ले आई। बच्चा आइसक्रीम पाकर चुप हो गया। दहकते औजारों को संसी से पकड़कर लोहे के बड़े चौरस चबूतरे पर रखने लगी। एक एक औजार की धार को बारी बारी उठाकर घन से पीटने लगी। हाथ के बार बार ऊपर नीचे करने से भूरी की ओढ़नी सिर से खिसक कर कंधे के पीछे लुढ़क गई और उसकी चोली की बाई आस्तीन की उजड़ी सिलाई के अंदर से संगमरमरी बदन झांकने लगा। मेरी जगह कोई पुरुष होता तो यकीनन उसकी भूखी निगाह भूरी के जिस्म के आर पार निकल जाती। भूरी, जब अपने कपड़े धोओगी ना तब फटी आस्तीन को जरूर सिल लेना। गर्म तवे पर पड़े पानी के छींटों की तरह भूरी उचकी और झट लहंगे का सामने वाला घेर उठाकर दिखलाने लगी, जो कई जगह से जलकर गोले नुमा छेदों में बदल गया था। क्या क्या सिलेंगे मेम साहब, आगे पीछे से कई जगह से फट गया है हमारा कपड़ा। घाघरा सिलते हैं तो ओढ़नी फट जाती है, ओढ़नी सिलते हैं तो चोली की सिलाई उधड़ जाती है। अभावों और असुविधाओं का इतना नग्न रूप कभी मेरी आंखों ने नहीं देखा था। आंखें जलने लगी मेरी। ये भूरी का दुर्भाग्य है या अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब कर देने का व्यवस्था का षड्यंत्र, सोचकर ठंडी सांस भर कर रह गई मैं। बच्चा आइसक्रीम खाकर झपकने लगा। भूरी ने फटी चटाई की दोहरी तय करके उस पर लिटा दिया उसे और मक्खियों से बचाने के लिए झीना सा कपड़ा ओढ़ा दिया। सड़क पर चलते तेज वाहनों का शोरगुल बच्चे की नींद में खलल नहीं डाल सके। मेरे पैरों पर धूप पड़ने लगी, पंजे जलने लगे तो मैंने स्कार्फ से पैरों के पंजों को ढक लिया। चिलचिलाती धूप में रोटी के जुगाड़ के लिए मेहनत करती पसीना बहाती युवती घनी छांव की आस में तड़पती जरूर हो। तभी एक महिला हाथ में थैला लिए भूरी की भट्टी के पास आकर रुकी। 2 कुल्हाड़ी और 1 खुरपी की धार बनाने का कितना लोगी, पूछा उसने। भूरी ने आदतन दुगना दाम बताया तो सुनकर वह महिला आगे के डेरे की तरफ चल पड़ी। भूरी उसे जाते देख कम दाम बतलाकर बुलाने लगी, लेकिन वह अनसुना करके दूसरे बंजारों से सौदा करने लगी तो भूरी मेरी तरफ देखकर खिसियानी हंसी हंसते हुए सफाई देने लगी। काम करवाना नहीं होता, बस पूछ पूछ कर आगे चले जाते हैं, सुनकर हंसते हुए मैं बोली। उसे काम न करवाना होता तो वह यहाँ तक आती भूरी? इसका मतलब तुमने मुझे भी ज्यादा दाम बतलाए है ना। सुनकर भूरी का चेहरा उतर गया। क्या ज्यादा दाम लेंगे मेम साहब, सुबह से शाम हो गई आप ही से बहुनी हो रही है। आप तो घर जाकर एसी में सो जाएंगी, हम पूरी दोपहरी खट कर भी पेट भर रोटी नहीं खा सकेंगे। 100-150 रुपए में आता ही क्या है भला। तुमको कैसे मालूम कि मेरे घर में एसी है, मैंने हंसकर पूछा। पढ़े लिखे जरूर नहीं हैं, मगर इतनी तो परख रखते हैं मेम साहब। आप इतना महंगा इत्र लगाए हैं कि मेरी पूरी झोपड़ी खुशबू से भर गई है। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, सब कुछ तो है आपके पास। भूरी के कटाक्ष भरे उत्तर ने मुझे अंदर तक आंदोलित कर दिया। साबुन, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी भौतिक आवश्यकताओं को हासिल करना हर भारतीय का हक है। फिर क्यों करोड़ों जिंदगियां अभाव में पैदा होती, दुर्भाग्य की मार झेलती, अभाव में ही बेकफन मर खप जाती हैं। दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोग देश का सरमाया बने, भोग विलास वैभव की आलीशान जिंदगी जीते, कमजोर लोगों का हिस्सा भी निगलने में हिचकते नहीं हैं। विवेक ने झिझकोरा, मैं भी तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक विषमता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हूँ। मुझे जरूरत से ज्यादा सामान रखने की जरूरत क्या है? कुछ कपड़े, दो वक्त की रोटी, सिर पर छत के अलावा मुझे और चाहिए भी क्या? भूरी जैसे अनगिनत अभावग्रस्त लोगों से भरे देश में समानता का बीज बोने के लिए पहल जरूरी है। दूसरे दिन सिर्फ अपनी जरूरत का सामान घर में रखकर बाकी सामान किस जरूरतमंद को देना है फैसला कर लिया मैंने। एक लू भरी शाम को खाने पीने की चीजों से भरे थैलों के साथ परफ्यूम की बड़ी शीशी हाथ में लेकर भूरी की आंखों में जो खुशी छलकती देखी थी वह मेरी पहल की संतुष्टि थी। बस इतना ही काफी है असमानता की खाई को पाटने के लिए।
4: बहनों, अभी आप शम्सुन निशा खान से कहानी सुन रही थी। कहानी थी पहल जरूरी है। उम्मीद है दिल को छूने वाली कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अब हम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक विषय पर बात करेंगे। बहनों, हम सभी जीवन में खुश रहना चाहते हैं, है ना? हम चाहते हैं हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद बना रहे। सबसे आसान तरीका है खुशियों को दूसरों से बांटना, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना या किसी निराश व्यक्ति को हौसला देना, तो हमें एक अलग प्रकार की खुशी महसूस होती है। खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। हमारे जीवन में बहनों छोटी छोटी खुशियाँ बहुत महत्व रखती हैं। किसी का मुस्कुराकर अभिवादन करना, किसी की तारीफ करना, किसी को खुश करना, परिवार के साथ समय बिताना, ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत ही खुशियाँ देती हैं। खुशियों की कोई कीमत नहीं होती। आज की भागदौड़ जिंदगी में या परेशानियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, दूसरों की खुशी और दुख की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन बहनों, हम जब दूसरों की खुशी को देखते हैं या दुख के समय काम आते हैं, तो रिश्तों में मिठास आती है। खुशी बांटने से सबसे पहला स्थान हमारा परिवार है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग, सम्मान व प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो घर में सुख, शांति और प्यार भरा वातावरण बना रहता है। संबंधों में मजबूती आती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताने और खुशियां साझा करने से मन को बहुत सुकून मिलता है। खुशियां जब दिल से बांटी जाती हैं तो दुनिया और भी सुंदर बन जाती है। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, वही जीवन में सच्चा सुख पाते हैं। मिलते हैं बहनों संदेश के बाद।
3: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Join 60,000 strong UPES

0: community, working with industry giants like Apple, Google and Microsoft. Application close 29 April. Apply now at upes.ac.in.
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: स्वागत है बहनों आपका फिर से आपके कार्यक्रम महिला जगत में बहनों फ्रिज हमारी रसोई का महत्वपूर्ण हिस्सा है मौसम कोई भी हो फ्रिज का उपयोग हम हमेशा ही करते हैं लेकिन गर्मियों में ज़्यादा उपयोग होता है यदि इसकी देखभाल सही ना की जाए तो इसमें बैक्टीरिया और दुर्गंध पैदा हो सकती है फ्रिज को सही व साफ रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे सप्ताह में एक बार पूरे फ्रिज की सफाई करें खाने को हमेशा ढक कर रखें खुले भोजन से खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं समय समय पर पुराने खाद्य पदार्थ को तुरंत हटा दें फ्रिज का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक रखें फ्रिज को जरूरत से ज़्यादा ना भरें ज़्यादा भरने से खाद्य पदार्थ जल्दी बासी हो जाते हैं फल और सब्जियों को उनके निर्धारित सांचों में ही रखें इससे ताजगी बनी रहती है दरवाजे की रबड़ की भी सफाई करें बहनों आजकल तो बच्चों को ठंडी ठंडी आइसक्रीम बहुत पसंद आती है ना तो फ्रिज की अच्छे से देखभाल करनी होगी ताकि हमारा परिवार स्वस्थ रहे बहनों मिलते हैं संदेश के बाद
0: Future proof your career with UPES. Up to 25% scholarship for Uttarakhand domiciled students. India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarship for Uttarakhand domiciled students. Applications close 29 April. Apply now at upes.ac.in.
2: अब समय है रसोई घर से हम बनाएंगे एक स्पेशल सब्जी आजकल बाजार में तरबूज बहुत आ रहे हैं आज हम बनाएंगे तरबूज के छिलकों की सब्जी यानी तरबूज को अच्छे से धोकर छिलके अलग करके छोटे छोटे पीस कर लें तरबूज के अंदर के लाल वाले हिस्से का जूस बना लें एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी या तेल डालें गर्म होने पर 1 चम्मच राई 1/2 चम्मच कलौंजी 1 चम्मच शाही जीरा 2 प्याज बारीक कटे हुए डालें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालें 2 लाल साबुत मिर्च डालें और हल्का ब्राउन होने के बाद तरबूज कटे हुए को डाल दें तरबूज के छिलकों को इसमें 1 चम्मच हल्दी स्वादानुसार नमक अब खूब हिलाएं 3 हरी मिर्च कूट कर डालें लाल मिर्च 1/2 चम्मच अब 1 चम्मच गर्म मसाला डालें सब्जी को तेल जब सब्जी तेल छोड़ने लगे तो 1 कटोरी तरबूज के लाल वाले हिस्से के जूस भी डालें ऐसे तरबूज की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है और यह राजस्थान में बनती है सब्जी को पूरी परांठा या चावल के साथ खा सकते हैं और हाँ बहनों 1 कटोरी में तरबूज का लाल जूस भी थाली में रखें इसको पानी की जगह पिएं है ना स्पेशल सब्जी स्वादिष्ट खाना तो हो गया अब समय है म्यूजिकल ब्रेक का तो सुनते हैं प्यारा सा गीत

बहनों, समय का पता ही नहीं चला, चलते चलते आपको अपना पता बता देते हैं। कार्यक्रम महिला जगत, निर्देशक कार्यक्रम आकाशवाणी, निकट रिस्पना पुल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून। पिन कोड नंबर है 248001। अब अपनी बहन सुनीता भट्ट को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत, FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय दोपहर का 1 बजने वाला है। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए

0: ये निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन। खेल जगत और उत्तराखंड में शोक की लहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य तेजी से जारी। अब तक 1,33,000 से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए गए। और पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कोर्ट और देवल गांव का भ्रमण कर पॉलीहाउस आधारित खेती और लिलियम पुष्प उत्पादन गतिविधियों का निरीक्षण किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल के संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के अनुसार राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे मूल रूप से उत्तरकाशी जिले के नैनबाग चिलामू के रहने वाले थे। उनके निधन की खबर से खेल जगत और उत्तराखंड में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जसपाल राणा ने निशानेबाजी में अपनी असाधारण उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका निधन भारतीय खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि निशानेबाजी के क्षेत्र में जसपाल राणा का असाधारण योगदान, ऐतिहासिक उपलब्धियों और युवा खिलाड़ियों को दी गई प्रेरणा ने भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया। श्री धामी ने कहा कि उनका निधन खेल जगत, उत्तराखंड और पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति आशियाना परिसर में 132 एकड़ के क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का अवलोकन करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल जिले के सैनिटोरियम रातीघाट कैंची बाईपास मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही बेली ब्रिज का शुभारंभ किया। लगभग 19 किलोमीटर लंबे इस महत्वपूर्ण बाईपास मार्ग का निर्माण 37 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही कैंची धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि बाईपास मार्ग के निर्माण के बाद कैंची धाम क्षेत्र में लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और कर्णप्रयाग सहित समूचे कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।
3: आज तक जब कुजनी महाराज जी के मंदिर कैंची धाम पर हम लोग आते हैं या फिर देश की और विदेशों से भी जनता आती है, लंबे समय तक रुकना पड़ता है। कभी कभी जो मरीज हैं वो भी फंसे रहते हैं, बड़ा कष्ट होता था। हमारी सरकार ने जो बाईपास दिया, पहले से पैदल मार्ग जैसा था, वो आज पूरा बन गया है। इसके 8 किलोमीटर तक डामरीकरण हो गया है, शेष भाग में प्रगति पर है। इस तरह से जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, अभी लगने वाला है 15 जून से, तो उस समय जो परेशानी है काफी होती है। अब एक वैकल्पिक मार्ग जो सीधे बाहर रातीघाट भेज देगा, जिन जिन को यहाँ से जाना होता है, तो ये सुविधा उनको हो जाएगी कि अब उस जाम में फंसना नहीं पड़ेगा।
2: अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने बताया कि अवैध निर्माण के अलावा अवैध प्लॉटिंग और व्यावसायिक निर्माणों को लेकर भी सख्ती से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें व्यावसायिक भवनों में लिफ्ट, अग्निशमन और सीसीटीवी की व्यवस्थाओं की स्थिति की जांच कर रही है, ताकि सुरक्षा के मानक बने रहें और किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
4: ये दो तरह के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। जैसा मैंने पहले ही बताया था, एक तो इस वर्ष की आपदा में जहाँ जहाँ नाले खालों में अतिक्रमण था और जो बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ, उस पर हमने बहुत सख्ती से कहा है कि जहाँ भी जल स्रोत है उस पर निर्माण कार्य न होने दिया जाए या अवैध निर्माण जो है उनको हटाया जाए। इसके साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे व्यावसायिक निर्माण बड़े स्तर पर हो रहे हैं, उनके जाँच के साथ ही साथ हमने जो उनमें लिफ्ट प्रयोग हो रही है, जो उनके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, अग्निशमन की वहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं, सीसीटीवी कैमरे ठीक हैं कि नहीं, उसका भी अलग से हमने निर्देश जारी किया है कि सभी लोग जितने भी इस तरह के कमर्शियल हैं जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा होती है, वो सुरक्षा की जो पहलू हैं, जो मानक हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी भी जांच करें।
5: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
2: देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की टीमें घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रही हैं। अब तक जिले में 1,33,000 से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि SIR अभियान के तहत घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं और मतदाताओं को सत्यापन उनका किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुँच बनाकर प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए।
6: SIR को लेके हम लोगों की मल्टीपल ECI के लेवल पे भी जो डायरेक्शंस मिले हैं या CEO ऑफिस की तरफ से डायरेक्शंस मिले हैं, वो नीचे डिसेमिनेट कर दिए गए, और हाउस टू हाउस सर्वे जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है उसको भी हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इस संबंध में कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो मेरे द्वारा ERO या SDMs को बता दिया गया है कि वो कंटिन्यूअसली पॉलिटिकल पार्टीज के टच में रहें और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में और जो ECI की डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंगली ही फर्दर इस पूरे हाउस टू हाउस सर्वे को कंडक्ट किया।
2: पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस पतौरिया ने कोट विकास खंड के कोट और देवल गांव का भ्रमण कर पॉली हाउस आधारित खेती, सब्जी उत्पादन तथा लिलियम पुष्प उत्पादन गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और उत्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
7: यहाँ पे नरेश जी हैं, एक यहाँ प्रगतिशील किसान, उनका काफी बड़ा उन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग के रूप में इस पूरे एरिया को विकसित कर रखा है और उसमें लहसुन, खीरा आदि जो थोड़े से नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वो भी उन्होंने उगाया और इसे काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है और साथ में हमारी कुछ और महिलाओं को भी रोजगार उनके माध्यम से मिला है। तो इस बार हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी यही निर्देशित किया है कि इसको मार्केटिंग में जो भी सपोर्ट हो वो उपलब्ध कराएं और साथ में हमारे जो ये प्रॉफिटेबल, जैसे लहसुन का काफी अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट रेशियो देखा, साथ में लिलियम का अच्छा प्रॉफिट रेशियो है। तो इस तरीके के 10 क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करके हम वो हाई प्रॉफिटेबल क्रॉप्स को इस बार और ज्यादा प्रमोट करें, उनको और ज्यादा सब्सिडी के लिए भी ज्यादा कॉम्पोनेंट उसके लिए रखें, पॉली हाउसेज आदि भी उसी हिसाब से हम लोग इस बार देने का प्रयास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में व्यापक जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 12 साल विकास के जन कल्याण के संदेश के साथ मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी विधानसभा स्तर पर प्रवास कर जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को लेकर संवाद करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां तय की हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान भविष्य के चुनावों में पार्टी के जनाधार को और मजबूत बनाने का आधार बनेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन, खेल जगत और उत्तराखंड में शोक की लहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर, जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य तेजी से जारी। अब तक 1,33,000 से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए गए और पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कोट और देवल गांव का भ्रमण कर पॉली हाउस आधारित खेती और लिलियम पुष्प उत्पादन गतिविधियों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे इतिहास फिल्म का ये गाना, जिसे गाया था अनुराधा पौडवाल और के पप्पू ने, लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया दिलीप सेन, समीर सेन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। राजेंद्र कृष्ण के शब्दों को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं कामचोर फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इंदीवर की शब्द रचना है, राजेश रोशन का संगीत।

श्रोताओं, गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, इस समय 1:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।

0: यहाँ से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
0: जी
1: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
0: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहाँ तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
0: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440055 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग। श्रोताओं, कार्यक्रम के संबंध में आपको कुछ जानकारी देते हैं। आज शाम 5:45 पर पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सुनेंगे बाल मजदूरी और कानूनी प्रावधान। इस विषय पर भेंटवार्ता सुनिए, एडवोकेट भूपेंद्र सिंह लिंगवाल से ली गई ये भेंटवार्ता है। और साथ ही आप सुनेंगे रात्रि शाम 7:00

श्रोताओं, शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के एक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मोहन सिंह रावत का संतूर वादन, राग होगा गौड़ सारंग।

0: In badminton, India's PV Sindhu stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney today. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu 21-6, 21-9 in a one-sided quarterfinal clash. The Inter-Meteorological Department, IMD, has said a wet spell is likely to continue over northwest India till tomorrow, with the possibility of thunderstorms and gusty winds and hailstorms. According to IMD, conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता

0: 32 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर ला के हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास

0: को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल

0: सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों, आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं माँ भारती के वीर सपूत भारतीय सेना के मेजर संदीप उन्नी कृष्णन को, जिन्होंने 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले के दौरान आतंकवादियों से लड़ते लड़ते देश के लिए अपनी जान गंवा दी। उनकी शहादत के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी शहादत को शत शत नमन।

साथियों, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म 12 मार्च 1977 को केरल के कोड़िकोड में के उन्नीकृष्णन और धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन के बेटे के रूप में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों जैसे खेल और भी जो गतिविधियां होती थी स्कूल में, उसमें भाग लिया करते थे और वे स्थान भी प्राप्त करते थे।

मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद एनडीए में दाखिला लिया और नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में 3 साल तक उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद आईएमए देहरादून से ट्रेनिंग कर वो 12 जून 1999 में पास आउट हुए और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए। उन्होंने बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया था और 12 जून 1999 को उन्हें कमीशन मिला और इसके बाद उन्होंने 12 जून 2003 को वो कैप्टन बने। 13 जून 2005 को मेजर के पद पर पदोन्नत हुए। उस समय जब जुलाई 1999 में जब संदीप उन्नीकृष्णन पास आउट हुए तब जम्मू कश्मीर के कारगिल में ऑपरेशन विजय चल रहा था और संदीप को वहां भेजा गया। जब संदीप ने पाकिस्तान जो सेना थी उसको हैवी आर्टिलरी फायरिंग के दौरान अपनी बहादुरी के दम पर मुंह तोड़ जवाब दिया।

साथियों, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने पहले कैप्टन और उसके बाद मेजर के पद पर नियुक्त होने के बाद बेलगांव के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में भी भाग लिया और वहां से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। और जब उन्होंने ये कोर्स किया तो उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद वे गुलमर्ग गए और वहां भी सेना की कुछ ट्रेनिंग ली। साथ ही सियाचिन, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उनकी शानदार सेवाओं को देखते हुए उन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सर्विस दिल्ली में सेलेक्ट कर लिया गया और जनवरी 2007 में संदीप को NSG के स्पेशल एक्शन ग्रुप का ट्रेनिंग ऑफिसर बना दिया गया।

सैनिक साथियों, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में ताज होटल और अन्य कई स्थानों में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया और होटल ताज में आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई और इसमें 160 से ज़्यादा लोगों की जान गई और लगभग 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 26/11 के आतंकी हमले के दौरान एनएसजी द्वारा ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के तहत संदीप उन्नीकृष्णन 10 कमांडो की टीम के साथ होटल में गए और लगभग ये जो ऑपरेशन था 15 घंटे तक चला और इस दौरान उन्होंने होटल में फंसे हुए कई लोगों को बाहर निकाला और 27 नवंबर को मेजर संदीप और उनकी टीम ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का जोखिम भरा निर्णय लिया। लेकिन इसी बीच आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें मेजर संदीप के साथी कमांडो सुनील जोधा बुरी तरह से घायल हो गए और मेजर संदीप ने अकेले ही आतंकवादियों का पीछा किया और वो अनेक लोगों की जान बचाते हुए अपना जीवन बलिदान कर गए। उनके इस प्रयास से ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो तो सफल रहा लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हो गए और मेजर संदीप को मरणोपरांत साल 2009 में भारत के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।

साथियों, आज का ये कार्यक्रम समर्पित था भारतीय सेना के जांबाज नायक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को। उन्हें शत शत नमन। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया। वह 49 वर्ष के थे। कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रप्रयाग में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा को देश के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पिथौरागढ़ जिले के लेलू में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने बताया कि अवैध निर्माण के अलावा अवैध प्लॉटिंग और व्यावसायिक निर्माणों को लेकर भी सख्ती से काम किया जा रहा है। देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य जारी। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की टीमें घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रही हैं। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन और जन जागरूकता के उद्देश्य से आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग पौड़ी गढ़वाल की ओर से कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं जुनूनियत फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे जुनूनियत फिल्म से। इस गीत को गाया था अरमान मलिक ने, लिखा था रश्मि विराग ने और संगीतबद्ध किया था जीत गांगुली ने। अब आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में अनविता दत्ता का लिखा गीत और समीरुद्दीन का संगीत। फिल्म का नाम है जंगली।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कबीर सिंह का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था मिथुन ने। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जोधा अकबर फिल्म से। इस गीत को गाया है जावेद अली ने और संगीतबद्ध किया AR रहमान ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म खाकी से। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और अर्णव चक्रवर्ती की, समीर की शब्द रचना है, संगीत राम संपत का।

अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, मोहम्मद इरफान की आवाज़ में, जिसे लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। फिल्म का नाम है किक।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना गीत खामोशियां फिल्म का, जिसे गाया था पलक मुछाल ने, सईद कादरी ने इसे लिखा था और संगीतबद्ध भी किया था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्या कहना से। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों को संगीत

श्रोता, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फना फिल्म से, जिसे गाया है शान और साथियों ने, लिखा प्रसून जोशी ने है, संगीत बद्ध किया जतिन ललित ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे काशी फिल्म का ये गाना, जिसे गाया था यासिर देसाई ने। अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक का युगल स्वर फिल्म घुंघरू में।

0: घुघरू फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं पर संपन्न होता है। FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, इस समय शाम के 4 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची। जौलीग्रांट एयरपोर्ट में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न जिलों में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से साझा किया। अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने बताया कि अवैध निर्माण के अलावा अवैध प्लॉटिंग और व्यावसायिक निर्माणों को लेकर भी सख्ती से काम किया जा रहा है। देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य जारी। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की टीमें घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रही हैं। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सफल आयोजन और जन जागरूकता के उद्देश्य से आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग पौड़ी गढ़वाल की ओर से कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिले में गंभीर और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित ऐसे बच्चों के चिन्हीकरण तथा उपचार की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं, जिनके परिजन आर्थिक रूप से उपचार का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। मैदानी हिस्सों में गर्मी बढ़ने और स्कूल कॉलेजों में बच्चों की छुट्टियां पड़ने के बाद लोगों का रुख इन दिनों पर्वतीय क्षेत्रों के लिए होने लगा है। इसी क्रम में चंपावत जिले के श्यामला ताल, एबट माउंट, मायावती आश्रम और कोलीढेक झील सहित अन्य पर्यटक स्थलों में लोग प्रकृति का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का और

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहन सिंह रावत का संतूर वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग गौड़ सारंग। तबले पर संगत थी सप्तक शर्मा की। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम एक कलाकार का। कार्यक्रम में कलाकार सुन रहे सभी श्रोताओं को सीमा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं आज फिर एक नए कलाकार के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, इस गीत को सुनकर आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा हमारी आज की कलाकार हैं अदाकारा श्यामा। जी हाँ, 1954 में रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म आर पार से मुख्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने शानदार शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 के दशक की मशहूर अभिनेत्री श्यामा का नाम सुनते ही आज भी उस दौर की बेहद खूबसूरत, चुलबुली, हसीन अभिनेत्री का चेहरा हमारे दिलो दिमाग में आ जाता है। लेकिन आज के दौर के लोग तो इन्हें जस पहचानते भी नहीं हैं। और जब अभिनेत्री बनने से पहले श्यामा ने लगभग 50 फिल्मों में बाल कलाकार और अतिरिक्त कलाकार के तौर पर छोटे छोटे रोल किए, लेकिन उनकी फिल्म

श्रोताओं, अभिनेत्री श्यामा का मूल नाम खुर्शीद अख्तर था। जब बचपन में उनके अभिनय का सफर शुरू हुआ तब उनकी उम्र काफी छोटी थी। साल 1945 में फिल्म जीनत की एक प्रसिद्ध कव्वाली में एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने पहली बार कैमरा फेस किया था। प्रसिद्ध निर्देशक विजय भट्ट ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनका नाम बदलकर श्यामा रख दिया।

श्रोताओं, अभिनेत्री श्यामा की ये फिल्म थी बरसात की रात, जो कि 1960 में आई। उसके बाद उनकी फिल्में आई तराना, भाई भाई, खोटा पैसा, दिल दिया दर्द लिया, मुसाफिर खाना, सावन भादो, और उनकी एक बहुत ही हिट फिल्म थी भाभी। उन फिल्मों में उन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया, लेकिन उन्हें जिस रूप में जाना गया, एक उन्होंने किरदार निभाया अपनी हम उम्र मीना कुमारी, अभिनेत्री मीना कुमारी की माँ का उन्होंने किरदार निभाया था, और इस भूमिका के लिए उन्हें 1957 का सर्वश्रेष्ठ सहनायिका का फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया। ये तो थी जानकारी हमारी आज की अभिनेत्री कलाकार श्यामा के बारे में। आइए उन पर अभिनीत ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम एक कलाकार यहीं पर संपन्न करने की सीमा सक्सेना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, सायंकाल के 5 बजने को है, अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृह मंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चयन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उछाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर प्रसारित होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत। आप सुनेंगे शाम 5:45 पर। शाम 7:00 किसान साथियों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित होगा। क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम संवाद आप सुनेंगे साय 7:50 पर। रात्रि 8:00 कथा सागर के अंतर्गत सुनेगा नवीन कुमार नैधानी की पूर्व प्रसारित कहानी इस फूल को क्या नाम दे। रात्रि 8:10 पर सुनेगा कार्यक्रम सरकार के 12 साल स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 9:30 पर आज सुनेगा आदित्य पंत का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग मरुविहाग हेलो फरमाइश। श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम रात्रि 10:00। श्रोताओं, ये थी आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल प्रातः 6:45 पर सुनिएगा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के भारतीय सैन्य अकादमी यात्रा एवं आईएमए पासिंग आउट परेड का राज्य स्तरीय सजीव प्रसारण। नमस्कार देहरादून प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर।

प्रातः 9 बजे आनंद लीजिएगा सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल प्रातः 10:35 पर आप सुनेंगे योगेंद्र पाल के स्वर में रागिनी। दोपहर 12:30 पर बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत सैनिकों के लिए। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 2:30 पर।

कल शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे अग्निकुमार वर्मा का सितार वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग भीमपलासी। आपका पत्र मिला। श्रोता ये कार्यक्रम सुनेंगे कल रात्रि 8:00। 12 साल सरकार के ये कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 8:10 पर। कल रात्रि 9:15 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा। कल रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका। साथ ही रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं, ये दोनों कार्यक्रम भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

श्रोताओं, ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ मैं सक्षम पंत
1: और मैं आयुषी भट्ट आप सभी के बीच दोबारा हाजिर हो चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों और बेहतरीन फिल्मी गीतों के साथ।
0: दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में सबसे पहले बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो न केवल बच्चों से बल्कि पूरे समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
1: और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की।
0: दोस्तों, हर बच्चे का अधिकार होता है कि वो पढ़े, खेले, सीखे और अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें छोटी सी उम्र में स्कूल जाने के बजाय काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
1: और इसी समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 12 जून यानी आज के दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी।
0: इस दिन का उद्देश्य है लोगों को ये समझाना कि बाल श्रम केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि बच्चों के अधिकारों का हनन भी है।
1: दोस्तों, बाल श्रम का मतलब है बच्चों से ऐसे काम करवाना जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं।
0: कई बार आर्थिक कठिनाइयों, गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण बच्चों को छोटी उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
1: लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब एक बच्चा स्कूल की जगह काम पर जाता है तो सिर्फ उसका बचपन ही नहीं छिनता बल्कि उसके बेहतर भविष्य की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं।
0: दोस्तों, बाल श्रम को ख़त्म करने में युवाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के युवा जागरूक है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है।
1: अगर हम अपने आसपास किसी बच्चे को खतरनाक या अनुचित परिस्थितियों में काम करते देखें तो हमें संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और संबंधित अधिकारियों या संस्थाओं तक जानकारी पहुंचानी चाहिए।
0: साथ ही हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि शिक्षा ही वो महत्वपूर्ण माध्यम है जो कि बच्चों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है।
1: दोस्तों, आज भारत सहित दुनिया के कई अन्य देश भी बाल श्रम को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है, समाज की जागरूकता और सहभागिता भी उतनी ही जरूरी है।
0: एक जागरूक नागरिक के रूप में हम छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, उन्हें सम्मान देना और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग करना।
1: क्योंकि हर बच्चे के हाथ में किताब अच्छी लगती है, औजार नहीं, हर बच्चे की जगह स्कूल में है, किसी फैक्ट्री या दुकान में नहीं।
0: दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें ये याद दिलाता है कि बच्चों का बचपन सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: तो आइए दोस्तों, संकल्प लें कि हम ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देंगे जहां हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा।
0: क्योंकि बच्चे सिर्फ देश का भविष्य ही नहीं है, बल्कि देश का वर्तमान भी है। आइए बाल श्रम को ना कहें और हर बच्चे के बचपन को हाँ कहें। तो आइए सुनते हैं इसी के साथ ये गीत, जिसे गाया है रमन महादेवन ने और जिसे लिया गया है फिल्म तारे ज़मीन पर से।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
3: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4: अच्छा आयुषी, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भारत में कितने लोग रहते हैं?

0: जनगणना।
1: तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आखिर सेंसिस होता क्या है, ये क्यों कराया जाता है और इसमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरीके से प्रभावित होती है।
0: दोस्तों, सेंसिस यानी जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश की पूरी आबादी से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की जाती है।
1: इस दौरान केवल लोगों की संख्या ही नहीं गिनी जाती, बल्कि उनकी आयु, लिंग, शिक्षा, रोज़गार, आवास की स्थिति, भाषा और अन्य सामाजिक और आर्थिक जानकारियां भी एकत्र की जाती हैं।
0: दोस्तों, भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। आधुनिक और व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में हुई थी। इसके बाद सामान्य रूप से हर 10 वर्ष में जनगणना आयोजित की जा रही है।
1: भारत की जनगणना को दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक गतिविधियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचा जाता है।
0: दोस्तों, जनगणना के लिए प्रशिक्षित गणनाकर्मी घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी को कानून के तहत गोपनीय रखा जाता है और इसका उपयोग केवल स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए किया जाता है।
1: अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जनगणना इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्यों?
0: क्योंकि दोस्तों, जनगणना से प्राप्त आंकड़े सरकार को ये समझाने में मदद करते हैं कि देश के किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उन्हें किन सुविधाओं की आवश्यकता है।
1: अब दोस्तों, ये मान लीजिए कि किसी ज़िले में जो बच्चों की संख्या है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें वहाँ पे नए स्कूलों और शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो इसकी तैयारी के लिए जो डेटा है वो जनगणना से ही लिया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में बुज़ुर्गों की संख्या अधिक है तो वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं हैं उन्हें मजबूत करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये डेटा भी जनगणना के ज़रिए ही लिया जाएगा।
0: इसी तरह जनगणना के आंकड़े सड़क, बिजली, पानी, आवास, परिवहन और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के निर्माण में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों।
1: अब युवाओं के लिए सेंसिस को समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार से जुड़ी जो नीतियाँ होती हैं वो इन्हीं आंकड़ों पर आधारित होती हैं।
0: और दोस्तों, आज के डेटा बेस्ड युग में जानकारी ही सबसे बड़ी शक्ति है और जनगणना वो माध्यम है जो देश को अपनी वर्तमान स्थिति समझने और भविष्य की दिशा तय करने में मदद करता है।
1: तो दोस्तों, अगर हम आसान भाषा में कहें तो जो सेंसिस होता है वो हमारे देश का रिपोर्ट कार्ड होता है। यह हमें बताता है कि हमने अभी तक कितनी प्रगति की है, आगे हमें और कितनी प्रगति करनी है और किन क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस करना है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप जनगणना शब्द सुने तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ लोगों की गिनती है।
1: बल्कि वो प्रक्रिया है जो देश के विकास की योजनाओं को दिशा देती है और करोड़ों लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करती है।
0: क्योंकि सही जानकारी से ही सही योजना बनती है और सही योजना से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आइए दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म उड़ता पंजाब से है, जिसे आवाज़ दी है शाहिद माल्या ने।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
2: दोस्तों 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम युववाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके साथ बने हुए हैं आयुषी और सक्षम।
3: जी हाँ दोस्तों, और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो हुनरमंद हाथों को सम्मान देने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान कर रही है, और ये स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने पारंपरिक कौशल से वर्षों से लोगों की ज़रूरतें पूरी करते आए हैं, जैसे बढ़ाई, लोहार, कुम्हार, दर्जी, नाई, सुनार, मोची और ऐसे ही कई अन्य कारीगर अपनी मेहनत और हुनर से समाज की सेवा करते हैं।
3: लेकिन दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि प्रतिभा और मेहनत होने के बावजूद उन्हें प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएँ आसानी से नहीं मिल पाती,
2: और ऐसे ही कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों, इसका उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों के कौशल को पहचान देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना।
3: वैसे आयुषी, तुम्हें क्या लगता है कि आज के जो युवा हैं वो इस योजना का किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, और उन्हें इसको समझना इतना जरूरी क्यों है?
2: क्योंकि सक्षम, आज का युवा सिर्फ नौकरी पाने की सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद का काम शुरू करने और अपने हुनर को पहचान बनाने का माध्यम भी बनना चाहता है। और अगर दोस्तों हम में से किसी युवा के परिवार में पारंपरिक व्यवसाय यानी बिजनेस से जुड़े लोग हैं तो ये योजना उनके लिए नई संभावनाओं के अवसर खोल सकती है।
3: बिल्कुल, इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी होंगे उन्हें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा और आसान ऋण यानी लोन सुविधा जैसी कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
2: साथ ही दोस्तों, इससे कारीगरों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वे बदलते समय के साथ अपने काम को नई दिशा दे पाते हैं।
3: क्योंकि दोस्तों, हर एक हुनर की एक अपनी पहचान होती है। जरूरी नहीं है कि हम

0: से नज़रअंदाज करें, बल्कि हम उसे निखारें, हम उसे जोड़ें इस तरीके की और योजनाओं से, ताकि उनके कौशल को सम्मान मिल सके और सहयोग मिल सके। तो केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ेगा।
1: तो दोस्तों, जितना हो सके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने आसपास के ज़रूरतमंद एवं पात्र लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि हुनर अनमोल है और सशक्त कारीगर ही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत हैं।
0: तो दोस्तों, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने हुनर पर गर्व कीजिए। और इसी के साथ कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म फुकरे से, जिसे गाया है राम संपत और क्लिंटन कैजो ने।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: दोस्तों, आज भारतीय खेल जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। भारत के महान निशानेबाज और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है। उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर है।
2: पद्मश्री जसपाल राणा सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं थे, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी थे। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने कई पदक अर्जित किए देश के लिए और देश का गौरव बढ़ाया। साथ ही उत्तराखंड का गौरव भी उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि दोस्तों उनका जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक गढ़वाली परिवार में हुआ था।
1: दोस्तों, बहुत कम उम्र में उन्होंने शूटिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी। खास तौर पर पिस्टल शूटिंग में उनका नाम भारत के सबसे सफल खिलाड़ियों में लिया जाता है। उनके खेल में अनुशासन, आत्मविश्वास और देशभक्ति साफ दिखाई देती थी।
2: लेकिन पद्मश्री जसपाल राणा की पहचान सिर्फ एक बेहतरीन निशानेबाज तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने एक कोच के रूप में भी देश को कई नई प्रतिभाएं दी हैं। कई युवा खिलाड़ियों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को तैयार करने में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उनकी कोचिंग और खेल के प्रति समर्पण को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया था, और यह सम्मान उनके योगदान का प्रमाण है।
2: आज उनके निधन पर पूरे देश की आंखें नम हैं। खेल जगत से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गजों ने भी उनके निधन पर भारतीय खेल जगत को एक बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची है, ऐसा बताया।
1: दोस्तों, जसपाल राणा का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, अनुशासन और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने हमेशा देश को सबसे ऊपर रखा, और यही वजह है कि आज हर भारतीय उन्हें गौरव और सम्मान के साथ याद कर रहा है।
2: भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी उपलब्धियां और उनके द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ी हमेशा उनकी यादों को जीवित रखेंगे।
1: महान निशानेबाज जसपाल राणा को हमारी श्रद्धांजलि। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म उरी से, जिसे आवाज दी है यसीर देसाई और शश्वत सचदेव ने।

0: दोस्तों, आज का हमारा यह युववाणी कार्यक्रम का सफ़र यहीं पर संपन्न होता है, मगर आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ये ज़रूर बताइएगा। हमें पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून। हमारा पिन कोड है 2480001।
1: साथ ही दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और आज के लिए मुझे यानी आयुष भट्ट
0: और मुझे यानी सक्षम पंत को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: चलिए
1: बरखा हुने हो ना अभी कि ना जोन सारा छोड़
0: दादा जोन सार छोड़ यो लगी हो और जी काम रूम हो जी काम स्टूडियो एक भी बिया रात तो अलग पहुंचिया
1: हाँ ब्याल रात जन हुआ तन तो लगी कि भाई सुबेर तक तो नहीं रहा क्या कि लेकिन रुक गए थे। मौसम में थोड़े से बदलाव छ भल लगणु छ
0: जी
1: और हमारा जो सैलानी छन ओ फार जो चक्रवता का छोड़ छन आ फार मसूरी का छोड़ छन तो खा कई खुश होया छन ना।
0: बिल्कुल सैलानी पर्यटन तो ऐसा रहा हो कि बिया पर चौकरा तो नठिए तो दादा देखो कि तीछे जो हमारे जोन सारी लोग भी हो से नु ते तो बाजारों दे होटलू पुणी जागा इस ना खाणो खाणो कुकी की बैठो तो बैठो कोके इस बोलो कि आधे घंटे जो रुकी तो भी आंदा नंबर तो पर्यटन इच्छा रहा बड़ी सैलानी इच्छा लगी आंदे कई कि हमारे पहाड़ों की ठंडी हवा ठंडो पानी कौशिक ना तो पसंद
1: टेक मना वही इंतजार में भी मजा छे है ना
0: जी
1: कि अगर खाणो नहीं मिल लो तो तब तक हवा ही खा लियो
0: बिल्कुल
1: तो भली बात छे और भीड़ हुई छे तो बहुत सुंदर बात छे। एक बार यो तीन धारा देखियो छे आपको
0: जी
1: जब हम बद्रीनाथ मार्ग पर जन्दा
0: जी
1: ऋषिकेश बैठे तो हमन उनसे ये छुई लगा कि तीन धारा खास करी क्या खातिर प्रसिद्ध छे भले कि साहब खाना मिल वाला हाँ तो हम तो पता है कि सर गाड़ी की रुक दी पहले अब तो बाटो बाटो में
0: जी
1: होगी ना लेकिन पहले एक ही जगह छे वो बीच में लेकिन एक जो पुराना दुकानदार छे ना बुजुर्ग होगी 90 साल से एज का उनसे जब बात करी तो उन पता आई कि साहब सबसे खासियत क्या छे कि अगर 5,000 लोग एक साथ कखिम बाटा घाटा रुकण से यखम फंस जाने
0: जी
1: तो हम ऊते इकट्ठा खाणु खवा सकता या खासियत छे तीन धारा की और वो भी तजु।
0: बिल्कुल सही बात। और तीन धारा को खाना तो कौन ना रखो सुनी कुणिये भी आना जाना करो तो जियंदी रहो कि अरे इश करूँ कि सीधो तीन धारा पर रुक मैं
1: जी तो यही तरीके से बाकी और जितने भी पर्यटक स्थल छन वक सच बोली अपन की भीड़ तो होली
0: जी
1: लेकिन सबर करण होलू और व्यवस्थित रहन होल हमते धैर्य को परिचय देण होल जन के हम अक्सर अपन कार्यक्रम में रोज बोलता कि भाई अगर आप मेहमान छन तो हम मेजमान छवा लेकिन इन न्यू हुआ कि आप कुछ होरी रूप में हमारे समझ में आएला तो भाई जरे सिरड़ तो उठे छे ना है
0: बिल्कुल
1: ना। आपन चित्ती बोला नहीं बिटाना भल कई की बात करण और अगर जरिस कखिमा कोई देर होनी च सवेर होनी च तो आपन जरिस धैर्य रखण कि आप विषम भौगोलिक परिस्थितियों में छन
0: जी
1: पहाड़ चियो है ना।
0: बिल्कुल। और ध्यानी जी सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ कूड़े का साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना कई कि जैसे पहाड़ हमारे सुंदर सौ से कारण की थी कि भी जो ही प्लास्टिक या प्लास्टिक की बोतलें थौलिया सही ना रही पूछी जो तो सही सप्ती पाले फिर गई तब तो उसे पहाड़ भी तेज नहीं देखा जैसा मैं यहाँ कुछ कुछ शहर देखूँ सारे आना सुंदर भी उसपो लोग जागरूक भी सुंदरता राखें राख दे साफ सफाई लागें कर दे लेकिन पहाड़ों ब्याह में आपड़े साफ रखने हो
1: बिल्कुल ठीक बना आप किला के ये पूरी यात्रा और ये यात्रा काल का वास्ता सरकारन भी अपील करी छे कि स्वच्छ यातायात च
0: जी
1: और जो स्वच्छ माहौल च पर्यावरण च वही का दगड़ अगर यात्रा हुई ली तो बहुत सुंदर हाल तो ई बात है भी आप सभी लोग ध्यान रखें और हम तो ये बोना चाहूँ कि आपक यात्रा तभी मंगलकारी होली जब आप मंगल भावना का दगड़ी यूं पहाड़ों में आएला यूं तीर्थों में आएला
0: जी
1: है ना। श्रद्धा भाव ठीक छ आस्था भी आपक ठीक छ लेकिन जो व्यवहार छ अगर वो अमंगलकारी छ तो कन के बोल सकता हम है
0: बिल्कुल
1: ना। तो इनसे कि अब कार्यक्रम में ये बतौला कि आज एक विशेष बातचीत हम आपक खातिर लेके आया छुआ कि आज हम बात कला बाल श्रम से जुड़े कानूनी प्राविधान विषय पर और हमर दगड़ होला एडवोकेट भूपेंद्र सिंह लिंगवाल। तो अब इन करे जा कि गीत सुनाओ जरा हम तय
0: माधुरी भरतवाल और अनिल भारती के सरमुच सुनो यो प्यारो सो सैन्य गीत।

0: Future-proof your career with UPES Dehradun, India's AI-first university. Choose from 100+ AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 30% scholarships for all girls students. Applications close 29 April. Apply now at upes.ac.in.
1: जिंदगी अनमोल है, दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं, ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
2: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।

0: है गया अधूरा, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: गीत और रंतरबारों का बाद एक बार फिर कार्यक्रम में आपक स्वागत। आप सुनना चेना पूर्ण बोली भाषा को लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम जगत जखमा की गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार की बोली भाषा का दगड़ी रचियों बसियों चो यो कार्यक्रम जखमा आपक बात हूँ, हमर बात हूँ, गांव की बात हूँ, आम जन की बात हूँ और लोक की बात हूँ। तो अब हम आज एक बात करना, आज एक सख्त दिन चुबल हैं
2: जी। बिल्कुल ध्यान दीजिए, विश्व बाल श्रम विरोध दिवस हो और 2002 में जितकी शुरुआत होनी थी और एला के दूसिया नी 12 जून के दूसरा में ये तुक मनाऊ। इतका मनाना का जो कारण हो सा हो कि जो हमारे लाड़कोटे नरेंद्र नान तीनों क्यों बाल श्रम करने से रोकना हो।
0: आज एक अखबार पढ़ना चाहे उसमें मिल ये देखी कि दुई बच्चा जो है ना उनते बाल श्रम से मुक्त करेगा
2: जी।
0: तो आज एक दिन पर यह बहुत सुंदर खबर लगी मित कि चला साहब दुई बच्चों का भविष्य तो ठीक हो गया
2: जी।
0: तो ये माँ आज जबकि कानूनी प्राविधान छ बाल श्रम प्रतिबंधित छ, लेकिन वे का बाद भी अगर होनु छ तो उखमा समाज भी वे का खातिर जिम्मेदार छ, उनका बुए बाप भी जिम्मेदार हो सकते न कि लाइक वो रोकना नहीं चिन्ह बच्चों था। अब वो बोल देन कि ना साहब अमन रोटी का बटखा परिवार च सभी जरे जरे कमाला तो खा लेला है ना
2: जी।
0: लेकिन किला की जब भी दगड़ कानून जुड़ जान तो उखमा अगर कोई शिकायत कर लू, कोई कखी पहल कर लू, तो पक्की बात है कि फिर वे का कानूनी प्राविधान हमार समझ में आंदे।
2: बिल्कुल ध्यान जी, और मजबूरी अभी आदमी क्यों पो, लेकिन सबसे पहला हम क्यों चाहिए सोचना कि एक लड़को टू जिसका खेलनो कूदनो के दूसो या शिक्षा प्राप्त करने के दूसो तेतु समय चाहते से भी हम काम करा में तो सो आगे जाकर ये अपने भविष्य में का विकास कर दो।
0: देख विजय, हम तो ये मन था ना कि बच्चा का हाथ पर कलम होना चाहिए न कि औजार होना
2: चाहिए जी,
0: है ना। क्यों पता चलन जो कि खेलन च बढ़ाण च वो ना, बच्चा के हाथ पर कलम दिया, ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, जिनके कि भलू नागरिक भी बन जाओ और कह के अपन रोजगार से भी लग सक। तो हर माँ बाप की कोशिश तो हो देखा, लेकिन जन आप बना चाहे मजबूरी तो मजबूरी का खातिर भी देखा सरकार का कितना बाल उपयोगी कार्यक्रम छ, बाल कल्याण का कार्यक्रम छ, जखमा पढ़े बिल्कुल मुफ्त बच्चा, तो फिर किला नहीं भेजना है ना, खाणो भी मिलने हुआ, किताब भी आप तो मुफ्त में मिलना चाहिए ना। वो एक बात भी हम सोचना चाहोगे ना, तब तो भाई कहीं भी क्या कह सक। लेकिन बाल श्रम एक अपराध छ और वे का खातिर ही एक बाल श्रम कानून बन्यू छ। तो यही बाबत आज एक विशेष बातचीत हम कला बाल श्रम से जुड़े कानूनी प्राविधान विषय पर हमार दगड़ चंद बात करना एडवोकेट भूपेंद्र सिंह लिंगवाल लिया सुना। श्रोता भाई बंधु नमस्कार, मैं छो विनय ध्यानी और आज कार्यक्रम में मेरा दगड़ चंद एडवोकेट भूपेंद्र सिंह लिंगवाल। लिंगवाल साहब कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आप।
3: बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी जी।
0: आज आपक और हमारे बातचीत को विषय छ कि जो बाल मजदूरी से जुड़ा कानूनी प्राविधान छ वो क्या। तो पहले कानून की भाषा में बाल मजदूरी थे के रूप में देखा हम।
3: ध्यानी जी, सबसे पहले तो मैं ये साफ कर लो, कोई भी देश राष्ट्र की रीढ़ हूं बच्चा
0: जी,
3: और अगर बच्चा उनकी शिक्षा नीच स्वास्थ्य नीच तो वो राष्ट्र का भी तरक्की नहीं कर सको। और कई विषमताएं छ ना, खासकर हमारा देश में अभी भी देखे ना कि बाल मजदूरी छोटा बच्चों कुछ मजबूरी झनू की और कुछ लोगों को शोषण कर दन। तो ये सब तय देखी थे सन 1986 में सरकार ने एक कानून बनाया कि बाल मजदूरी नहीं होली, और बाल मजदूरी नहीं होली तो वो एक प्रभाव धीरे धीरे धीरे कम होने बैठी, ज्यादा नहीं चली वो। तो फिर वो कानून में जो बाल मजदूरी प्रतिशत छो वो माँ अमेंडमेंट करे गए और वो बहुत विस्तार से वे माँ समझाए गए और

0: कानून भी सख्त बनाएगी
1: अच्छा
0: कि 14 साल से कम का बच्चों तो आप कभी भी कह भी काम पर नहीं रख सकता, चाहे उनकी कोई मजबूरी हो या तुम्हारी कोई मजबूरी हो,
1: जी
0: तो हम उसे काम नहीं करवा सकता।
1: आपन कानून को संक्षिप्त परिचय दिया, अभी हम बहुत सारी बात इधर कर ला, लेकिन
0: जी
1: दुई शब्द आपन बोली बहुत सुंदर छेनू और ऊँ ही पहल हम तय देखण होल कत्ते दा बाल मजदूरी को स्वरूप जो छ वो यूं दुई शब्दों में उलझे जान और वो छ मजबूरी और शोषण।
0: जी
1: ये आपन बहुत बढ़िया बात बोल, तो कई रूप में समाज में मजबूरी में बच्चा काम करना चल और कई रूप में उनको शोषण होना चल।
0: सबसे बड़ी बात गरीबी छ, अशिक्षा छ। जब गरीबी छ हम बच्चों से पढ़ाई लिखाई नहीं सकना है और अपना दगड़ी दगड़ी ऊँटा भी काम पर लगे देना है, चाहे वो मजदूरी हो या कहे दुकान में हो, कहीं गाड़ी घोड़ा में हो या छोटा मोटा काम में लगे देना, यक तक कि कई बार हम होते बड़ा खतरनाक खतरनाक कामों में भी लगे देना जो कि बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में। यानी 14 से 18 साल का बच्चा काम कर सकता पर वो गंभीर प्रकृति का काम नहीं कर सकता, कि आप अपन बिल्डिंग में नहीं जान वक लगा लेना या खान में लगा ले या कहीं और जगह लगा लेना तो नहीं लगा सकता, वो काम कर सकता ना छोटा मोटा काम और वो भी अपड़ा।
1: जी बिल्कुल, जो घातक किस्म का होने जन के कारखाना छन जख्म की
0: जी जी
1: आग
0: पटाखा
1: बनाने वाली फैक्ट्री, ये कानून का बाद भी क्या इना मामला आज भी आना चाहिए कि हाँ साहब बाल मजदूरी के एक मामला पकड़े आला मैंने?
0: बिल्कुल आना छन ध्यान जी, और वे माँ सजा को भी बहुत बढ़िया प्रावधान कर रही हूँ। सजा वे माँ 2 साल तक है और अगर दूसरी बार कोई पकड़ेगी तो फिर सजा जो है 3 साल तक है।
1: अच्छा,
0: तो ये हिसाब से कानून तो बहुत सख्त बनी है पर थोड़ा सी वो यूज की सामाजिक रूप में हम अभी हुए तो समझ नहीं सा सकना, वे माँ हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हम का खी देखना चाहता हम तो श्रम विभाग पर शिकायत करनी चाहनी चाहिए या जिला प्रशासन से शिकायत करनी चाहनी चाहिए, तो आदि मुनि देखो और बाल मजदूरी एकदम समाप्त नहीं हो सकनी।
1: अच्छा, एक तरफ तो बाल श्रम तर रोकण का खातिर कड़ा कानून प्राविधान छन जन के अपन बताया एथर भी चर्चा कर ला, और एक तरफ बाल आयोग भी छ, यूं दुयो मा समानांतर कुछ ई तरह के काम बाल आयोग भी करत?
0: बाल आयोग को भी यू काम दियो छो तो वो देखन अगर कोई शिकायत जानी छ तो वे को निस्तारण कर जो दोषी छ वे सजा देन, पर वही छो में कि हम अवेयरनेस नहीं अभी नहीं तो एक फिर चाइल्ड हेल्पलाइन छ सरकार एक मनसा साफ छ और व्यवस्था करी छ कि हम चाइल्ड हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकता, लेकिन कुछ नहीं छोड़ू।
1: अच्छा, कुछ नहीं होने का बाद भी अगर हम ये सोचदा कि लोग ई सोचिक चुप हो जाना चन, जबकि अगर बाल मजदूरी का खिमा होनु च बच्चों को शोषण होनु च, तो क्या ये बाबत उनका बुए बाब आसपास का लोग कोई स्वयंसेवी संगठन क्या ये की शिकायत कर सकत, तो वो तरीका क्या छ?
0: ध्यान जी वन तो कई एनजीओ भी काम करना है पर रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं अभी तक समझ पर आणु के लेके हम देखदा तमाम जन होटल व्यवसाय छन तो होटलों में भी बच्चा भाड़ा भी मठाना छन खाना भी बनाना छन 14 साल से कम का बच्चा सड़क पर भी काम करना छन, शिकायत तो ये बहुत आसान तरीका से हुन। मैं अभी आप तो बताऊँ जो कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन छ फ्लैश करें सरकार की, कोई भी आदिम चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर सको। जो ये एनजीओ वगैरह छ ना तो ये बाल आयोग में बाल संरक्षण आयोग छ कुछ नहीं, एक सादी एप्लीकेशन पकड़ने का बावजूद भी अगर हमका खींच जाना रेड मरदा हम ही तो हम वे बच्चा तो छुड़ा सकता हूँ बेटी और वे की शिकायत हम कर सकता हूँ साहब फलाना फलाना बच्चा फलाने जगह था फलाना आदमी से काम ले रहा था, तो वह पर कार्रवाई होली निश्चित रूप से।
1: अच्छा, बाल मजदूरी को लिंगवाल जी एक स्वरूप और छ और आपन भी देखे और सारा समाज देखो छ कि जो ज्यादातर बच्चा छ वो कूड़ा का त्यार उठादा मिलना छ,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उनसे कोई काम नहीं लेनो
0: ना,
1: लेकिन वो फिर भी कना छ, तो क्या ये तभी हम बाल मजदूरी का तौर पर?
0: बिल्कुल बाल मजदूरी छ, कि लेके सरकार की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

0: कि बच्चों की शिक्षा हो, उनको स्वास्थ्य हो, तो वैसे तो उनकी शिक्षा पर भी और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ना हो। जो ये कूड़ा बिन्ना है ना, वो बहुत बढ़िया बात करे अपन, तो ककरा की उनकी शिक्षा, कखों की स्वास्थ्य,
1: बिल्कुल
0: विपरीत प्रभाव पड़।
1: मूल अधिकार है नहीं में,
0: तो संविधान तो जो एक स्वरूप दी हो कि बच्चों की सुरक्षा, तो ये तो सुरक्षा छह ही नहीं,
1: बिल्कुल
0: ये का वास्ता तो काम करना पड़ लो।
1: तो इन दिशा में कन के फिर काम करे जा कि जब न तो कोई शिकायत करना चाहू बच्चों की, न उनका बोई बाप कोई बात बोना छे, और बोना छे कि ना साहब अगर ये इन्हीं कारला तो हमारे रोजी रोटी कन के चले।
0: सवाल ये हो कि श्रम विभाग से तो दायित्व तो श्रम विभाग हो, अपने प्रदेश में ले तो बहुत बड़ो विभाग है, उन भी तो देखने चलो, उनका सुपरवाइजर छन, उनका कारिंदा छन,
1: इंस्पेक्टर छन, कतई
0: कई छन, या नगर पालिका छन, नगर निगम छन, उनको दायित्व भी छ कि कखियन बाल शोषण तो नहीं होनो।
1: कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने, कई इना समाज का समाज सेवियों ने भी प्रयास करें कि जो बच्चा कूड़ा उठाना छे न, यूं था चलो इनका ला शिक्षा से जोड़ ला और कुछ ना कुछ उनका भले का खाते
0: जी
1: चला।
0: जी जी
1: लेकिन सुना मन यू की बुए बाबा खाजन के साहब हमार तो चुल बुझ जा लो, अगर हमन यूं था बच्चा पढ़ने लगेला तो क्या बोलो।
0: हाँ।
1: तो इन माँ कनके की सुधार कर सकते हैं जबकि लोग करण चाहना छे
0: ना ना, वे में तो कानून में भी बदलाव लाना चाहना छे। अगर बच्चों का माँ बाप इन्वॉल्व छे वे माँ, तो सजा को प्रावधान कर चाहना छे।
1: बिल्कुल
0: कखी ना कखी सख्ती कर पड़ ली, बिना भाई को तो काम चल नहीं सको, तो ऊँता भी दगड़ा दगड़ी दोषी बनाना चाहना छे,
1: उन
0: पर भी मुकदमा चल चाहना छे, तब जाके तो थोड़ा सी रुक लो।
1: बाल मजदूरी से जुड़े प्राविधानों पर और कड़ा प्राविधानों पर, सजा को प्राविधान पर, ये पर आप चर्चा कर दें तो कै कै रूप में और को वो प्राविधान छन कानूनी जय पर कि हम बाल मजदूरी पर कार्यवाही करना और अदालतों में आयोग में प्रक्रिया चलत।
0: ध्यान जी, सरकार की तरफ से और जो यो बाल संरक्षण अधिनियम बनियों ये बहुत सख्त और कड़ो बनियों, यख तक कि ये माँ गैर जमानती अपराध मान्यो चो, अगर कखी दिखे जाओ
1: अच्छा।
0: तो गैर जमानती छे, पुलिस सीधा वो अरेस्ट करी तैयार कोर्ट में पेश कर ली, पुलिस जमानत नहीं दे सकी। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य में सब में लगता वही बात होनी ना कि कोई अपनी जिम्मेदारी तय नहीं समझो, और वैसे बच्चों को बड़ो अहित होनो छे, चाहे पहाड़ों में हो या मैदानी क्षेत्रों में, करीब करीब हर जगह दिखे, और खासकर जन्मदिन बता आप तक कि होटलों में
1: सबसे ज्यादा
0: वक्शन बच्चा, तो थोड़ी सी सजग होने जरूरत है, चाहे विभागीय कर्मचारी अधिकारी हो चाहे एनजीओ हो, क्योंकि कहना कह तरीके से एनजीओ भी सरकार दी जुड़े हैं ये मामले में, पर वो भी इतना सक्रिय नहीं है, उनका भी आंख बंद करा।
1: अच्छा, ये माँ सिर्फ सजग को प्राविधान चाहिए या जुर्मान भी चाहिए?
0: ये मत जुर्माना बीच सजा बीच,
1: अच्छा
0: दुई चीज हो सकता ना, या सजा सजा होली या जुर्माना होलो, और या दुई वो मजिस्ट्रेट का विकल्प पर।
1: अच्छा, तो के रूप में अगर कखी हम ही देखता तो जो शिकायत वो कुछ कानूनी प्रक्रिया च वो के रूप में चले, अगर हमन कखी देखा के साहब ये कारखाना में जी,
0: एक तो सीधा सीधा आप आयोग से बाल संरक्षण आयोग वह आप दे सकते शिकायत, वो कार्रवाई कर ला। अगर आपन पुलिस में दे ली, थाना में दे ली, तो थाना वाला चालान करने का बाद वे तो कोर्ट में भेज ला, संबंधित कोर्ट में वे तो जमानत करवाना पड़ ली, वो तो हिरासत में लिए जा लो बारी, कहला कि गैर जमानती अपराध तो जमानत करवा लो, फिर हियरिंग होली, फिर कोर्ट देख लो, और अगर सत्यता आनी है माँ तो 2 साल तक है सजा चुए माँ।
1: अच्छा,
0: वो कोर्ट की मर्जी पर चुके 2 साल तक है सजा दे दो, या फिर 2,000 रुपये तक जुर्माना भी, तो सजा और जुर्माना दुई भी हो सकता, या सजा ही सजा हो जाली या जुर्माने जुर्माना हो।
1: कुल मिला एक बात यह कि रास्ता बहुत छन, कानून भी बहुत छन, लेकिन जन के अपन शुरुआत में ही बोल छा कि वो एक जो प्रतिफल छ वो समय में नहीं आंदो, और तब हम तो ये चिंता करना पड़ देन कि कन कई हम बाल मजदूरी तय रोक सका। तो जागरूक होन होल समाज तक भी और विभागों तक भी जागरूक होन होल कि भाई अगर ये कानून बढ़ियों चाहिए तो ये को पालन करे जा, और जो

0: बचपन हमारा बच्चों को वो मजदूरी में ना बल्कि शिक्षा में से
1: बिल्कुल
0: जोड़ो।
1: बिल्कुल
0: तो लिंगवाल जी, आप
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम में आए और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा बाल मजदूरी से जुड़ा कानूनी प्राविधान पर आपक दगड़ हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी जी।
0: श्रोता भाई बंधु, अभी हम एडवोकेट भूपेंद्र सिंह लिंगवाल जी का दगड़ बातचीत करना चाहे, विषय छाया बाल श्रम से जुड़ा विभिन्न कानूनी प्राविधान। अब देखा, जब कानून आन तो दंड बिच और अपार सजग भी प्राविधान छ,
1: बिल्कुल
0: वे का बाद भी कखी न कखी ये जो समस्याएं छन ये जीवन के लिए रहने ना।
1: ध्यान जी, सबसे बड़ी बात तो ऐसी कि जो हमारा समाज भी हो तेतु भी जागरूक चाहिए ही है।
0: सोच भी बदलन हुई ना,
1: जी
0: जागरूकता का
1: बिल्कुल
0: दगड़ी वो भी
1: बिल्कुल
0: जरूर छ कि हम सोच तो रखा हुआ कि ना ना रे ना बच्चों था बाल श्रम डगर।
1: जी। जे अरे तू कि बोलूँ बताऊँ यहाँ पे लाड़कोटी नेंद्र लाड़कोटी काम कर दूँ भेजूँ, लेकिन जे कुनी समाज का आदमी हमारे जागरूक हो सो पहले तसी माँ बापू को समझाऊँ कि ना यह काम करिया नु कोणिक तू कर कम खाया कोणिक जेली कर ऐसी लाड़कोटे पढ़ा अच्छा भण, लेकिन जब सो मानी ना तेसे माँ बाप तेस के तो शिकायत तेस की कुकी उड़ते करो को पुलिस थाने पुनी करो कि ना यो नेंद्राओ ऐसे भी ये भी काम कराना ना थी, तो समाज जागरूक होना जरूरी हो।
0: ये जागरूकता को परिचय यह बात है कि बहुत सारा सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्था,
1: जी
0: लोग कना चिन्हा इन बात नहीं चुनता भी रेखांकित करण
1: बिल्कुल
0: जरूरी चाहता है। वो लोग क्या कर दें कि जो खास करी कि जो गलियों में या कूड़ा वूड़ा बिनना छ ना, ऊँत लेन देन
1: जी
0: और ऊँत पढ़ाई करें देन
1: लेकिन
0: उनके, और जो बाल श्रम छ या वो जो कना छन वे काम से ऊँत मुक्त करी के कुछ और भल
1: जी
0: काम में लगा के या पढ़ाई कराए के। सबसे बड़ा काम छ कि ऊँत पढ़े, शिक्षा मिल जा। जब ऊँत शिक्षा मिलल तो समझ ला कि ना भाई हम गलत रास्ता पर छाए, चलो पढ़ लिख लियो ला।
1: जी
0: और ये का बहुत सारा उदाहरण छन। तो आज ये बाल श्रम विरोध दिवस का ये अवसर पर हम ये भी बोलला कि सच में वो सभी लोग भी बधाई का पात्र छन जो कि बाल श्रम कम करने में अपन योगदान देना छन, है ना। तो आप इनकर था कि कुमाऊँ छोड़ चलना।
1: जी बिल्कुल कुमाऊँ मुझे एक हरीश सिंह मेहरा के सरमुज आप लोगों छपेली सुनाओ तो आओ सुन।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
8: The all-new Nissan Revive अब CNG में
9: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर KG की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए निसान ग्रेविड CNG के साथ 7 सीटर, जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
8: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निसान डीलरशिप पे जाएं। शर्ते लागू।
10: संपर्क करें पाल निसान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
11: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
12: श्रोताओं अभी आप लोगों सुने किच रेबार और रेबार से पहले लो तो सुनी हरि सिंह मेहरा के स्वर मौज एक छपेली गीत।
13: घड़े एक में आपता हम जौन सरकार छोड़ भी लीजों ला जग बटे का शुरुआत कर छ कि लकी अपार दिग्विजय चौहान जी वकी बिठाना छे तो फिर जान जान फिर हम वकी चल जाओ ला। तो हम ई बोना छ कि साहब ये बात तो पर्यटकों को जमवाड़ा छे हमारे चक्राता क्षेत्र में जौनसार की ऊंची पहाड़ियों में और मसूरी से लेके अपार धनोल्टी चंबा टिहरी बोना बिछन की कोई अड़ लगे साहब।
12: बिल्कुल
13: है ना। और मौसम इन लगनू पहाड़ माते के सच एक मसौना गया है ना
12: जी।
13: कोई लगी तो पता नहीं चलना चाहिए कि अब हार कुगो आलू कन आलू।

0: एकदम से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। हालांकि ठंड और गर्म दुई हमेशा एक राल हाँ,
1: जी
0: केवल घाम चे तो केवल बरखा यू होलू। लेकिन हाँ, अभी बटे की जो आपदा प्रबंधन का काम छ
1: जी
0: ऊपर जोर दिए जान छ।
1: बिल्कुल, और तैयार चाह रही हूँ हमारा जो आपदा प्रबंधन का काम समारोह, और हमारे जो खासकर आपड़े जो लोग ज्यू पहाड़ गए रहो और त्यू ये रही तैयार रही चाह रही है कि हर परिस्थिति का वास्ते तैयार रहो, सुबह की चाहे भूस्खलन या बाढ़ या भूकंप या बारिश के कारण अतिवृष्टि जब हो तो बादल फटो, सो या आपड़े भी सुरक्षित रखने, आपड़े आसपास के गांव त्यू भी सुरक्षित रखने, सबका ध्यान रखना हो। और सबसे बड़ी बात तो से जी कि प्रशासन जब पूछोला तभी तो रेस्क्यू का कार्य शुरू होता हो, लेकिन सबसे पहले रेस्क्यू जो करने वाले हो से हमें हो तो तेतुक हमेशा तैयार रहे, खासकर जो हमारे नौजवान दौगड़िया।
0: बिल्कुल ठीक, भले रहबार छे भले हाथ जोड़े छे कि भाई आप लोग अगर गांव में छे ना तो आपदा का ये मौका पर सबसे पहले गांव का लोग होता है एथरान छे। और हम तो बोलना चाहो ना कि आपदा पूर्व प्रबंधन क्या हूं पता कि भाई हम बगत पर अगर हमार घर गांव दूर छे तो राशन धर दियो हम
1: जी
0: पहले का लोग धरदा चाहे 6 6 महीना का राशन कि आप 3 महीना 4 महीना बरखल रेण बारे
1: बिल्कुल
0: पहले ले आओ। यूं दिन प्रबंधन का काम। अब क्या कह सकता हम कि हमारे जो न्यार द्वार छ हमारे घर कूड़ा छ उनका पैथर अगर बोला हम नि देखना छो वहाँ तो पानी इकट्ठा हूँ और
1: जी
0: फिर भूस्खलन से कहीं ना कहीं आपक घोर तय आपक छनोड़ तय नुकसान हुई सकत। तो ईश्वर वो बाटा घाटा साफ कहरा दी गूल उल निकाल दो जिन के
1: जी
0: पानी की निकासी हुए जा है ना। और जो संवेदनशील इलाका छन उनका बाबत जागरूक रहा है ना। जग जग सरकार न बोलियों छो प्रशासन न बोलियों छो आपदा प्रबंधन विभाग न बोलियों छो कि भाई यू क्षेत्र जो छो यू संवेदनशील छो तो वक्त किला रहना
1: बिल्कुल
0: है ना। तो यूं सभी हाथ जोड़े का दगड़ फिर बस गाल की सुई लगोला जन के मन पहले बताया कि आजकल ऊंचाई वाला इलाकों में खूब झमाझम बरखा भी होने से कुयड़ भी लग्यू। तो तनी एक मजल दो गीत च खुदेड़ीस गीत च सौणप गीत च बरखो गीत च आवा सुनदा जौनसारी गीत स्वर च रेशमा शाह को।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न जिलों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई और देहरादून में 15 जून से 15 जुलाई तक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आज देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की नीति

0: तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण की रही है। उन्होंने कहा कि जनधन योजना, आयुष्मान भारत और अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं ने आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है।
1: आज देश के अंदर 41 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 4 करोड़ ऐसे परिवारों को पक्के मकान मिले, 11 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला और अनेक योजनाएं, चाहे वो जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, इस सभी योजनाओं ने सामान्य आदमी के जीवन में एक जो परिवर्तन, एक वास्तविक बदलाव इन योजनाओं से आया और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला।
0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न जिलों में पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बागेश्वर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विश्वास, विकास और राष्ट्रवाद की भावना के साथ कार्य कर रही है।
2: उपलब्धि हमारी यह है कि हमने हर राजस्व गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, हर छोटे छोटे तोगों तक बिजली पहुंचाने का काम किया और इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमने हर घर तक यानी हर राजस्व गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया और इन 12 वर्षों में 2014 के बाद लकड़ी के चूल्हे गांव गांव में जलाए जाते थे, आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हर परिवार को हमने गैस के चूल्हे देने के काम किए, गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, ये हमारी उपलब्धि है। और इन 12 वर्षों में देश से आतंकवाद को हमने खत्म करने का काम किया।
0: उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पिथौरागढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने का कार्य किया गया है।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल अब पूर्ण हुए हैं और ये 12 साल की जो यात्रा रही है पूरी तरीके से यादगारपरक रही है। इस यात्रा का हर एक व्यक्ति भारत के रूप में किसी न किसी योजना से, किसी न किसी प्रकार से, जन कल्याण से उस यात्रा में वो सहभागी रहा है।
0: उधर रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में भी कैबिनेट मंत्रियों ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से साझा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची। जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। श्रीमती मुर्मू कल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस बार की पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक होने जा रही है। पहली बार महिला कैडेट्स पुरुष कैडेट्स के साथ कदमताल करती हुई नजर आएंगी। इस भव्य समारोह में 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स अंतिम पग भरकर भारतीय सेना के अधिकारी बनेंगे।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। देहरादून जिले की सभी 401 ग्राम पंचायतों और 7 स्थानीय शहरी निकायों में आगामी 15 जून से 15 जुलाई तक विभिन्न बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान संचालित किया जाएगा। ये विशेष अभियान केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को बैंकिंग, बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
5: अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बैंक खातों की रीकेवाईसी, नामांकन अद्यतन और डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया जाएगा। अभियान का शुभारंभ देहरादून जिले में सहसपुर विकासखंड

0: की ग्राम पंचायत बुढ़ी से किया जाएगा। शिविर के दौरान बैंक अधिकारी लोगों को विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की जानकारी देंगे। पात्र लाभार्थियों के नए बैंक खाते खोले जाएंगे तथा बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी कराई जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा का लाभ मिल सके। गौरतलब है कि इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा चयनित राज्यों की ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में वित्तीय समावेशन योजनाओं की 100% पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों और शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
1: दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मूल रूप से उत्तराखंड निवासी जसपाल राणा के निधन की खबर से खेल जगत और उत्तराखंड में शोक की लहर है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि निशानेबाजी के क्षेत्र में जसपाल राणा का असाधारण योगदान, ऐतिहासिक उपलब्धियों और युवा खिलाड़ियों को दी गई प्रेरणा ने भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन और जन जागरूकता के उद्देश्य से पौड़ी कलेक्ट्रेट सभागार में आज विशेष योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही केंद्र सरकार के नमस्ते योग ऐप के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों को योग के महत्व, उसकी वैज्ञानिक उपयोगिता और दैनिक जीवन में योग को अपनाने के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. शैलेंद्र पांडे ने कहा कि योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखकर दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है ताकि स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया जा सके।
2: आयुष मंत्रालय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार हमने वाइब्रेक ऐप के बारे में जानकारी दी और हम लोगों ने सभी लोगों ने बैठ करके जिला अधिकारी कार्यालय में वाइब्रेक ऐप का योग किया और इसके कारण हम छोटे मोटे तनाव और मानसिक स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको शामिल करेंगे जिससे हम लोग की लाइफ सुदृढ़ और आसान बन सके।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न जिलों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई और देहरादून में 15 जून से 15 जुलाई तक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार पछी आप लोगों का स्वागत हो कार्यक्रम ग्राम जगत मुझ आऊ दिग्विजय चौहान। श्रोताओं, देश का दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का निधन रहा। इसके मृत्यु की खबर से पूरे खेल जगत, उत्तराखंड और देशमुंज शोक की लहर हो। जसपाल राणा का जन्म 28 जून 1976 मुंज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में होना था। यो मूल रूप से नैनबाग को गाँव चिलामो तीगो का रोणवाड़ा हो। इन्हें अपने जीवन काल मुंज देश के वास्ते देश दुनिया दे भरी सारे प्रतियोगिताओं मुंज पदक ले, जित मुंज स्वर्ण पदक भी शामिल हो। जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम जैसे बड़ी प्रतियोगिताओं में भी भारत का तिरंगा लहरा। ऐसी एक साल 1994 मुझ अर्जुन पुरस्कार, साल 1997 मुझ पद्मश्री और साल 2020 मुझ द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला था। खिलाड़ी के रूप में सफलता के बाद जसपाल राणा कोचिंग मुझ कदम रखा और राष्ट्रीय जूनियर टीम का जो निशानेबाजी की टीम थी तित का कोच बजाओ और युवाओं को निशानेबाजी के वास्ते प्रेरित करे जो लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत हो और हमेशा रोंदा हो, ऐसी हमारे तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो श्रोताओं, आओ कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ और अनिशा गुसाई के स्वर में आप लोग सुनाऊँ एक खुदेड़ गीत। तो आओ सुनो।

0: अभी आप सुन रहे थे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 6:50 होने को है। आइए सुनते हैं गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटन गढ़वाली में प्रादेश का खबरों का दगड़ी में सुनील नेगी।
2: जिंदगी में आता है लेकिन इंसान
1: पहली खास खबर, केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूरा होना का मौका पर प्रदेश का कैबिनेट मंत्रियों अलग अलग जिलों में सरकार की गिनाई सफलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों का दौरा पर देहरादून पहुंची। श्री मुर्मू घोल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में खास मेहमान का रूप में शामिल होली। दिग्गज निशानची और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा को निधन। देश का दगड़ी उत्तराखंड में दुखे की लहर। और गैर कानूनी निर्माण तय लेकिन मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई एक सार जारी। खबर एक छोड़ बिटिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगुवाई में केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूरा होना का मौका पर आज प्रदेश का कैबिनेट मंत्रियों अलग अलग जिलों में पत्रकारों दगड़ी हुई बथ छुई बत कैरिकन सरकार की सफलता गिनाए। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडन बागेश्वर में प्रेस वार्ता कैरिकन केंद्र सरकार की सफलताओं ते गिणान बेरिम बोली कि देश बिना रुकिया विकास और तरक्की का बाटो पर अग्ने चलन छ। उन बोली कि मोदी सरकार विश्वास तरक्की और देश भक्त की भावना का दगड़ी कार्य करनी छ।
3: उपलब्धि हमारी यह है कि हमने हर राजस्व गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, हर छोटे छोटे टोकों तक बिजली पहुंचाने का काम किया और इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमने हर घर तक यानी हर राजस्व गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया। और इन 12 वर्षों में 2014 के बाद लकड़ी के चूल्हे गाँव गाँव में जलाए जाते थे, आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हर परिवार को हमने गैस के चूल्हे देने के काम किए, गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया। ये हमारी उपलब्धि है और इन 12 वर्षों में देश से आतंकवाद को हमने खत्म करने का काम किया।
1: उन्हें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यन पिथौरागढ़ में रचे गए पत्रकारों दगड़ी बातचीत में केंद्र व राज्य सरकार की लोक भलाई की योजना और इतिहास में दर्ज अनोखी सफलताओं को लेखा जोखत है सामने रख। उन बोली कि पिछले 12 वर्षों में देशन उन्नति की नई मिसाल कायम करीन और समाज का आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति तय मजबूत करण कार्य करे गए।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल अब पूर्ण हुए हैं और ये 12 साल की जो यात्रा रही है पूरी तरीके से विकास परक रही है। इस यात्रा का हर एक व्यक्ति भारत के रूप में किसी न किसी योजना से किसी न किसी प्रकार से जन कल्याण से उस यात्रा में वो सहभागी रहा है।
1: उन्हें रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी टिहरी और अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्रियों केंद्र और राज्य सरकार की सफलताओं ते खुलकर बताए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपड़ा 2 दिनों का दौरा पर देहरादून पहुंची। जौलीग्रांट हवाई अड्डा पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन दगड़ी अन्य बड़ा अधिकारियों ते स्वागत कारी। श्रीमती मुर्मू घोल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में खास मेहमान का रूप में शामिल होली। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में घोल हूण वाली पासिंग आउट परेड में यी दफा बीजा बथों में इतिहास में दर्ज अनोखी हूण वाली च। पहली दफा महिला कैडेट्स पुरुष कैडेट्स का दगड़ी कदम ताल कर दी हुई नजर आली। ये बड़ू जलसा में 515 पुरुष और महिला कैडेट्स आखिरी कदम धैरिकन भारतीय सेना का अधिकारी बनला। देहरादून जिला में खास गहरी जांच पड़ताल SIR की मुहिम का भीतर मतदाता सत्यापन को कार्य तेजी से चलन च। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की टीम घर घर जैकन गिनती प्रपत्रों ते बटनी च। अभी तक जिला में 1,33,000 से अधिक गणना प्रपत्र बटे गए। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान बताई कि SIR मुहिम का भीतर घर घर जैकन गणना प्रपत्र बटे जाना छन और वोट देने वालों को जांच परख करे जाना छ। उन बोली कि सरकारी तंत्र को पहल काम च कि संगति पात्र वोट देने वालों तक पहुंचीकन तरीका से मजबूत ढंग से पूर्व करे जा।
5: SIR को लेके हम लोगों की मल्टीपल ECI के लेवल पे भी जो डायरेक्शंस मिले हैं या CEO ऑफिस की तरफ से डायरेक्शंस मिले हैं, वो नीचे डिसेमिनेट कर दिए गए हैं। और हाउस टू हाउस सर्वे जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, उसको भी हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। संबंध में कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो मेरे द्वारा ERO या SDMs को बता दिया गया है कि वो कंटिन्यूअसली पॉलिटिकल पार्टीज के टच में रहें और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में और जो ECI की डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंगली ही फर्दर इस पूरे हाउस टू हाउस सर्वे को कंडक्ट किया।
6: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: दिग्गज निशाणची और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा को ब्याली रात नई दिल्ली में एक अस्पताल में मृत्यु हो गया। वे 49 वर्षों का छाई जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशाणची का गुरु का रूप में कार्य करना छा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहन जसपाल राणा की मृत्यु पर गहरू दुख जताई। मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला जसपाल राणा की मृत्यु की खबर से खेल संसार में और उत्तराखंड में दुख का सैलाब छ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन जसपाल राणा का अचानक मृत्यु पर दुख जताई। उन बोली कि निशाणची का क्षेत्र में जसपाल राणा को अनोखो गजब का योगदान, इतिहास में दर्ज अनोखी सफलता और जवान खिलाड़ियों ते दिया सीखण भारत ते संसार में देश को मान बढ़ा लो। गैर कानूनी निर्माण ते लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्यवाही एक सार चलनी छ। प्राधिकरण का उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने बताई कि गैर कानूनी निर्माण के अलावा गैर कानूनी तरीका से जमीन बटन और कारोबार करने वाला भवनों में लिफ्ट, आग पर काबू पाण वाला और CCTV की व्यवस्थाओं की स्थिति की जांच करे जाना चाहिए, जैसे सुरक्षा का मानदंड बढ़िया रहन और कै भी बुरी घटना से बचे जैसा।
7: ये दो तरह की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें, जैसा मैंने पहले भी बताया था। एक तो इस वर्ष की आपदा में जहाँ जहाँ नाले खालों में अतिक्रमण था और जो बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ, उस पर हमने बहुत सख्ती से कहा है कि जहाँ भी जल स्रोत है उस पर निर्माण कार्य न होने दिया जाए या अवैध निर्माण जो है उनको हटाया जाए। इसके साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे व्यावसायिक निर्माण बड़े स्तर पर हो रहे हैं उनके जाँच के साथ ही साथ हमने जो उनमें लिफ्ट प्रयोग हो रही है, जो उनके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, अग्निशमन की वहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं, CCTV कैमरे ठीक हैं कि नहीं, उसका भी अलग से हमने निर्देश जारी किया है कि सभी लोग जितने भी इस तरह के कमर्शियल हैं जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा होती है, वो सुरक्षा के जो पहलू हैं, जो मानक हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनकी भी जांच करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल आयोजन और लाखों ते चैतवाल का उद्देश्य से पौड़ी कलेक्ट्रेट सभागार में आज विशेष योग जागरूकता कार्यक्रम रचे गए। ये मौका पर अधिकारियों और कर्मचारियों ते बनी बनी का योग आसन और प्राणायाम को रियाज करे गया। दगड़म केंद्र सरकार का नमस्कार योग ऐप का दगड़ी अधिकारियों और कर्मचारियों ते योग का फायदा, वे की वैज्ञानिक उपयोगिता और रोजमर्रा का जीवन में योग ते अपनाण का फायदों का बारे में खुली जानकारी दिए गए। जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र पांडे ने बोली कि योग न केवल एक दिन तक सीमित रखिकन रोजमर्रा को अलग हिस्सा बनाण आवश्यक छ, जैसे स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र को निर्माण में सहयोग दिए जा सक।
8: आयुष मंत्रालय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार हमने वाइब्रेक ऐप के बारे में जानकारी दी और हम लोगों ने सभी लोगों ने बैठ करके जिला अधिकारी कार्यालय में वाइब्रेक ऐप का योग किया और इसके कारण हम छोटे मोटे तनाव और मानसिक स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको शामिल करेंगे जिससे हम लोग की लाइफ सुदृढ़ और आसान बन सके।
1: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का अवसर पर आज पौड़ी जिला का सरस्वती शिशु मंदिर क्यों कालेश्वर में जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ बेटी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे गया। ये मौके पर छात्रों छात्राओं ते बाल अधिकारों, बाल संरक्षण कानूनों और बाल श्रम का गलत परिणामों की खुली जानकारी दिए गए। दगड़म ऊँ ते अपना अधिकारों का प्रति चुस्त रहने की और समाज में जागरूकता प्रचारित करने को प्रेरित करे गया। वक्ताओं ने बोली कि जागरूक समाज और शिक्षित समुदाय ही बाल श्रम जनी कुप्रथा ते समाप्त कर सकता छ। अंत में खास समाचार एक बार दोबारा से। केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूरा होने का मौका पर प्रदेश का कैबिनेट मंत्रियों ने अलग अलग जिलों में सरकार की गिनाई सफलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वि दिनों का दौरा पर देहरादून पहुंची। श्रीमती मुर्मू घोल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में खास मेहमान का रूप में होली शामिल। दिग्गज निशाण जी और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा को निधन। देश का दगड़ी उत्तराखंड में दुख की लहर और गैर कानूनी निर्माण ते लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई एक सार जारी। ये का दगड़ी गढ़वाली में प्रदेश को खबरों को युवक समाप्त हुन। नमस्कार।
0: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब किसान साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान साथियों राम राम। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत, और आज आपके साथ मैं हूं कुलदीप सिंह। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां देते हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे किसान साथी

0: नई नई जानकारी हासिल कर अपनी फसल से अच्छी आय प्राप्त करें। इसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे होम स्टे योजना। इसके अलावा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर भी चर्चा करेंगे। वार्ता का विषय रहेगा बाल श्रम और हमारा समाज। श्रोताओं, हमारे देश के दिग्गज निशानेबाज और जाने माने शूटिंग कोच जसपाल राणा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज उनका निधन हो गया है। वो मूल रूप से उत्तरकाशी के रहने वाले थे। जसपाल राणा हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के साथ लौटे थे। वापसी की फ्लाइट में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली में सीधे मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया है। श्रोताओं, वह 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने एशियन गेम्स में भारत के लिए कई स्वर्ण पदक जीते और भारत का नाम बढ़ाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में उन्होंने 600 से अधिक पद अर्जित किए हैं। साथियों, भारतीय शूटिंग में उनके योगदान के लिए 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1997 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2020 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। निशानेबाज से संन्यास लेने के बाद वे बतौर कोच युवाओं को तराश रहे थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, साथ ही पूरे खेल जगत ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथियों, कार्यक्रम में अभी इतना ही, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
4: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
0: श्रोताओं, प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनमें प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत समाहित है, लेकिन उचित आवास और भोजन सुविधाओं के अभाव के कारण पर्यटक इन स्थलों का आनंद लेने से वंचित रह जाते हैं। अतिथि उत्तराखंड गृह आवास योजना के माध्यम से राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ सुदूर पर्यटन क्षेत्रों में भी पर्यटकों को आकर्षित करने, गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधाओं को बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीणों और दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना यानी होम स्टे शुरू की है। इसके तहत घर पर ही होम स्टे बनाने के लिए सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जा रही है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सरकार अलग अलग वित्तीय सहायता दे रही है। होम स्टे उसी आवासीय परिसर में बनाया जाना चाहिए जहां मालिक का परिवार स्वयं रहता है। एक होम स्टे में अधिकतम 8 से 10 कमरे तक किराए पर दिए जा सकते हैं, जिसमें अधिकतम 24 बेड हो सकते हैं। हर कमरे में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बाथरूम होना अनिवार्य है। सामुदायिक पर्यटन मॉडल के तहत 8 से 10 होम स्टे मिलकर पूरे गांव या गांव के समूह को एक पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपको अपना पहचान पत्र, संपत्ति का प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन और बिजली पानी का बिल जैसे दस्तावेज तैयार रखने होते हैं। पंजीकरण कैसे करना है और फॉर्म कहाँ से ले सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप उत्तराखंड पर्यटन होम स्टे पोर्टल पर भी विजिट कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आपके मनोरंजन का, सुनते हैं लोकगीत, लेकिन उससे पहले सुनिए ये जरूरी संदेश।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: श्रोताओं, इस लोकगीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे होम स्टे योजना पर। अब आपकी भेंट करवाते हैं आशुतोष वर्मा जी से। वार्ता का विषय है बाल श्रम और हमारा समाज।
1: बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। इस भविष्य की आधारशिला वर्तमान में ही रखी जाती है। माता पिता अपने बच्चों के जीवन को अच्छा से अच्छा बनाना चाहते हैं, वे इसके लिए पूरी कोशिश भी करते हैं। माता पिता का ज़्यादा समय अपने बच्चों के लिए बीतता है, परंतु यदि उनका बच्चे के साथ पारस्परिक लगाव सही रूप से नहीं है तो वह मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। बच्चों में परिवार का असर पड़ता है। परिवार वह संस्था है जो बच्चों को जन्म देकर उसका पालन पोषण कर उसे मनोवैज्ञानिक संरक्षण देती है, उसे समाज और राष्ट्र के योग्य बनाती है। परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा ही सामाजिक संबंधों, व्यवस्थाओं और मान्यताओं को प्रतिष्ठा देकर अपने आप को उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ढालता है। परंतु फिर भी देखा जाता है कि बच्चों का बचपन किन्हीं कारणों से पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच फंस कर रह जाता है। जो उम्र मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ने की थी, वह उम्र कहीं खो जाती है। समय से पहले ही बच्चे उस वातावरण से दूर हो जाते हैं जो उसको स्वच्छंद और खुले माहौल में मिलना चाहिए था। उनका बचपन सीखने, खेलने और आनंद लेने का समय होता है। इस अवस्था में मन में कोई छल कपट नहीं होता। यह जीवन का वह बुनियादी समय होता है जब बच्चे के शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव पड़ती है। परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चों के काम करने पर मजबूर कर देती है और बच्चा बाल श्रम के चक्रव्यूह में फंस जाता है। यह बाल श्रम एक ऐसी समस्या है जो किसी भी देश के लिए शर्मनाक साबित हो सकती है। कुछ बच्चों के लिए जीवन में लाचारी और गरीबी की नज़र लग जाती है, जिस कारण उन्हें बचपन में बाल श्रम जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बाल श्रम वर्तमान समय में बच्चों की मासूमियत के बीच अभिशाप बनकर आता है। आज भी बाल श्रम कई देशों में गंभीर समस्या बना हुआ है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईंट बनाने से लेकर मोबाइल के पुर्जे बनाने तक का काम बच्चों से लिया जाता है। कई देशों में काम करने की कोई न्यूनतम उम्र ही तय नहीं की गई है, और उन देशों में जहाँ बाल श्रम के खिलाफ कानून नहीं है, वहाँ इनका ठीक तरह से पालन नहीं किया जाता। विकासशील देशों में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अफ्रीका और एशिया के कई देशों में यह एक बड़ी समस्या है। ILO का कहना है कि कई देशों ने यह सूची बनाई नहीं है कि कौन से काम बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बाल श्रम बच्चों के विकास को रोकता है, उनके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। कम उम्र में मजदूरी करने से बच्चों का सामान्य विकास बाधित होता है और वे बीमारियों और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। शोषण और बुरे व्यवहार के माहौल में काम करने वाले बच्चे अक्सर अवसाद यानी डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याओं से घिर जाते हैं। बाल श्रम के दौरान शरीर को पहुंचा नुकसान कई बार स्थायी हो जाता है, जिससे वह वयस्क होने पर भी स्वस्थ जीवन नहीं जी पाते, जिस कारण वे और उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी और बीमारी के चक्र में फंसे रहते हैं। तो हमें इसका कारण भी जानना होगा कि आखिर ये बाल श्रम पनपता ही क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या हैं जिस कारण बच्चों को मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है।

वो मासूम बचपन और कोमल हाथ किस मजबूरी में मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं। यह बच्चों का बचपन और उनका उज्जवल भविष्य छीनने वाली एक गंभीर समस्या है। गरीबी बाल श्रम का सबसे बड़ा मूल कारण है। जब परिवार के पास 2 वक्त की रोटी, कपड़े और मकान के लिए पैसे नहीं होते, मूलभूत आवश्यकता और ज़रूरी चीज़ों के लिए भी जब पैसे जुटाना मुश्किल हो जाता है, तब यह नन्हे और कोमल हाथ पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अशिक्षा और जागरूकता की कमी भी बाल श्रम का कारण है। अशिक्षित माता पिता शिक्षा का महत्व ना समझने के कारण अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय वह काम पर भेज देते हैं। देखा गया है कि गरीब परिवार अक्सर साहूकारों से कर्ज ले लेते हैं, उनको ना चुकाने के कारण भी उनके बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में काम करना पड़ता है। बड़े परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होने और संसाधनों की कमी के कारण सभी बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाता है, जिससे उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। भारत में बाल श्रम के कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी तरह का काम, मजदूरी या व्यवसाय कराना पूर्ण प्रतिबंधित और कानूनन अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने, दुकान, होटल या अन्य किसी भी काम में लगाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या 18 वर्ष से कम के किशोर से कोई खतरनाक काम करवाता है तो उसे 6 माह से लेकर 3 साल तक की जेल और 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार 14 साल से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वह कार्य जो बच्चों की क्षमता, गरिमा और मानसिक व शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, बाल श्रम कहलाता है। बच्चों द्वारा किया गया हर काम बाल श्रम नहीं कहलाता। जब कोई बच्चा अपने स्वास्थ्य, कल्याण या शिक्षा को प्रभावित किए बिना अपने जीवन कौशल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हो तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अक्सर बड़े बच्चे अपने माता पिता के लिए घर के काम या छोटे मोटे काम करके जेब खर्च कमाते हैं या काम का अनुभव प्राप्त करते हैं। यह काम उन्हें वयस्क जीवन में काम करने के लिए तैयार करता है। दुनिया भर में हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। यह 12 जून बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस दिन का उद्देश्य बाल श्रम की क्रूरता को समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करना है। इस दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा 2002 में की गई थी। इसका मकसद बाल श्रम के खिलाफ विश्वव्यापी आंदोलन को बढ़ावा देना था। गौरतलब है कि बाल श्रम मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस बाल श्रम के चक्र को कैसे रोका जाए। इसमें हमें उन परिस्थितियों को पहचानना होगा जो बच्चों को काम करने के लिए मजबूर करती है, और उन प्रणालियों को पहचानना होगा जो उन्हें वापस शिक्षा की ओर ले जा सकती है। इसका समाधान तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन यह स्पष्ट है, बच्चों और अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना, ताकि अभिभावक बच्चों को स्कूल में बनाए रखें, परिवारों का समर्थन करें, व्यवस्थाओं को मजबूत करें और जहाँ भी संभव हो जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों में योगदान दें। बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में हर नागरिक की जागरूकता जरूरी है। बाल श्रम कानून का सख्ती से पालन हो, बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने पर क्या सजा हो सकती है, जुर्माना क्या हो सकता है, इसकी व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए। मतलब आम जनमानस को इस कानून से रूबरू कराना होगा, ताकि बच्चों को बाल श्रम से निकाल कर एक अच्छा जीवन मिल सके, उन्हें शिक्षा मिल सके, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। देश को संवारने का भार उन्हीं के कंधों पर आता है, और जब उन्हीं का विकास नहीं होगा, उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं होगी, तो कैसे हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाल श्रम रोकने के उपाय नहीं किए गए। इसको रोकने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 धारा 3 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे सभी प्रकार के व्यवसायों और प्रक्रियाओं से काम करने से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कानून के अनुसार बच्चा अपने परिवार या पारिवारिक व्यवसाय में स्कूल के समय के बाद या छुट्टियों में मदद कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह कार्य खतरनाक नहीं होना चाहिए। कलाकार के रूप में बच्चों को विजुअल मनोरंजन उद्योग जैसे विज्ञापन, फिल्में, टीवी सीरियल या खेल गतिविधियों में काम करने की अनुमति है, बशर्ते इससे उनकी स्कूली शिक्षा प्रभावित ना हो, सर्कस आदि को छोड़कर। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि 2016 में हुए संशोधन के बाद से इस कानून का नाम बदलकर बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम कर दिया गया है, जो किशोरों 14 से 18 वर्ष को खतरनाक कार्यों में लगाने पर भी प्रतिबंध लगाता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 39E यानी 39E बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का शोषण ना हो के आदर्शों को

0: से कमजोर परिवार का है तो उसकी सहायता करनी होगी। बाल श्रम कानून का सख्ती से पालन हो और कानून के अनुसार बच्चों से बाल श्रम लेने वालों पर कठोर कार्रवाई कर दंड सुनिश्चित हो तो स्थिति में सुधार अवश्य आएगा और बच्चों के भविष्य के साथ साथ देश व राष्ट्र का भी भविष्य उज्जवल होगा, राष्ट्र मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता, विषय था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर। श्रोताओं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन 12 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की समस्या को उजागर करना और इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता और ठोस कदम उठाना है। श्रोताओं, बचपन को जीवन का सबसे अच्छा समय माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये बात कुछ बच्चों के लिए सच नहीं है जो अपने बचपन के दौरान जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हैं। पहले बच्चे अपने माता पिता को कृषि के बुनियादी कामों में मदद करते थे, जैसे बुआई, कटाई, फसल काटना, पशुओं की देखभाल आदि। लेकिन उद्योगों और शहरीकरण के विकास के साथ साथ बाल श्रम की समस्या भी बढ़ गई है। बहुत कम उम्र में ही बच्चों को विभिन्न अनुचित कार्यों में लगाया जाता है। इसे देखते हुए इस वर्ष की थीम बाल श्रम के खिलाफ लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित अवसर, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम है। ये अभियान बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, वयस्कों के लिए सम्मानजनक आजीविका और बाल श्रम की मूल वजहों पर कड़े प्रहार करने पर केंद्रित है। वर्ष 2026 का ये दिन बाल श्रम उन्मूलन पर मराकेश में हुए छठे वैश्विक सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं को जमीन पर उतारने और कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक निर्णायक मोड़ है। श्रोताओं, हमारे देश में भी बाल श्रम रोकने और बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई कानूनी प्रावधान लागू हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं ने हर बच्चे को शोषण मुक्त बचपन और शिक्षा का अधिकार दिलाने का संकल्प लिया है। श्रोताओं, अब समय है आपके मनोरंजन का। सुनते हैं अगला लोकगीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 15th June. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.

किसान साथियों, कार्यक्रम में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपके पास खेती बाड़ी से संबंधित कोई जानकारी है तो आप हमें पत्र जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा निदेशक, आकाशवाणी देहरादून, पिन 248001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है जगत कृषि@gmail.com। आप कुलदीप सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: किसान साथी सुन रहे थे अभी अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:30 हुए। श्रोताओं आइए सुनते हैं कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगड़ मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकारक 12 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर प्रदेशक कैबिनेट मंत्रियों और अलग अलग जिलों में सरकारक उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विदिन औकलीजी देहरादून पूजी। श्रीमती मुर्मू भोल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन। देशक दगड़े उत्तराखंड में ले शोक एक लहर। और अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी। अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों और अलग अलग जिलों में पत्रकार वार्ता कर सरकारक उपलब्धियां गिनाई। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडाल बागसर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार एक उपलब्धियों को गिने बेर को कि देश निरंतर विकास और प्रगति के बाट पर आगिल के बढ़नो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विश्वास, विकास और राष्ट्रवाद की भावना के दगड़े काम करने।
2: उपलब्धि हमारी यह है कि हमने हर राजस्व गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, हर छोटे छोटे तोगों तक बिजली पहुंचाने का काम किया और इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमने हर घर तक यानी हर राजस्व गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया। और इन 12 वर्षों में 2014 के बाद लकड़ी के चूल्हे गांव गांव में जलाए जाते थे, आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हर परिवार को हमने गैस के चूल्हे देने के काम किए, गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया, ये हमारी उपलब्धि है। और इन 12 वर्षों में देश से आतंकवाद को हमने खत्म करने का काम किया।
1: वहाँ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्याल पिथौरगढ़ में भई पत्रकार वार्ता में केंद्र व राज्य सरकार एक जनकल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। उन्होंने कहा कि पिछड़े 12 वर्षों में ले देश विकासक नई प्रतिमान स्थापित करी चन और समाजक आखिरी पायदान पर ठाड़ मैसू को सशक्तकरण काम करी गई छू।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल अब पूर्ण हुए हैं और ये 12 साल की जो यात्रा रही है पूरी तरीके से विकास परक रही है। इस यात्रा का हर एक व्यक्ति भारत के रूप में किसी न किसी योजना से, किसी न किसी प्रकार से, जन कल्याण से उस यात्रा में वो सहभागी रहा है।
1: वह रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और अलमण में ले कैबिनेट मंत्रियों केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को खुलवेर बता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपन 2 दिनों के दौर में देहरादून पूजी। जौलीग्रांट हवाई अड्डे में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दगड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों उनर स्वागत करो। श्रीमती मुर्मू भोल भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में भोल हुणवाली पासिंग आउट परेड में यो बार बहुत मायनन में ऐतिहासिक हुणवाल छू। पहली बार महिला कैडेट्स पुरुष कैडेट्स का दगड़ कदम ताल करती हुए नजर आली। यो भव्य समारोह में 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स आखिरी पग भरबेर भारतीय सेना अधिकारी बनल। देहरादून जिला में विशेष गहरी जांच करणक SIR अभियानक भीतर मतदाता सत्यापनक काम झट चलणो। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग की टीम घर घर जयबेर गणना कागज पत्र बांटणे। एल ताले जिलम 1,33,000 है ज्यादा गणना कागज पत्र बांटाली छन। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने बता कि SIR अभियानक भीतर घर घर जयबेर गणना कागज पत्र बांटने जानी और मतदाताओं का सत्यापन करी जानो। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्राथमिकता छू कि हर पात्र मतदाता ताले पहुंच बने बेर प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी ढंगल पूर करी जाल।
4: SIR को लेके हम लोगों की मल्टीपल ECI के लेवल पे भी जो डायरेक्शंस मिले हैं या CEO ऑफिस की तरफ से डायरेक्शंस मिले हैं वो नीचे डिसेमिनेट कर दिए गए हैं और हाउस टू हाउस सर्वे जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है उसको भी हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इस संबंध में कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो मेरे द्वारा ERO या SDM को बता दिया गया है कि वो कंटिन्यूअसली पॉलिटिकल पार्टीज के टच में रहे और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में और जो ECI की डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंगली ही फर्दर इस पूरे हाउस टू हाउस सर्वे को कंडक्ट करें।
5: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमार सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर यू समाचार हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा भोल रात नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन है गयो। वो 49 वर्षक छी। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षकक रूप में कार्यरत छी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर रखो। मूल रूपल उत्तराखंड में रूणवल जसपाल राणा के निधन खबरल खेल जगत और उत्तराखंड में शोक एक लहर छू। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल जसपाल राणा के अचानक निधन पर शोक व्यक्त कर रखो। उन्होंने कहा कि निशानेबाजी क्षेत्र में जसपाल राणा का असाधारण योगदान, ऐतिहासिक उपलब्धियों और युवा खिलाड़ियों को दी गई प्रेरणा भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित करो। अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी छू। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी बता कि अवैध निर्माण को छोड़वेर अवैध प्लॉटिंग और व्यावसायिक निर्माणों को लेकर सख्तील काम करी जानो। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें व्यावसायिक भवनों में लिफ्ट, अग्निशमन और सीसीटीवी की व्यवस्थाओं की स्थिति की जांच ले करने, जल सुरक्षा के मानक बनी रहो और कोयला अप्रिय घटना से बची जा सको।
6: ये दो तरह की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक तो इस वर्ष की आपदा में जहाँ जहाँ नाले खालों में अतिक्रमण था और जो बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ उस पर हमने बहुत सख्ती से कहा है कि जहाँ भी जल स्रोत हैं उस पर निर्माण कार्य न होने दिया जाए या अवैध निर्माण जो है उनको हटाया जाए। इसके साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे व्यावसायिक निर्माण बड़े स्तर पर हो रहे हैं उनके जाँच के साथ ही साथ हमने जो उनमें लिफ्ट प्रयोग हो रही है, जो उनके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, अग्निशमन की वहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं, सीसीटीवी कैमरे ठीक हैं कि नहीं, उसका भी अलग से हमने निर्देश जारी किया है कि सभी लोग जितने भी इस तरह के कमर्शियल हैं जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा होती है वो सुरक्षा की जो पहलू हैं, जो मानक हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनकी भी जांच करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक सफल आयोजन और जन जागरूकता के उद्देश्य पौड़ी कलेक्ट्रेट सभागार में आज विशेष योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करी गयो। यो मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग अलग योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराई गयो। दगड़े केंद्र सरकारक नमस्ते योग ऐपक माध्यमल अधिकारियों और कर्मचारियों को योगक महत्व, वीक वैज्ञानिक उपयोगिता और दैनिक जीवन में योग को अपनोड़क लाभों के बारे में पूरी तरह बटी जानकारी दी गई। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र पांडेल को कि योग को केवल एक दिन ताले सीमित नहीं रखवेर दैनिक जीवनक अभिन्न हिस्सा बनूड़ जरूरी छू। जेल स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में योगदान दी जा सको।
7: आयुष मंत्रालय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार हमने वाइब्रेक ऐप के बारे में जानकारी दी और हम लोगों ने सभी लोगों ने बैठ करके जिला अधिकारी कार्यालय में वाइब्रेक ऐप का योग किया और जिसके कारण हम छोटे मोटे तनाव और मानसिक स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको शामिल करेंगे जिससे हम लोग की लाइफ सुदृढ़ और आसान बन सके।
1: विश्व बाल श्रम निषेध दिवसक मौक पर आज पौड़ी जिला सरस्वती शिशु मंदिर क्यूंकालेश्वर में जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर बटी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करी गयो। यो मौक पर स्कूली चालचेलियों को बाल अधिकारों, बाल संरक्षण कानूनों और बाल श्रमक दुष्परिणामों पर जानकारी दी गई। दगड़े उनको अपन अधिकारों प्रति सजग ऋण और समाज में जागरूकता प्रचारित करण के लिए प्रेरित करी गयो। वक्ताओं को कि जागरूक समाज और शिक्षित समुदाय मिलबेर बाल श्रम जैसी कुप्रथा को खत्म कर सकनी। केंद्र सरकार खुदरा पेट्रोल पंपों थे संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदण में रोक लगे हैली। सरकार को कि इनको अपनी जरूरत तक पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों थे ही ल्यून होल। यो फैसल पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में ए बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन कमी को रोकने के लिए ली जा रो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक अधिसूचना में कह कि यो प्रतिबंध 90 दिनों तले बनी रोल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकारक 12 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर प्रदेश कैबिनेट मंत्रियों अलग अलग जिलों में सरकारक उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विदिनों के लिए देहरादून पूजी। श्रीमती मुर्मू भोल भारती सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन। देशक दगड़े उत्तराखंड में ले शोक एक लहर। और अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी। यह के दगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
0: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में शाम के 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अलका याग्निक और उदित नारायण का युगल स्वर, समीर के बोल, अनु मलिक का संगीत और फिल्म थी अजनबी। आइए आपको सुनवाते हैं नीति मोहन और अरमान मलिक का युगल स्वर। फिल्म का नाम है बार बार देखो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी फिल्म संगीत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:50 और अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम सेवा सुशासन और गरीब कल्याण।
1: नमस्कार, मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी समाचार देहरादून का विशेष कार्यक्रम सेवा सुशासन और गरीब कल्याण। पिछले 12 वर्षों के दौरान देश ने विकास, जन कल्याण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को अपनी कार्यशैली का आधार बनाते हुए अनेक ऐसी योजनाएं और पहल शुरू की जिनका उद्देश्य विकास को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना रहा है। इन 12 वर्षों में गरीबों के लिए आवास, महिलाओं के लिए स्वच्छ ईंधन, किसानों के लिए सहायता, युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आधुनिक सड़क और परिवहन नेटवर्क तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार जैसे अनेक क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कार्य किए गए हैं। इन प्रयासों का प्रभाव देश के विभिन्न राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पिछले एक दशक से अधिक समय के दौरान केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल आधारभूत ढांचे को मजबूत करना नहीं था, बल्कि आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करना भी था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। वर्षों तक धुएं वाले चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर रही महिलाओं को स्वच्छ ईंधन की सुविधा मिली है, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ने हजारों परिवारों को पक्के घर का सपना साकार करने में मदद की है। इस योजना ने ऐसे अनेक परिवारों को नया आत्मविश्वास दिया है जो वर्षों से बेहतर आवास की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस प्रकार प्रधानमंत्री

0: उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलों ने उत्तराखंड के विकास को नई दिशा दी है और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है। तो आइए शुरू करते हैं यह विशेष प्रस्तुति। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं का जीवन लंबे समय तक कई कठिनाइयों से जुड़ा रहा है। इनमें सबसे बड़ी चुनौती थी जंगलों से लकड़ी जुटाना और धुएं से भरे चूल्हों पर खाना बनाना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इस स्थिति को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, जिससे उनके स्वास्थ्य, समय और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों तक भी इस योजना का लाभ पहुंचा है। आइए सुनते हैं एक लाभार्थी की जुबानी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी और उन्होंने बताया कि कैसे इस योजना से उनके जीवन में बदलाव आया।
1: बुंदी जी नमस्ते। बुंदी जी बताइए, जब घर में गैस नहीं थी तो जीवन कैसा था? और अब उज्ज्वला की वजह से क्या लाभ हुआ है?
2: माननीय मोदी जी, जब मेरे घर में गैस नहीं था तो मैं जंगल से लकड़ी लाती थी और चूल्हे में आग जला के खाना पकाती थी। उस टाइम इतना बुरा समय था कि आंखों से आंसू आते थे, लकड़ियां गीली होती थी, खाना समय पे नहीं बन सकता था। और जब से आपने हमें गैस दिया है तब से मेरा समय की भी बचत हुई है और साथ में मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ। और जो समय बचता है उसमें मैंने गायें पाली हुई हैं, उससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ और अपने थोड़े समय में अपने पापा को भी देख लेती हूँ। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे उज्ज्वला के अंतर्गत गैस दिया है।
1: बुंदी जी, मुझे बताया गया कि अब तक आपने 22 रिफिल कराए हैं, यानी आप इस योजना का पूरा लाभ उठा रही है
2: जी।
1: क्या आपने अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को, साथियों को ये बताया कि इस प्रकार की योजना है और इसका लाभ ऐसे मिल सकता है?
2: जी, मैंने सबको बताया है। जितनी मेरी बहनें थी और मेरे गांव की जो महिलाएं थी, उनको मैंने सबको बताया है कि आइए मेरे घर में देखिए, हमारे माननीय मोदी जी ने मुझे फ्री में उज्ज्वला गैस दिया है और आप भी जाइए और आप इसका लाभ उठाइए। तो जितनी भी महिलाएं थी और मेरी बहनें थी, वो लोग इंडियन ऑयल गए हैं और वहां से उन्होंने गैस लिया है और गैस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई है हमें और आसानी से हमें गैस मिल गया है।
1: बुंदी जी, मैं आपका और आप जैसी करोड़ों बहनों का आभारी हूं जिन्होंने इस योजना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है।
0: उज्ज्वला योजना केवल एक गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सुविधा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं को धुएं से राहत मिली है और उन्हें अपने समय का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिला है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है, अपना घर, एक ऐसा घर जहाँ सुरक्षा हो, सम्मान हो और परिवार के बेहतर भविष्य की उम्मीद हो। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पक्का घर बनाना अक्सर एक बड़ी चुनौती रहा है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में लाखों परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार करने का काम किया है। उत्तराखंड में भी हजारों परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षित और मजबूत आवास का महत्व और भी अधिक होता है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक चुनौतियों के बीच पक्का घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि सुरक्षा और आत्मविश्वास का आधार भी बनता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवासों ने अनेक परिवारों को बेहतर जीवन की नई शुरुआत का अवसर दिया है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने पक्के घर का निर्माण कर सकें। इसके साथ ही घरों में शौचालय, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के समावेश पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है।
3: जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना घर। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़कर करोड़ों लोगों को देश में अपना घर मिल चुका है। मोदी सरकार PM आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का घर देने का काम कर रही है। PM मोदी के नेतृत्व में देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित किया जा रहा है। PM आवास योजना PMAY मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और असहाय लोगों को अपना घर बनाने में आर्थिक मदद करती है। 9 साल से सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार ने देश भर में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक लोगों को अपने घर का उपहार दिया है।
4: पहले हमारा पुराना कच्चा मकान था जी सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार हमारा पक्का मकान बनाया गया।
5: जब से मोदी सरकार आई हमें बहुत फायदा हुआ और पक्के मकान मिल गए।
3: पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत उत्तराखंड में जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता 810 करोड़ रुपए है और निर्मित पक्के मकानों की संख्या 28,136 है। केंद्र एवं राज्य सरकार उत्तराखंड में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारकर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक का विकास का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सबको पक्का घर लक्ष्य प्रथम, डबल इंजन की सरकार ने बढ़ाए कदम।
0: उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों में भी इस योजना का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। जिन परिवारों को कभी कच्चे मकानों, टीन की छतों या अस्थायी आवासों में जीवन बिताना पड़ता था, वे आज अपने पक्के घरों में सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। यह बदलाव केवल आवास का नहीं बल्कि सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का भी है। आइए सुनते हैं उन लाभार्थियों की जुबानी जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ने अपने घर का सपना साकार किया।
6: मैं जेलोर चौराहे पे पहले रहा करती थी किराए के मकान में, और बीच में कोरोना का काल भी हुआ था, हमारे पास खाली जमीन थी, बनाने के लिए सुविधा नहीं थी किसी भी तरह की, तो हमें नगर निगम की तरफ से ये 2 लाख रुपए की सुविधा मिली है। उसके जरिए हमने ये मकान बना रखा है और इसमें हम आराम से रहते हैं। हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए आगे के लिए काफी सुविधा हो गई है।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि लाखों परिवारों के सपनों और आकांक्षाओं से जुड़ी पहल बन चुकी है। उत्तराखंड में भी यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यही कारण है कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की अवधारणा को धरातल पर उतारने वाली प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना को विशेष स्थान दिया जाता है। और इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम सेवा सुशासन और गरीब कल्याण में हमने जाना कि पिछले 12 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों ने उत्तराखंड के विकास को किस प्रकार नई दिशा प्रदान की है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना और पर्यटन विकास ने जहां राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है, वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और सुविधाजनक बनाने का काम किया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना ने हजारों परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार कर उन्हें सम्मान और सुरक्षा का नया आधार प्रदान किया है। इन योजनाओं का वास्तविक महत्व आंकड़ों और उपलब्धियों से कहीं अधिक उन लोगों की बदली हुई जिंदगी में दिखाई देता है जिनके लिए विकास अब केवल एक अवधारणा नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन का अनुभव बन चुका है। बेहतर सड़कें, बढ़ती पर्यटन गतिविधियां, महिलाओं का सशक्तिकरण और गरीब परिवारों को मिलती बुनियादी सुविधाएं एक विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की तस्वीर को मजबूत कर रही हैं। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए विकास की यह यात्रा निरंतर जारी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ऐसे प्रयास राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रगति और समृद्धि के नए अवसर पहुंचाते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे अखिलेश चंद्र गैरोला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
7: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति सेवा सुशासन और गरीब कल्याण FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, कथा सागर में आइए सुनते हैं नवीन कुमार नैथानी की पूर्व प्रसारित कहानी इस फूल को क्या नाम दें।
8: फूलों को देखने का दिलचस्प खेल किस तरह शुरू हुआ, इसका एक एक ब्यौरा मेरी स्मृति में बखूबी दर्ज है। किसी जमाने में यह सिलसिला मेरे साथ बहुत दूर तक, बहुत दिनों तक और बहुत सारी जगहों तक जाता रहा। हर मौसम में किसी नई जगह, सूरज की रोशनी के नए खुलते रंगों के साथ फूलों को देखने का सुख जिसे मिला हो, वह इस बात को समझ सकता है कि इस सुख को दूसरे लोगों के साथ बांटने में कितना आनंद मिलता है। ऐसे ही किसी क्षण में यह विचार आया कि मुझे इन पलों को कैमरे में कैद कर लेना चाहिए। बाद में यही शौक मुझे देश के विभिन्न इलाकों तक ले जाता रहा है। आज जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि पत्रकारिता में आने के लिए शायद फूलों के प्रति इस दीवानगी का भी बड़ा हाथ रहा है। दरअसल पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में मैंने शौक या तैर तौर पर कुछ लेख लिखे थे और उन्हें बिना उत्साह के देश के प्रसिद्ध अखबारों में भेज दिया था। उनमें से कुछ लेख छप भी गए। फिर मैं एक फ्रीलांसर की तरह अपनी सुविधा के हिसाब से लिखने लगा। मुझे यही ठीक लगा था कि कि मैं देश के अलग अलग इलाकों में जाऊं और अपनी पसंद और अपने मिजाज के हिसाब से हो रही घटनाओं को दर्ज करूं। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, अपनी बढ़ती हुई उम्र और लोगों की बदलती हुई रुचियों के कारण मैं यह कॉलम बहुत दिनों तक नहीं चला पाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब मैं थोड़ा पीछे लौटते हुए उन बातों के बारे में बताऊं जो इस कॉलम को लिखते हुए मेरी ज़िंदगी में घटी, नितांत रूप से मेरी अपनी ज़िंदगी में। उनमें से कुछ बातें बहुत खुशगवार थीं, उनकी थोड़ी बहुत छाया तो मेरे लिखे हुए में चली आई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो बहुत तकलीफ देने वाली थी, लेकिन उनकी खरोंचों से मैंने अपने कॉलम को बचाए रखा। अब जब मैं इस पूरी ज़िंदगी को दोबारा पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कुछ ऐसे भी लम्हे आए हैं जिनके बारे में ठीक से तय नहीं कर पा रहा हूँ कि उन्हें किस खाने में रखूँ। आज संयोग से उन्हीं दिनों बुआ ने अपने पास उस पहाड़ी शहर की तरफ आने का निमंत्रण दिया। पहली बार उस शहर को देखकर मुझे लगा कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। मैं पहली बार कोई पहाड़ी शहर देख रहा था जहाँ वक्त ठहर जाता है और उम्र थम जाती है। अब दुनिया भर में घूमने के बाद मुझे यूँ लगता है कि सभी पहाड़ी शहर एक जैसे ही होते हैं, उदासी की धुंध भरी चादर में अपने को हल्का सा ढके हुए। कोहरा उन शहरों के ऊपर से एक नदी की तरह गुजर जाता है जिसके भीतर डूबते हुए वे अपने घरों की आकृतियों के साथ बाहर निकलने के लिए छटपटाते रहते हैं। किसी चढ़ाई के बाद एक रिज थी जिससे लगता था कि अगर थोड़ा और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो सूर्यास्त का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ेगा। वहाँ कुछ और लोग भी थे। ऐसा सूर्यास्त मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं उस दृश्य में डूब गया। सूरज डूबने के बाद मैं कुछ देर तक हल्के अंधेरे को उगते हुए देखना चाहता था, लेकिन फिर मुझे बुआ की बात याद आ गई। वापस मुड़ने के लिए पलटा तो देखा वहाँ कोई और नहीं है। रिज की ढलान पर बहुत दूर कुछ लोग शहर की तरफ लौटते हुए दिखाई दिए। मैं तेज कदमों से नीचे की तरफ बढ़ा तो पाया कि जंगल के भीतर अंधेरा पहले कभी नहीं फंसा था। इस जाल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था कि मैं जितनी जल्दी हो सके दौड़कर जंगल को पार कर लूं, लेकिन दौड़ने की कोशिश एक तरह से आत्मघात की तरफ ही बढ़ने जैसी होती। रास्ता दिखाई देना बंद हो गया था और आंखों को अंधेरे में देखने लायक होने के लिए अभी कुछ और वक्त लगना था। उनकी आवाज़ में एक आश्वस्ति थी। तब मेरी नज़र उस छोटी सी काया की तरफ पड़ी। यह तो मुझे बाद में बुआ से पता लगा कि संस्कृति को उस शहर में बहुत सारे लोग जानते हैं। वह बचपन से ही उस जंगल में खूब घूमती रही है और उसे जंगल के बारे में बहुत सी ऐसी बातें पता हैं जो बड़े और दुनिया देखे हुए लोगों को भी पता नहीं है। यहाँ पर उन बातों की तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना बताना ज़रूरी लग रहा है कि वह जंगल रात भर मेरे सपनों में आता रहा। अगले रोज़ में दिन चढ़ने की शुरुआत से ही रिज की पश्चिमी ढलान की तरफ अकेला निकल गया था। उस वक्त भी मुझे अंदाज़ नहीं था कि कुछ ही पलों में एक अविस्मरणीय सौंदर्य मेरी आंखों के सामने आने वाला है। वह ढलान एक तंग संकरे मार्ग की तरफ ठहर गई थी। असमंजस में मेरे कदम हुआ कि मैं वहाँ बैठकर उनकी गंध के बीच खो जाऊँ। मैं आसपास बैठने के लिए अपने हिसाब की सही जगह खोजने की कोशिश करने लगा तो आश्चर्य में पड़ गया। कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दी जहाँ मैं किसी फूल को हटाए बिना बैठ सकता था। मैं वहीं पर खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए सोचने लगा कि इस जगह कितनी देर तक टिक सकूंगा। यहाँ बहुत देर तक मत रुकना, मुझे अपने पीछे कोई आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वहाँ संस्कृति खड़ी थी। तुम? मैं आश्चर्य में पड़ गया। हाँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है, मैं तो यहाँ अक्सर आती हूँ। मैंने इन फूलों को खिलते हुए देखा है। उसके चेहरे की चमक में फूलों की रंगत छिलमिल कर रही थी। यह फूल कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा खिलते हैं? मैं उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह गया था। हर फूल का अपना मौसम होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद इधर आओगे तो पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिर वह मुझे दूर तक जंगल दिखाने ले गई। उसने फूलों के बारे में इतनी जानकारी दी कि मैं दंग रह गया। उसने बताया कि कुछ फूल बस सिर्फ एक दिन के लिए ही दिखते हैं, अगर तुम भाग्यशाली हो तो उसे देख सकते हो। उसकी आंखों में चमक थी। तुमने देखा है? मैंने पूछा। नहीं, पर मुझे पता है एक न एक दिन वह मुझे दिखाई देगा। मैं यहाँ रोज आती हूँ। उसके चेहरे का विश्वास देखकर मुझे लगा कि वह फूल यहीं कहीं आसपास ही खिला होगा। एक बात का ध्यान रखना। वह थोड़ा रुकी और मेरी तरफ मुड़कर कहने लगी। बहुत देर तक यहाँ रुकने पर कभी कभी फूलों की खुशबू से लोग बेहोश भी हो जाते हैं। चलो अब आप

0: बस चलो हम दूसरे रास्ते से बाहर निकलेंगे, उधर खिलने वाले फूलों में खुशबू नहीं है। बाहर निकलने वाले उस रास्ते के तिलिस्म ने मुझे ऐसा बांधा कि मैं आज तक उसके सम्मोहन से बाहर नहीं निकल सका हूँ। वहां से लौटकर जंगल, वनस्पतियां और फूलों की गंध मेरी जिंदगी में इस कदर घुल मिल गए हैं कि अब वे मेरी पहचान ही बन गए हैं। अखबारों में छपने का सिलसिला जिस लेख से शुरू हुआ उसमें मैंने इसी जंगल का जिक्र किया था। बस संस्कृति का नाम उस लेख में नहीं दिया था, उसके नाम की जगह सिर्फ इतना ही लिखा था कि एक बच्ची रोज उस फूल को खिलते हुए देखने के लिए जाती है, जिसके बारे में लोगों के बीच यह धारणा बनी हुई है कि वह फूल सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है। यूँ तो एक दिन के लिए खिलने वाले फूलों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, लेकिन उनका मौसम निश्चित है और हर दिन कुछ नए फूल उनकी जगह ले लेते हैं। जिस फूल के होने पर संस्कृति को भरोसा था, उसका मौसम ही बस एक दिन का था, उस फूल को किसी ने नहीं देखा। बाद के दिनों में यह मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बना कि जहाँ भी जाता फूलों के बारे में खोजबीन करता। यह मेरे उस कॉलम रंगवन के शुरू होने की कहानी है। यहाँ मुझे यह बात स्वीकार करनी है कि मैंने बाद में संस्कृति से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इतना ही मालूम हुआ कि एक रोज वह इस वन के कोने में बेहोश मिली थी। उसके पिता उसे लेकर शहर छोड़कर चले गए। कोई डर था जिसकी वजह से वे उसे जंगल से दूर ले गए होंगे। हो सकता है जिस रास्ते वह बाहर निकला करती उधर कोई नया फूल खिला हो जिसकी गंध से वह बेहोश हो गई होगी। मुझे यकीन है कि संस्कृति कहीं न कहीं किसी न किसी जंगल में उस फूल की तलाश में निकली हुई होगी। हो सकता है उसे वह फूल मिल भी गया हो। कई बार वह मुझे सपने में दिखाई देती है। उसकी हथेलियों के बीच में एक फूल बंद रहता है और उसकी आवाज सुनाई देती है, इस फूल को कोई नाम दो।
1: श्रोताओं, कथा सागर के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नवीन कुमार नैथानी की पूर्व प्रसारित कहानी इस फूल को क्या नाम दें। FM 9.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:10 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम 12 साल सरकार के।
2: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
3: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
3: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
4: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाते हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
3: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
4: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो।

निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है, लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके, जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके, मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्न एज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी, ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें, तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है, और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा, उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम

0: के भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सबको नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है।

0: वो संख्या भी 1.8 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सबका रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर

0: जीत के जब 150 साल पूरे हुए। ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की। अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर कहा कि श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसे संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसे भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें,

0: भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें, और ये भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का, और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरकार की 12 साल। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन

0: शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवम्बर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ

0: तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude

0: श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आदित्य पंत का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग मरुबिहाग। आपके साथ संगीतकर्ता कलाकार थे तबले पर सप्तक शर्मा, हारमोनियम पर सुनील मुखर्जी। श्रोताओं, इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। आइए सुनते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो, फरमाइश। कभी यादों का अनोखा सफर, कभी सपनों की मीठी छांव। ये रात अपने साथ न जाने कितनी रंग लेकर आती है। कुछ आंखों में बस जाते हैं, कुछ दिल में ठहर जाते हैं, और कुछ गीत बनकर हमारे जीवन को महका जाते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी प्यारे श्रोताओं का सुषमा जोशी की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके अपने इस खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में बसा है आपका प्यार और आपका एहसास। तो आइए इन्हें खूबसूरत एहसासों के साथ लेते हैं कार्यक्रम में ये पहली कॉल। हेलो फरमाइश
1: नमस्कार मैम।
0: जी। बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश में।
1: थैंक यू मैम। मैं जिला मुरादवाल ग्राम सलावा से इमरान खान बात कर रहा
0: हाँ
1: हूँ।
0: जी, तो इमरान खान बात कर रहे हैं आप,
1: जी
0: तो बताए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैम। जानना चाहूंगी आप कैसे हैं, आकाशवाणी में कैसे हैं मैम।
0: हम लोग भी बहुत बढ़िया से हैं। और बताए क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं राजमिस्त्री हूँ, लोगों के आशियाने बनाता हूँ मैम।
0: तो लोगों के आशियाने बनाते हैं, वाह क्या
1: हाँ सुबह
0: बात
1: बारिश
0: है।
1: हो गई थी मैम, सुबह
0: हाँ जी,
1: बारिश हो गई थी तो आज काम पे जाना नहीं हुआ मैम।
0: अच्छा, बारिश की वजह से।
1: जी हाँ मौसम अच्छा है, हवा अच्छी चल रही है पूरब की
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: गर्मी नहीं है इस वक्त
0: हाँ
1: मैम।
0: जी, देखिए ना कितनी प्यारी बात है ना, इतनी प्यारी सी बारिश हुई है ना, जिससे गर्मी में राहत मिली है।
1: हाँ मैम कल और परसों यानी कई दिन से गर्मी बहुत थी मैम, ज्यादा विकट गर्मी थी मैम,
0: बहुत तेज और बहुत ज्यादा थी है ना।
1: बहुत ज्यादा थी मैम। आपके देहरादून में तो मैम खैर कम होती होगी क्योंकि वो एरिया जो है वो थोड़ा थोड़ा मतलब तरल एरिया है वो।
0: हाँ जी, हाँ जी, पर फिर भी
1: जी
0: मौसम तो अपना मिजाज बता ही देता
1: मिजाज
0: है।
1: बदलता है। जी जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल।
0: जी
1: हाँ एक दो पॉइंट कम होगी लेकिन होगी बहुत गर्मी उधर। जी
0: हाँ जी, हाँ जी। तो
1: जी
0: रेडियो कब से सुनते हैं आप?
1: मैं रेडियो तो मैं करीबन 25-26 साल से सुनता हूँ मैम। हाँ
0: अच्छा, तो इतना ज्यादा टाइम हो गया रेडियो सुनते हुए।
1: काफी समय हो गया मैम, काफी दिनों से मैं रेडियो सुनता हूँ और हमारे ये आकाशवाणी रजुवाद है, इधर रामपुर है, बरेली है, बहुत दूर तक के स्टेशन मैं सुनता हूँ और खास खासकर जो है मैं देहरादून बहुत मैं मतलब पसंद करता हूँ मैं, क्योंकि
0: अच्छा।
1: ये FM पर बिल्कुल न्यू बिल्कुल एकदम क्लियर बोलता है मैं। हाँ
0: जी, शुक्रिया इसके लिए कि आपको आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम पसंद आते हैं।
1: अब जैसे मैम मौसम आने वाला है बरसात का,
0: हाँ जी,
1: तो अगर आज अब से तो आज सही शुरू है, कहते हैं बड़े बूढ़े के आषाढ़ से ही माना जाता है
0: हाँ
1: बरसात का
0: जी।
1: मौसम, तो मैम इसमें जो है मीडियम मीप के स्टेशन ना जो मौसम की वजह से कहीं पर भी हो, देश के अंदर कुलर पुलर कुछ ना कुछ मतलब सिस्टम होता है मैम,
0: हाँ जी,
1: लेकिन एक FM जो है ऐसा है इसमें किसी तरह का कोई डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं होता मैम
0: हाँ
1: इसमें
0: जी,
1: तो।
0: हाँ जी, जी.

0: शुक्रिया, आपको कार्यक्रम पसंद आते, तो रेडियो से आपको बहुत ज्यादा लगाव है।
1: इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही बड़ा इसका जो है विकास केंद्र में जो है इसका योगदान है मैम आकाशवाणी का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ
0: तो बताइए रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: मैं ये आकाशवाणी रामपुर के नजीबाद के तो सुनते ही हैं, आपके यहाँ के जो है रात के केंद्र सुन लेते हैं व्हाट्सएप और जो वो है मैसेज का 10 बजे से।
0: हाँ जी
1: हाँ वो नंबर भी और है मैम।
0: हाँ जी हाँ
1: और
0: जी
1: हाँ और ये शाम को 4:30 बजे जो है एक ही फिल्म से कभी एक ही कलाकार से आता है ये सुन लेते हैं मैम। हाँ और ये 4 बजे से ही सुन लेते हैं और मुख्य जो समाचार होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मैम आपके केंद्र
0: तो
1: में।
0: जानकारी मिल जाती है समाचारों के द्वारा
1: बिल्कुल
0: आपको, है ना?
1: जानकारी के द्वारा, जानकारी समाचार के द्वारा भी मिलती है मैम, मनोरंजन भी होता है,
0: हाँ
1: खेतीबाड़ी
0: जी
1: की बातें बताई जाती हैं, युवाओं की भी बातें बताई जाती है, महिलाओं की भी बातें बताई जाती है, बहुत लाभदायक केंद्र होते हैं मैम आकाशवाणी
0: जी। तो बताएं आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम। देखिए मोहम्मद रफी की आवाज में है नैन लड़ गई है मनवामा कटक हो दे करी।
0: तो कार्यक्रम में अपने परिवार जनों या खास मित्रों का नाम लेना चाहेंगे तो जरूर ले सकते हैं
1: थैंक यू मैम। डॉक्टर
0: जी।
1: अख्तर हुसैन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, राजा हुसैन, गफ्फार हाजी जी, मुकेश भाई और ये मोहम्मद बख्तार फरीदी जी, शेरकोट वाले रऊफ भाई, निजामुद्दीन भाई और साथ में मैम आप भी रहेंगी मैम।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, शुक्रिया। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
2: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमारा

0: हेलो फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएं।
1: तितलियों के पंख लगाकर उड़ जाना है काम मेरा, अब यही समझो कि मोहम्मद गुलजार है नाम मेरा।
0: वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। तो बताएं कैसे हैं आप?
1: जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सुषमा जी आप बताएं आप कैसे हैं?
0: अरे वाह, आपने पहचान भी लिया आवाज से।
1: जी हाँ आज पहचान लिया है, वरना तो नाम पूछना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: मौसम कैसा हो रहा है आपका सोनपुर?
0: आज तो बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, बारिश भी हुई है। और आप बताइए वहां का मौसम कैसा है? हाँ जी, और गर्मी से राहत भी मिली है ना? हाँ जी, तो बताएं क्या करते हैं आप?
1: जी मैं उर्दू की पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा, वाह, तो आप उर्दू की पढ़ाई करते हैं। तो
1: जी
0: पढ़ाई के बीच में रेडियो सुनने का वक्त निकाल लेते हैं आप?
1: हाँ जी, पढ़ाई के बीच में रेडियो सुनने का वक्त निकाल लेता हूँ। अब रेडियो के जो कार्यक्रम आते हैं सुबह से लेकर कॉल करके मैं सुनता हूँ, जैसे कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम आता है, ये कॉल इन कार्यक्रम, हेलो हेलो रेडियो सखी कॉल इन कार्यक्रम आता है, और ये कॉल इन कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: अच्छा, तो रेडियो से लगता है बहुत लगाव है आपको।
1: जी मुझे ये कॉल इन कार्यक्रम से ज्यादा लगाव है।
0: बहुत बढ़िया, ये तो
1: गीत आपके विचार हमारे ये सुनता हूँ।
0: विचार आपके, गीत हमारे।
1: हाँ विचार आपके गीत हमारे।
0: हाँ जी, तो कब से सुनते हैं आप रेडियो?
1: और ये लोक मंजरी कार्यक्रम आता है ये सुनता हूँ।
0: हाँ जी, हेलो लोक मंजरी।
1: हाँ जी
0: वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप पढ़ाई भी करते हैं और इधर आप रेडियो से भी जुड़े रहते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं रेडियो के।
1: ये मैं कॉल लगा लेता हूँ।
0: चलिए, बहुत बढ़िया है ना। तो
1: जी
0: पढ़ाई के बीच में आप रेडियो सुनने के लिए वक्त निकालते हैं, यही बहुत प्यारी बात है।
1: जी
0: तो कैसा लगता है हमारे यहाँ के कार्यक्रम सुनकर आपको?
1: जी हमें आपके आगे कार्यक्रम सुनकर बहुत खुशी होती है।
0: अच्छा, वाह, ये तो बहुत प्यारी बात है। तो बताएं आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे कार्यक्रम में गीत जो सुनना है वो फिल्म का नाम तो रहेगा कुली नंबर वन, और गीत के बोल रहे गेट के तो पहरी में पाव जले है, सैया पाव जले है।
0: ठीक है। तो कार्यक्रम में आप अपने दोस्तों का नाम या परिवार जनों का नाम लेना चाहेंगे तो जरूर ले सकते हैं।
1: हाँ जी परिवार का नाम तो जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जरूर ये बताना चाहता हूँ, हर साल 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है,
0: हाँ
1: और
0: जी, हाँ जी,
1: इसमें इसमें जो है इसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे?
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत ही प्यारी बात कही कि हर साल 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आप बताइए आपको कौन सा खेल पसंद है?
1: मुझे हॉकी पसंद है, बैट बल्ला पसंद है, और ये टेलीविजन पे गेम खेलते हैं ये सब बहुत ज्यादा पसंद है, और कैरम बोर्ड ये पसंद है मुझे, लूडो खेलना पसंद है,
0: वाह।
1: और ये जो छुपम छुपाई खेलते थे, हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे बचपन में, ये भी बहुत ज्यादा पसंद है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन खेलों की बात ही अलग होती है ना?
1: जी
0: और खेल हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, हमारे शरीर को
1: जी जी
0: हष्ट पुष्ट रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं,
1: हाँ
0: है ना?
1: जी जी
0: और एक्टिविटीज बहुत जरूरी है हमारे लिए।
1: जी
0: कार्यक्रम में आप अपने करीबी मित्रों का नाम लेना चाहेंगे तो जरूर शामिल कर सकते हैं उनको।
1: मेरे मित्र है शहनाज मलिक, महराज मलिक, सानिया मलिक, फिजा मलिक, शबनम अब्बासी, और मकसूद हुसैन है, महबूब दुकानदार है, महबूब कुरैशी है, और उनके भाई जुनैद कुरैशी है, और उनकी बहन मेहताब बानो है, और हिना कौशर है, और यही यही मेरे मित्र हैं,
0: वाह,
1: और कस्बा चिलकाना से जरीफ अंसारी है, डॉक्टर आमिर अंसारी और आयशा अंसारी।
0: वाह, क्या बात है। तो चलिए, कुली नंबर वन फिल्म का है ना, सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी, मैं कस्बापुर का जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश में।
1: जी मेरा शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
0: तो बताएं कैसे हैं
1: हाँ
0: आप?
1: बस हम तो ठीक है दीदी,
0: हाँ जी, तो
1: हम
0: क्या
1: तो सब
0: करते हैं
1: ठीक है।
0: आप?
1: तो मैं तो ड्राइवरी करता था जी, पहले अपनी करता बस बस
0: अच्छा
1: चलाता।
0: अच्छा बस चलाते हैं। अच्छा,
1: हाँ जी जी
0: तो रेडियो सुनना कब से पसंद है
1: हाँ,
0: आपको?
1: रेडियो मैं तो काफी दिनों सुनता हूँ जी, रेडियो का 19 से बात करती है से सुनता हूँ जी रेडियो। तो ये मोबाइल आ गया आजकल,
0: हाँ जी, तो रेडियो सुनने का माध्यम आपका क्या है?
1: बस मेरा तो यही है, अच्छी अच्छी बातें मिलती है जी, प्रोग्राम अच्छे अच्छे किस्से के बारे में आते हैं, स्वास्थ्य के बारे में आते हैं जी, गाने भी आते हैं,
0: हाँ जी, हाँ
1: रागनी भी
0: जी,
1: आती है जी, आती है।
0: तो रेडियो पर कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: बस ये सुनता हूँ जी, ज्यादातर मैं ये सुनता हूँ जी, सैनिकों का जो प्रोग्राम आता है, फौजी भाइयों का, करते जगह सुनता हूँ जी, गढ़वाल गीत सुनता हूँ जी, ज्यादातर
0: अच्छा,
1: रागन सुनता हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी, कार्यक्रम शैल संगीत और कार्यक्रम लोक
1: हाँ
0: संगीत में।
1: हाँ सब सुनता हूँ जी, मैं सब प्रोग्राम सुबह 6 बजे से रात के 11:05 तक से सुनता हूँ जी, मैं मोबाइल
0: अच्छा, सच
1: आपका
0: में?
1: प्रोग्राम सच में हकीकत
0: जी
1: में जी दीदी।
0: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप रेडियो
1: जी
0: से दिन भर जुड़े रहते
1: जी
0: हैं। जी
1: अरे क्या आपको 90-90 साल पूरे हो गए, ये
0: हाँ जी,
1: बहुत मुबारक आपको।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आपको भी ढेर सारी बधाई।
1: हाँ जी
0: जी
1: हाँ जी, बधाई आपको भी सब
0: हाँ जी,
1: परिवार
0: जी
1: को।
0: शुक्रिया। तो आप बस भी चलाते हैं और साथ में रेडियो से जुड़े रहते हैं, है ना?
1: हाँ जी,
0: तो मतलब रेडियो आपके सफर का हम सफर हुआ कहे तो,
1: हम
0: है ना?
1: सफर है जी, बस हमारा बस में टाइम कटता है जी दीदी, जी
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: टाइम कटता है जी।
0: तो बताएं वहां पर मौसम कैसा है?
1: मौसम तो रात बारिश हुई इधर,
0: बारिश हुई तो है ना, गर्मी से राहत मिली होगी।
1: हाँ थोड़ी राहत मिली।
0: हाँ जी, थोड़ी भी मिली तो ये भी बहुत है ना, क्योंकि काफी
1: हाँ
0: तेज
1: जी
0: गर्मी
1: जी
0: बढ़ गई थी। तो बताएं कार्यक्रम में आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं जी इसका कोई फिल्म जाए वो लैला मजनू का,
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और
1: वही जी
0: कार्यक्रम
1: सुना
0: में
1: जी।
0: अपने करीबी मित्रों का नाम या परिवारजनों का नाम लेना चाहेंगे
1: बस
0: आप?
1: परिवार का ही नाम है जी,
0: हाँ
1: मेरी
0: जी,
1: बेटी जी
0: बिल्कुल।
1: नसीमा, हमारी दूसरी बहू है सादिया
0: हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
1: है, हाँ ये आरजू है, अंजुम है, सोनी है, वसीम है, साजिद है, सब अपने परिवार के लोग हैं जी बस।
0: तो चलिए सुनवाते हैं कार्यक्रम में आपकी पसंद पर ये गीत।
1: ठीक है दीदी, शुक्रिया आपका
0: जी
1: बहुत।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश,
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश में।
1: जय श्री राम। नरेश
0: जय श्री राम। अपना नाम बताएं।
1: कुमार शर्मा, बड़ा गांव, जिला करनाल, हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं।
0: अच्छा, तो हरियाणा से बात कर रहे हैं आप।
1: जी मैम,
0: जी, आज कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम में आपका कॉल लगा?
1: मैम बहुत अच्छा लगा। 2026 में ये मेरी पहली कॉल है।
0: अच्छा, तो कार्यक्रम में आपकी आज ये पहली कॉल है?
1: जी।
0: जी, वाह, देखिए आज का दिन कितना अच्छा है ना,
1: जी मैम,
0: आपका कॉल मिला कार्यक्रम में। तो आपको कैसा लगता है हमारा ये हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: मैं तो तकरीबन सभी प्रोग्राम सुनता हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। कलाकार भी सुनता हूँ, और
0: हाँ
1: वर्षा
0: जी,
1: फरमाइश आता है जो 11 बजे, वो भी सुनता हूँ,
0: हाँ
1: और
0: जी, हाँ
1: 9 बजे
0: जी।
1: आता है जो प्रोग्राम, वो भी सुनता हूँ। मैं तो तकरीबन मैं सभी प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: मतलब रेडियो सुनने का काफी शौक है आपको।
1: जी, इसके बिना तो ना मेरा टाइम पास होता है, ना मेरी जिंदगी चलती आगे।
0: वाह, बहुत खूब। तो क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, मेरी एक करियाने की दुकान है यहाँ गांव में, बड़ा गांव में,
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: सारा दिन रेडियो चलता रहता है जी, और प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: तो रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं आप,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: बहुत लगाव है आपको रेडियो से।
1: जी मैम,
0: हाँ जी, तो अभी वहाँ का मौसम कैसा है? हाँ
1: मौसम तो मैं ठंडी ठंडी हवा चली है,
0: जी,
1: और
0: वाह,
1: बदली भी छाई है।
0: अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा चली है और बदरी भी छाई है।
1: हाँ, सुनकर आपकी ये मीठी सी आवाज, मैंने भी हेलो फरमाइश में आज कॉल मिलाई है।
0: वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब
1: थैंक यू मैम।
0: जी। मुझे तो लगता है आप शायर भी हैं।
1: ये शायरी जो आई है, ये आप जैसे
0: हाँ जी,
1: जैसे हमने हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं,
0: हाँ जी, हाँ
1: और
0: जी।
1: जो आप वहाँ पे दो लाइनें बोलते हैं, जो बोलते हैं, हम भी उनको कट करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी।
1: जी,
0: तो आज बताए कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गाना इसका मैम मूवी का नाम है जी दस्तूर, और जी गाने के बोल है जी, तो तुझे तो झूमे बहार, तेरे कदम झूमे बहार, आज्ञा बहारों की मलका, बहारों की मलका, मौसम

0: डर जाए दिल का, मैं भी दीवाना हूँ, फरमाए थी मैं दिल का।
1: अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा गाते भी हैं।
0: जी मैम।
1: और प्रोग्राम में आप अपने करीबी मित्रों का नाम लेना चाहेंगे या अपने परिवार के सदस्यों का, तो जरूर ले सकते हैं।
0: हाँ जी, मेरे मिसी जी सुदेश शर्मा, और जी एक मेरी गुड़िया है जी पूजा शर्मा, और मेरा लड़का है जी भाग्य शर्मा, और जी मेरे दो दोस्त हैं जी तबुंगोग से है जी इलियास मंजूरी, और एक रामफल है जी गांव मानपुर कदीम से जी।
1: तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद पर प्रोग्राम में ये अगला गीत।
0: थैंक यू मैम
1: जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार मैम।
0: बहुत बहुत
1: और
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश में।
1: जी मैम, शुक्रिया मैम।
0: जी अपना नाम
1: और जी,
0: बताएं।
1: मेरा नाम मोहम्मद जुनैद कुरैशी है मैम।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, आप बताइए। समस्त आकाशवाणी परिवार,
0: जी हम लोग भी और पूरा आकाशवाणी परिवार बहुत अच्छे हैं। आज आपका कॉल लगा प्रोग्राम में, आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है मैम। काफी देर से प्रयास कर रहा था कॉल लगाने का, और अब जाकर लगा है।
0: तो चलिए आखिरकार आपका कॉल लगा है ना।
1: जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरा कॉल लग जाता है मैम।
0: हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया। ये तो कितनी अच्छी बात होती है ना, आपका कॉल प्रोग्राम में लगता है, आप अपने आप को सुन सकते हैं प्रोग्राम के जरिए।
1: जी मैम, क्योंकि
0: हाँ जी।
1: आकाशवाणी से सभी प्रोग्राम जो होते रहते हैं वो सभी प्रोग्राम अच्छे होते हैं, और आप लोग जो प्रस्तुत करते हो, आप लोग बहुत योगदान देते हो इनमें। हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम बनाकर पेश करते हो मैम।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: जी मैम, बस सुबह से रेडियो तो ऑन हो जाता है और शाम रात तक बजता रहता है, पूरा दिन चलते हैं, सारे कार्यक्रम सुनते हैं, और खासकर ये व्हाट्सएप फरमाइश और ये हेलो फरमाइश तो बहुत अच्छे लगते हैं मैम।
0: जी काम भी होता रहता है आपका और आप रेडियो भी सुनते हैं, रेडियो से दिन भर
1: जी
0: जुड़े
1: जी
0: रहते
1: जी
0: हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल मैम।
0: जी बहुत अच्छी बात है ये तो। रेडियो सुनना आपने कब से शुरू किया?
1: बस मैम तकरीबन काफी टाइम हो गया मैम रेडियो सुनते हुए, क्योंकि पहले तो रेडियो ही सुना जाता था, ये बाकी तो और लोग सुनते थे, जो मतलब वो मनोरंजन जो होता था रेडियो से ही होता था। पहले लोग जो बजा कर रखते थे, तो रेडियो ही, हमने भी रेडियो सुनना तभी से सीखा है मैम, जो पुराने लोग बजा कर रखते थे, हम देखते थे उनको, तो हमें भी अच्छा लगा कि पूरा दिन रेडियो सुनते रहते हैं और जानकारी भी कभी मिलती रहती
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: मनोरंजन भी साथ में होता रहता है।
0: हाँ जी, क्योंकि रेडियो तो मनोरंजन के साथ साथ जानकारी का बहुत बड़ा साधन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी तो आप रेडियो किस पर सुनते हैं? रेडियो सुनने का माध्यम क्या है आपका?
1: जी मैम, अगर हम घर पे होते हैं या अपनी दुकान पे होते हैं तो वहाँ तो रेडियो सेट है हमारे पास में, बजाते हैं, बाकी फोन के जरिए सुनते हैं या न्यूज ऑन AIR
0: हाँ
1: से
0: जी, ऐप
1: सुनते
0: के
1: हैं मैम।
0: जरिए। अरे वाह, तो आपने अपनी दुकान में रेडियो ही रख रखा है?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम,
0: वाओ।
1: क्योंकि रेडियो तो बहुत, रेडियो से अच्छा तो मनोरंजन मैम कहीं भी नहीं है।
0: है ना, वाओ, ये तो बहुत प्यारी बात है। आप खुद भी मनोरंजन का लाभ उठाते हैं और दूसरों को भी गीत सुनवाते हैं, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: मैम,
0: बहुत अच्छी बात है ये तो। हर कोई आपके शॉप में आकर खुश हो जाता होगा, है ना।
1: बिल्कुल जी
0: वाह, तो क्या क्या बनाते हैं आप?
1: मैम, ये बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये स्प्रिंग रोल, जितने भी फास्ट फूड में 5-7 आइटम बनाते हैं मैम।
0: बहुत अच्छे। तो बताएं आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैम, मूवी है आंखें, लता जी की आवाज में गीते मिलती है जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी।
0: और कार्यक्रम में आप अपने दोस्तों का नाम, अपने साथी या परिवारजनों का नाम शामिल करना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं।
1: जी मैम, मेरे दोस्त है, ये कस्बा छिलकाना से जरीफ अंसारी साहब है, और ये बक्कार फरीदी भाई है, और ये इलियास मंसूरी जी है, इलियास, और ये मैं महबूब दुकानदार, और मेरे बड़े भाई महबूब कुरैशी। बस इन्हीं लोगों की शादी गीत सुनवाते
0: जी तो चलिए सुनवाते हैं प्रोग्राम में आपकी पसंद का ये गीत। और बहुत बहुत
1: हैं। शुक्रिया
0: शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।
1: शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश में।
1: शुक्रिया मैडम।
0: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं सोना मार्ग से
0: अच्छा, अपना नाम बताएं।
1: लतीफ अहमद रीना।
0: तो बताएं कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम। लगभग मैडम मेरे को 2-2.5 महीने के बाद वहां पे कॉल लगा।
0: अच्छा, 2-2.5 महीने के बाद।
1: हाँ 2.5 महीने के बाद।
0: जी, तो देखिए आज का दिन कितना प्यारा है ना? आपका कॉल
1: हाँ
0: हमारे
1: बहुत
0: प्रोग्राम
1: अच्छा
0: में
1: बहुत
0: लगा।
1: अच्छा। हाँ सही बात मैडम।
0: हाँ जी, तो अब अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनाकर हमेशा रखें, है ना?
1: हाँ, सही बात है। आजकल यहाँ पे पर्यटक बहुत सारे आते हैं मैडम
0: हाँ जी।
1: हमारे जिले गांधरबल में सोनामर्ग। आप आइए ना कभी यहाँ।
0: बिल्कुल, अगर कभी आना हुआ तो जरूर आएंगे।
1: हाँ कभी आइए, मौका कीजिए।

0: यहाँ से देखिए नज़ारा।
1: हाँ जी बिल्कुल। तो वहां का मौसम कैसा
0: हाँ
1: है आजकल?
0: यहाँ पे मौसम थोड़ा बादली है, आज दिन में तो था गर्मी पर थोड़ा बादली है।
1: अब और दिन में गर्मी थी, अब शाम को कैसा हो रखा है मौसम वहां का?
0: दिन में थोड़ा बादल, दिन में था थोड़ा मौसम ठीक, अभी बादल है। हाँ
1: अच्छा अभी बादल है, तो मतलब वहां पर गर्मी से राहत है आपको। हाँ
0: अभी तो थोड़ा यहाँ बादल है।
1: जी हाँ जी। तो बताएं क्या करते हैं आप?
0: बस मैं अपनी खेती बाड़ी करता हूँ, बागवानी।
1: अच्छा, तो खेती बाड़ी करते हैं और बागवानी करते हैं, किस चीज की
0: हाँ जी,
1: बागवानी करते हैं आप?
0: यहाँ ज्यादा एप्पल की होती है और केसर की, या अखरोट की होती है यहाँ।
1: अच्छा वाह, ये तो बहुत प्यारी बात
0: हाँ
1: है जी।
0: बिल्कुल,
1: आपको हमारा ये कार्यक्रम
0: बहुत
1: कैसा लगता है?
0: अच्छा लगा, इसी वजह से मैं कॉल कॉल भी करता हूँ।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: 4 बजे से लेके अभी तक मैं इतना ट्राई मारता रहा हूँ वहां पे। हाँ
1: थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन कॉल आखिरकार लग ही जाती
0: हाँ
1: है ना।
0: हाँ सही बात।
1: अब वही है, कहते हैं ना, दिल से अगर किसी भी चीज की ख्वाहिश करो तो परमात्मा उसे
0: हाँ
1: पूरा जरूर करता है। तो
0: हाँ
1: बताएं आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: सुल्तान मूवी का, खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरे खून, ए सुल्तान।
1: तो
0: हाँ
1: प्रोग्राम में आप अपने परिवार जनों का नाम लेना चाहेंगे तो आप जरूर ले सकते हैं, या मित्रों का नाम।
0: नफरोजा जहरूप, शेख साहिब, तनवीर, बस ये मेरे साथी।
1: अपना ख्याल रखिएगा और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद पर ये गीत
0: धन्यवाद।
1: जी। शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश मैम, नमस्कार।
0: और आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश में।
1: जी मैं रमेश प्रजापति, ग्राम बाया, तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा वाह, क्या बात है। तो बताएं कैसे हैं आप।
1: मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, गर्मी के आनंद ले रहा हूँ, दुकान में काम कर रहा हूँ और आपका कार्यक्रम सुनता हूँ। और आप फोन लगा रहा था, मैंने बहुत टाइम से लगा रहा था और लग गया हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कहते हैं ना, दिल से कुछ भी चाहो सच्चे दिल से तो वो मुराद जरूर पूरी होती है।
1: जी
0: और क्या करते हैं आप।
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ, कपड़े सिलता हूँ, दुकान है मेरी।
0: अच्छा वाह, ये तो बहुत प्यारी बात है कि सिलाई का काम करते हैं आप।
1: और मेरे को बगैर रेडियो के मतलब काम ही नहीं बनता है। अगर लाइट चली जाती, रेडियो बंद हो जाता तो समझ लो मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मेरे को मन ही नहीं लगता काम में से।
0: अच्छा सच में।
1: मैं रेडियो, बस रेडियो चलता रहता है और मैं अपना मस्त काम करता रहता हूँ, चलता रहता काम।
0: मतलब आपके जीवन की रौनक है रेडियो, है ना
1: जी,
0: जी। बहुत अच्छे है। तो और वहां का मौसम कैसा है।
1: गर्मी है, बहुत दिन का गर्मी है इस समय।
0: बारिश कल हुई नहीं वहां पे।
1: 3-4 रोज पहले मतलब थोड़ा सा पानी गिरा था, बस एक रोज ठंडक रहा, इसके बाद बोल जाता वैसे हो गया, और ज्यादा गर्मी लगने लगी उसको गिरने से।
0: तो गर्मी के बचाव के लिए तेज धूप में बाहर न जाएं, है ना, अपना ख्याल रखें और खूब पानी पिए, है ना।
1: जी।
0: और बताएं रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप।
1: मैं तो सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, मैं क्योंकि लगा देता हूँ, कार्यक्रम चलता रहता है, मस्त काम करता रहता हूँ। तो
0: अच्छा, तो आप रेडियो से जुड़े रहते हैं दिन भर।
1: जी, वो उसके बगैर तो काम नहीं बनता ना मेरे। अरे
0: वाह क्या बात है। और आज प्रोग्राम में कॉल लगा, आपको कैसा लग रहा है।
1: बहुत मस्त आनंद आ रहा है मेरे को, मतलब आपसे बात हुई, कितना बहुत मतलब बड़ा भाग्यशाली हूँ, आज आपसे बात हो गई। मैं तो बहुत दिनों से फोन लगा रहा, लग नहीं रहा था।
0: हाँ जी, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका कॉल लगा और आपसे बात हो रही है हमारी। तो बताएं आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: सौतन की बेटी
0: गीत के बोल।
1: कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं।
0: वाह क्या बात है। और प्रोग्राम में आप अपने परिवारजनों का या अपने करीबी मित्रों का नाम लेना चाहेंगे तो जरूर ले सकते हैं।
1: जी, हमारे परिवार में हमारी मैडम है, हमारे 2 बच्चे हैं, मतलब हमारी घर वाली के नाम, मत श्रीमती के नाम आशा भाई है, आशा प्रजापति, उनका नाम है ज्योति, पूजा प्रजापति, आरती प्रजापति, और लड़कों का नाम है मतलब गोविंद प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति, और मेरे मित्र है भगवान सिंह परमार, पूर्ण भगवान जी, रविराज लोधी जी, केसी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, और लोकेंद्र वर्मा जी है उज्जैन से, अशोक जी है, संगीता जी है, पूर्णिमा जी है, विनायक जी है, पूनम जी है कानपुर से, विमल जी है, राकेश जी है शिमला से, और असम अमर जी है, गोल्डी जी है, पूनम अमर सिंह साहू जी है, भाई को मुंडा रमेश पात्रे
0: हाँ जी, तो लगता है पूरी लिस्ट आप साथ लेकर बैठे हैं आज। मुझे लग ही रहा है। नहीं, आप देख
1: कोई
0: लीजिए।
1: छूटना, कोई छूटना नहीं चाहिए क्या है? वो फिर बोलते हैं आपको कभी कभी तो फोन लगा, हमारा नाम लिया ही नहीं आपने।
0: बिल्कुल। और देख लीजिए कहीं एक दो नाम और छूट ना गए हो तो वो भी जरूर आप बोल सकते हैं ना, उन नामों को भी हम बहुत खुशी खुशी शामिल करेंगे।
1: जी, राम बाबू शर्मा जी है भोपाल
0: बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छे। तो चलिए सुनवाते हैं प्रोग्राम में आपकी पसंद पर ये गीत
1: जी।
0: जी।
1: धन्यवाद मैम आपको मेरा फोन रिसीव करने के
0: हाँ
1: लिए।
0: जी बिल्कुल, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आपने प्रोग्राम में कॉल किया।

श्रोताओ, रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, ये दिन के शोर को थाम कर सुकून लाती है। ये वो समय है जब हम अपने ख्वाबों से मिलते हैं और अपने दिल की बातें सुनते हैं। तो आज का ये गीतों से सजा सफर बस यहीं तक। और आज अगर हमारे नए श्रोता इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं, तो आप भी इस कार्यक्रम में कॉल करके बन सकते हैं हेलो फरमाइश का हिस्सा। इसके लिए आपको करना है कॉल हमारे नंबर पर। नंबर है 7088001382। नंबर एक बार पुनः सुन ले, 7088001382। हमारी फोन लाइंस हर गुरुवार शाम 4 बजे से शाम के 5 बजे तक खुली रहती है, और इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है अगले दिन यानी शुक्रवार रात 10 बजे से रात के 11 बजे तक। तो इसी के साथ अपनी दोस्त सुषमा जोशी को दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। श्रोताओं, ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
4: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
3: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jaid Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jaid Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem,

आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब संपन्न होती है। प्रातः 5:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक अनुमति दीजिए। जय हिंद।